मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026, 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपए का स्मारक सिक्का और 5 रूपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटनास्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत कर रही हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी पुरुषोत्तम चक्रवर्ती की देशभक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनिए पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में ये भजन।

राजेंद्र मेहता और साथियों के स्वर में अभी आपने सुनी भक्ति रचना। लीजिए अब सुनिए MS सुब्बू लक्ष्मी के स्वर में ये भजन।

0: सुरेश वाटकर के स्वर में अभी आपने सुना दादू दयाल का भजन। इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्री बबन प्रसाद मिश्र का है।
1: अनुकरण और जिज्ञासा मानव का सहज स्वभाव है। वह अपने आसपास ऐसा नायक सतत तलाशता रहता है जिसके रास्ते चलकर वो भी वैसा ही बने। इसलिए उसमें ऐसे नायक का अनुकरण और उसके गुणों को जानते रहने की जिज्ञासा सदा बनी रहती है। लेकिन वो नायक जिसे वो नायक स्वीकार करे, उसके लिए जरूरी है कि उसे चाहने वाले की दृष्टि में वो सत्पात्र रहे। वो किसी बुरे व्यक्ति या समूह को अपना नायक न बनाए। ये परिवार, समाज और उन सभी परिस्थितियों के लिए उचित है जो मानव जीवन में दृष्टिगत होती हैं। नायक सुपात्र रहा तो उसके अनुयायी भी वैसी ही पात्रता से जुड़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अमर शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी इसके उदाहरण रहे। गांधी जी ने हालांकि वैसी टोपी नहीं पहनी जिसे गांधी टोपी कहा जाता है, लेकिन उनसे मिलने वालों की अधिकांश संख्या सफेद टोपी वाले किसानों की या पगड़ीधारी लोगों की रहती थी। इसलिए उन्होंने एक बार जब टोपी को हर समय के लिए उपयुक्त कहा तो तब से गांधी टोपी नाम से इस टोपी को जाना गया। इसमें सादगी, सद्भाव, परस्पर आदर और विनम्रता और सादगी का

0: भाव समाज देखता रहा। केवल गांधी टोपी ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिलिट्री टोपी और शहीद भगत सिंह का हैट भी भारत में प्रसिद्धि लेते देखे गए। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज भी सिर पर अच्छी पगड़ी या गमछा लेकर चलने की परंपरा है। शायद यह सिर को धूप ताप से बचाने के अलावा एक सभ्य आचरण का पर्याय भी है। आचरण की सभ्यता भारतीय संस्कृति का मूल भाव रहा है। महान क्रांतिकारी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोष कहलाने वाले 20वीं सदी के नायक लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक यदि पगड़ी को तब राष्ट्रीयता का प्रतीक बना बैठे तो गांधी जी, नेताजी की टोपी और शहीद भगत सिंह के हैट की भूमिका ने लाखों देशभक्त पैदा कर दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नायक सर एटली ने अपने दल के नागरिकों को जो पहला संबोधन किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं यद्यपि बकिंघम पैलेस में पद और गोपनीयता की शपथ ले रहा हूं, फिर भी मैं कुछ वास्तविकताओं से आप सभी को अवगत करना चाहता हूं। भले ही हमने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों की सहायता से जर्मनी के एडॉल्फ हिटलर, जापान के प्रधान तोजो और रूस के स्टालिन को पछाड़ा हो, पर इस बार एक सैन्य टोपी पहने भारतीय सुभाष चंद्र बोस और लंगोटी जैसे कम कपड़े पहनने वाले गांधी की टोपी वाली जमात ने हमारी परेशानी बढ़ा रखी है। अपने भाषण में एटली ने कहा कि इस युद्ध में हमें आर्थिक दृष्टि से काफी क्षति हुई है। इधर इंडिया में सुभाष चंद्र बोस ने हमारी नाक में दम कर रखा है। उनके पास एक संगठित अनुशासित पुरुष और महिला रेजिमेंट है। पुरुष आर्मी की कमान उन्होंने कर्नल हबीबुर रहमान और रानी झांसी रेजिमेंट की कमान श्रीमती लक्ष्मी सहगल को सौंप रखी है। उनके आगे हम हर तरह से कमजोर साबित हो रहे हैं। एक बात आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस मन प्राण से समर्पित हैं। इन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना करके अपना मंत्रिमंडल भी बना लिया है। 7 देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी है। मिस्टर सुभाष एक अनुशासित, वीरवर, चरित्रवान, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अधिकारी विद्वान हैं। वे बिलरिट हैं। इनने विश्व की सबसे ऊंची इंडियन सिविल परीक्षा ICS भी सर्वाधिक ऊंचे अंकों से पास कर ली है। इन्होंने हमारी नौकरी करने से साफ मना कर दिया है। नेतृत्व इसे कहते हैं जिसका लोहा सर एटली तक ने माना। भारत के जिज्ञासु और स्वतंत्रता प्रिय जनता ने इन नेताओं का अनुकरण कर अपने देश को दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बनाया। इसलिए जनता या समाज नेता नेतृत्व में सुख, समृद्धि और शांति की अनुभूति निरंतर करे, इसके लिए समाज के श्रेष्ठ वर्ग को भी अपना श्रेष्ठ आचरण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक जूलियस सीजर में नायक और सम्राट सीजर को ये कहते हुए सुना गया कि सीजर की पत्नी को भी संदेहों से परे जीवन जीना चाहिए। हमारे देश में भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में समाज के सामने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं वो जीवन आधार बने रहेंगे। ये आवश्यक है कि वाणी, व्यवहार और सदाचरण में नेतृत्व दिखलाई दे और जनमानस उन्हीं का अनुयायी दिखलाई दे।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था श्री बबन प्रसाद मिश्र का। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव ना होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिवाने जा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, कलाकार थे रविंद्र साठे। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मूल्य संवर्धन के बाद बाजार की खोज, इस विषय पर जानकारी देते हुए नीलम सिन्हा।
1: नमस्कार, जय जोहार किसान संगवारी हो, मोर नाम है नीलम सिन्हा। आज हमन गोड़ बात करत हन मूल्य संवर्धन करे के बाद अपन उत्पाद पर सही बाजार कैसे खोजें। आप मन सब जानत हो धान, सब्जी, मक्का और आने आने फसल के उत्पादन करत हन, फिर ज़्यादातर एला हमन कच्चा रूप में बेच देत हन जेमा हमन ला कम दाम मिलते। अगर यही उत्पाद ला हमन थोड़किन प्रोसेस कर लें या उकर मूल्य ला संवर्धन जिला वैल्यू एडिशन की थे ओला कर लें, जैसे कि धान के हमन चूड़ा बना लें, पोहा बना लें, मुर्रा बना लें, और सब्जी जैसे टमाटर ओकर ले हमन प्यूरी बना लें, ओकर अचार बना लें, और जैसे हमर मिलेट होते जैसे रागी हो गए या ज्वार हो गए, ओकर द्वारा हमन अगर आटा निकाल के ओकर कुकीज़ इत्यादि ला बना कर मार्केट में बेचबो तो हमन ला ज़्यादा दाम मिल जाते। तो यही बात है कि अगर आप कच्चा सामान ला बेचबो तो आप मन ला कम पैसा मिलही, और अगर ओकर थोड़ा सा उत्पाद ला मूल्य संवर्धन कर दो तो फिर ज़्यादा पैसा कमा सकत हन। तो अब हमार सवाल ये आते कि जो हमार तैयार सामान है इला बेचना कहाँ है। आज हमार बाजार सिर्फ गांव के हाट तक सीमित नहीं रह गए हैं, हमार बाजार आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम ले बहुत बढ़ गए हैं, और दूरिया दूरिया जैसे देश विदेश इत्यादि तक हमन अपन उत्पाद ला पहुँचा सकत हन। उदाहरण के रूप में जैसे हमार गाय के गोबर, ओकर माध्यम से जो हमन कंडा बनाथन, उपला बनाथन, ओला पहले गांव के किसान मन और गांव के परिवार मन उपयोग करत रहिस, लेकिन अब ओला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन हो गए ओमा भी ओला बेच सकत हन, और वहाँ वह ज़्यादा दाम में मिला थे। एकर माध्यम से हमन ला बाजार के जो पहुँच है वो बढ़ गई है। ऐसी जहाँ मांग रहीस वहाँ हमन मोबाइल के माध्यम ले अपन बाजार तक पहुँचा सकत हन। अब आप मन ये सोचत हो कि एला करे बर हमन का करें, तो सबसे पहली हमन ला अपन उत्पाद के पैकेजिंग यानी कि पैकेट तैयार करे के ज़रूरत है। साथ साथ ओला ब्रांडिंग यानि हमन अपन उत्पाद ला साफ सुथरा पैकेज करे के बाद ओला एक नाम दे के ज़रूरत है। दूसर हमन ला काम करना है, हमन ला समूह में जुड़ना है, जैसे हमार FPO फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन या फिर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, एकर माध्यम से हमन अपन उत्पाद ला बाजार तक पहुंचा सकत हन। और तीसरा हमन मोबाइल के माध्यम से एकर विज्ञापन या फोटो खींच के एकर व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल साइट में प्रचार प्रसार कर सकत हन। ये अभी बहुत अच्छा माध्यम बन गए हैं अपन उत्पाद ला बेचे बर। और अगला मुख्य चीज़ ये है कि हमार जो उत्पाद है एकर जानकारी मार्केट में हमन कैसे एला बेच सकत हन, कहाँ एकर मांग हवे और कौन से चीज़ के दाम कहाँ कम मिलत है, तेकर पूरा जानकारी हमन ला जानना जरूरी है। और हमार सरकारी योजना भी आजकल आगे है जे है PMFMFE जो प्रोसेसिंग यूनिट बार ट्रेनिंग और सब्सिडी दे थे, और हमार किसान संपदा योजना भी है जेमा हमार स्टोरेज इत्यादि बार सुविधा मिलत है। तो ये सब करके हमन अपन उत्पाद है ओला बढ़ा सकत हन, ओकर मूल्य संवर्धन करके ओला बेच सकत हन। तो संगवारी हो, मूल्य संवर्धन तभी सफल हो पाही जब ओला सही बाजार मिले। जैसे आप मन कुछ अलग से बनात हो, जैसे कि उदाहरण के रूप में आप मखाना की खेती करत हो, तब मखाना की खेती ले आप मन ओकर मखाना कुकीज़ बना डे रहे हो, तब वो मखाना कुकीज़ आप मन लोकल मार्केट में तो खपा सकत हो, पर साथ ही साथ ओला दूसर राज्य में भी पहुँचाना है, तो ओकर भर हमन का कर सकत हन। ओकर भर हमन वहाँ के जो व्यापारी मन है उकर साथ संपर्क कर सकत हन, वहाँ के जो किसान भाई मन है उकर संग संपर्क कर सकत हन। एकर माध्यम से हमन अपन प्रचार प्रसार करके अपन उत्पाद ला एक ब्रांड के माध्यम से ओला स्थापित करके ओला बेच सकत हन। तो जैसे भी हमार मूल्य संवर्धन हो ही ओकर बाद ही हमार उत्पाद ला नया पहचान मिली। अगर हमन खेती में अपन सिर्फ कच्चा माल के भरोसे बैठे हन तो हमन आय ज़्यादा नहीं प्राप्त कर सकत हन, हमन ला आय कम मिली। उकर से अच्छा है कि हमन ये तरीका अपना थन कि मोबाइल में अपन जानकारी ले लो, ओकर बाद ओकर उत्पाद ला तैयार कर लो, ओकर अनुसार ओला बाजार तक पहुंचा सकत हो। ता संगवारी हो, आज के समय में मूल्य संवर्धन तभी सफल होते जब ओला सही बाजार मिलते। अगर मूल्य संवर्धन ला करत हो ओकर बाद आप मन निश्चित हो सकत हो कि आप मन के जो सामान है तेन हा सही दाम आप मन ला दिलवा सकत है।
0: मूल्य संवर्धन के बाद बाजार की खोज। कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीलम सिन्हा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आर्थिक विकास पर केंद्रित कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:25 पर। स्पोर्ट्स स्कैन आप सुनेंगे रात 8:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इसमें सुनिएगा एम्स रायपुर में हुए बाल अंगदान पर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अंबे पटेल और विनीता से खास बातचीत। साथ ही सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के महत्व पर संस्कृति विभाग के उपसंचालक डॉक्टर प्रताप चंद्र पारक से बातचीत। और आप सुनेंगे बिरसा मुंडा स्मृति दिवस पर आदिवासी विकास परिषद के

अध्यक्ष श्री आर के शाह से विशेष बातचीत प्रस्तुत करता होंगे देवव्रत भगत। छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोरभुइयां आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। इसमें सुनिएगा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे श्री ईश्वर साहू बंधी, श्री शिव कुमार अंगारे और सुश्री सुनंदा शर्मा। संपादक और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेंद्र साहू। अजी सुनिए ये पारिवारिक धारावाहिक आप सुनेंगे सुबह 9:00। आलेख सुनीला दास का होगा, प्रस्तुति होगी समीर शुक्ल की। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे दलेश्वर साहू और साथी। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर सुनिएगा सुबह 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दोपहर 12:00। शाम 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। समूह गान शिक्षा के कार्यक्रम में कन्नड़ भाषा में समूह गान शिक्षा आप सुनेंगे सुबह 11:05 पर। और आप सुनेंगे समूह स्वर में सुगम संगीत। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत सुनिएगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम घर आंगन के आकर्षण होंगे आज के गोट। इसमें वार्तालाप या संवाद कबू झन रुके इस पर चर्चा होगी। काम काज की जगह माँ सुरक्षा के अधिकार इस विषय पर श्रीमती महेश्वरी वर्मा की वार्ता आप सुनेंगे और होगा बहिनी मन की चिट्ठी और गीत संगीत। शाम 5:10 पर युववाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपन गोट जो केंद्रित होगा विश्व प्रत्यायन दिवस पर और होगा क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा सब्जी के नर्सरी तैयारी और प्रबंधन। किसानवाणी में हेलो किसानवाणी आप सुनेंगे, इसमें आप सुनेंगे वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी इस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर कमल नारायण वर्मा विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग। संचालन निर्मल साहू का होगा और प्रस्तुत करता होंगे शशि प्रकाश पांडे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां का सरोद पर बजाया राग जय जयवंती आपकी पसंद। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00। सदाबहार नखमे सुनिएगा सुबह 11:30 पर। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:15 10:30 दोपहर 1:05 2:00 2:30 शाम 7:00 रात 8:00 और रात 9:15 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 39 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुम, उपनिरीक्षकं मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुम च मृत्योपरांतं वीरचक्रं प्रदत्तम्। आंध्रप्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2,00,000 रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबंधन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमंत्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2,000 वर्षपर्यन्तं व्यापारसौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रियसुरक्षां, विकसितभारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः पश्चिमबंगस्य विकासयात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबंगस्य मुख्यमंत्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्ति विषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमंत्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्तर्राष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूतसम्मेलनं 26,2,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,2,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,2,000 आईसीसी महिला 20-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुत करता है देवव्रत भगत।

नमस्कार रायपुर, मैं हूं देवव्रत भगत, लेकर आया हूं दिन की सबसे प्यारी शुरुआत नमस्कार रायपुर के साथ। साथियों, पिछले कई दिनों से सूरज के तेवर कुछ ज्यादा ही सख्त थे। दोपहर की तपिश, गर्म हवाओं के थपेड़े और उमस ने मानो पूरे शहर को थका सा दिया था। और फिर बीती रात मौसम ने जैसे पूरे शहर की सुन ली। देर रात बारिश ने तपती धरती को ठंडक दी, पेड़ों को नहलाया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत पहुंचाई। और सुबह जब आंख खुली तो रायपुर का मिजाज ही बदला हुआ दिखाई दिया। कहीं सड़क किनारे पानी की छोटी छोटी परतें चमक रही थी, कहीं पेड़ों की पत्तियों से अब भी बूंदे टपक रही है। सड़कों पर बारिश की नमी अब भी महसूस की जा सकती है। साथियों, कई दिनों बाद ऐसी सुबह आई है जब घर से बाहर निकलते ही गर्मी नहीं बल्कि ताजगी महसूस हो रही है। और चाय की दुकानों पर भी मौसम की ही चर्चा है। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के चेहरे पर राहत साफ देखी जा सकती है और शहर की रफ्तार भी आज कुछ ज्यादा ही सुकून भरी लग रही है। और सच कहें तो कुछ सुबहें केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही है। रात भर बरसी बूंदों की दास्ता अब भी हवाओं में खुली हुई है, मानो रात ने अपनी कहानी लिखी हो और सुबह उसे मुस्कुराते हुए सुना रही हो।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: अपने धर्म और अपनी संस्कृति पर हमेशा गर्व करो। जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। ये शब्द हैं जनजातीय समाज के महानायक धरती आबा बिरसा मुंडा के, जिन्होंने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी बल्कि अपने समाज को उसकी पहचान और स्वाभिमान के लिए जागरूक भी किया। इसी प्रेरणा के साथ आइए अब आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। साल 1900 में आज के ही दिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जनजातीय समाज के नायक बिरसा मुंडा का रांची जेल में निधन हुआ। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसकी गूंज आज भी देश भर में सुनाई देती है और आज उनकी पुण्यतिथि है। साल 1964 में आज के ही दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। सादगी, ईमानदारी और कर्मठता के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। वहीं 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे भी मनाया जाता है। ये दिन गुणवत्ता, सुरक्षा और भरोसेमंद मानकों के महत्व को रेखांकित करता है। इतिहास हमें केवल तारीखें याद नहीं कराता साथियों, बल्कि उन लोगों की विरासत से भी परिचित कराता है जिन्होंने अपने विचारों और कर्मों से समाज को नई दिशा दी। और अब बात उन एहसासों की जिनकी ना कोई किताब होती है ना कोई परिभाषा, बस दिल में दस्तक होती है और फिर मन बार बार यही पूछता है, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में पैसों की ठगी हो रही है। वर्तमान समय में आम लोगों के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ऑनलाइन ठगी बढ़ गई है। यदि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कम समय में स्टॉक मार्केट से ज़्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर किसी अज्ञात वेबसाइट या एप्लीकेशन में अकाउंट खोलने कहा जाता है और आपके द्वारा अकाउंट खोलने पश्चात इन्वेस्टमेंट शुरू की जाती है, आपके उक्त एप्लीकेशन के प्रोफाइल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ आपका प्रॉफिट भी शो होने लगता है, किंतु जैसे ही आप विड्रॉल करते हैं वह पैसा विड्रॉल नहीं होता और आपके साथ ठगी होती है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी भी लिंक वेबसाइट पर जाके इन्वेस्टमेंट करने से बचें, आप किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट करने से बचें। यदि आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी फिर भी होती है तो आप 1930 पर कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कई लोग इन्वेस्टमेंट के लिंक प्राप्त करते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ऐसे फेसबुक और इंस्टाग्राम से प्राप्त होने वाले लिंक से भी बचें, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया साइट है, इन्वेस्टमेंट करने का वो साइट नहीं है। तो आप किसी भी प्रकार के फेसबुक या इंस्टाग्राम में मिलने वाले लिंक से बचें और उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचें।
2: दोस्तों, कभी कभी समाज में लिए गए कुछ संवेदनशील और प्रेरणादायक फैसले कई लोगों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ है रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रायपुर में, जिस पर एम्स की ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अंबे पटेल और विनीता पटेल जी से हमने ये खास बातचीत की।
3: एम्स रायपुर में पहली बार एक बाल अंगदान के जरिए दो मरीजों को नया जीवन मिला है। 13 साल की एक बच्ची को ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उसके परिवार ने अंगदान का फैसला लिया, जो मानवता के लिए मिसाल बन गया। इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एम्स रायपुर के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अंबे पटेल और विनीता पटेल जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
4: जी धन्यवाद
3: जी। सबसे पहले विनीता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या था और अंगदान की जो प्रक्रिया है वो कैसे संभव हो?
4: जी, जैसे मतलब जो हमारे पास जो 12 साल की जो सुमना कुंदू जो पेशेंट थी, वो हमारी एम्स में पहले से ही फॉलो अप पेशेंट रही है। पीडिया की पेशेंट थी वो 8 साल से करीब हमारे पास फॉलो अप में रही है। उनको एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी थी जिसके वजह से उनका ब्रेन डेथ हुआ। तो उस जैसे उनको जब ब्रेन डेथ हुआ तो इस एडमिशन में क्या होता कि 29 मई को उनको एम्स लाया गया और उनका जितना हमारे मतलब डॉक्टरों से जितना अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता था वो ट्रीटमेंट उन्होंने किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको आगे जाकर ब्रेन डेथ घोषित कर दिया गया।
3: जी जी। और उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया हुई मैम?
4: उसके बाद जैसे ही डॉक्टर्स की टीम जब PICU की जो टीम होती है या जो ICU की टीम होती है, जैसे ही ब्रेन डेथ घोषित किया जाता है, पेशेंट को उनके रिलेटिव्स को बताया जाता है, तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि जो ICU की टीम होती है वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को इन्फॉर्म करती है कि कोई ऐसा पेशेंट है जो ब्रेन डेथ है, जो जिसको आप अंगदान के लिए आप बात कर सकते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि उसके बाद हम ट्रांसप्लांट की टीम जो है वो इंटीमेट होने के बाद में हम उनके पास जाते हैं और उनको ब्रेन डेथ के जो उन्होंने समझा है ब्रेन डेथ के बारे में वो उनको फिर से समझाया जाता है कि आपने कहाँ तक उस प्रोग्नोसिस को समझा है, पेशेंट की कंडीशन को कहाँ तक समझा है, ताकि ये जान सके कि वो अंगदान करने के इच्छुक है या हमें उनको जानकारी देनी है अंगदान के बारे में, ये सब बताया जाता है।
3: बिल्कुल। अंबे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस समय बच्ची का ब्रेन डेड घोषित किया गया वो एक तरह से परिवार के लिए कठिन परिस्थिति थी, तो उस समय परिवार को अंगदान के लिए आप

0: तो उनको उनकी इच्छा से दान किया जाता है। तो वो जैसे जिस अंग को दान करना चाहते हैं उनको हम आगे आके उन जो भी दान करना चाहते हैं, तो उनकी जो फैमिली है उन्होंने लीवर और किडनी डोनेशन के लिए हाँ बोला था। तो हमें जैसे लीवर तो किसी कारणवश हो नहीं पाया, बट किडनी डोनेट हुआ है। जो एम्स रायपुर के ही दो फॉलोअप पेशेंट जो किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, उनके दो मरीजों को किडनी मिली है, जिसमें एक 13 वर्ष का बच्चा है और एक 45 वर्ष का पुरुष है। जो बच्चा जो है वो लगभग 3 साल से डायलिसिस से जूझ रहा था, और जो पुरुष है 45 वर्ष के, वो भी लगभग 5 वर्ष से इस बीमारी से जूझ रहे थे। तो इन दोनों को लाभ मिला है, जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है वो सक्सेसफुल रहा है।
1: बिल्कुल। अंबे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के तौर पे ऐसे मामलों में आप लोगों की क्या जिम्मेदारियां होती
0: हैं? देखिए, हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि जैसे ब्रेनडेड पेशेंट है उनका हम काउंसलिंग करते हैं अंगदान के लिए, और सिर्फ ब्रेनडेड पेशेंट है उनका ही हम काउंसलिंग करते हैं। बाकी जैसे अदर पेशेंट जो वेंटिलेटर पे रहते हैं उनको हम काउंसलिंग नहीं कर सकते, ब्रेनडेड पेशेंट को ही काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किडनी के मरीज हैं, लिवर के मरीज हैं, जो वेटिंग लिस्ट में मतलब बहुत दिन से बीमारियों से जूझते रहते हैं, तो उनकी मदद हो जाए। तो हम इस चीज के लिए हमेशा आगे रहते हैं कि मतलब हमारे हॉस्पिटल में डोनेशन हो।
1: बिल्कुल। और विनीता जी, एक बात ये भी देखने को मिलती है कि अंगदान को लेकर के लोगों के मन में कई सारी गलतफहमियां भी होती, तो ये किस तरह की गलतफहमियां होती है और इनसे आप लोग किस तरह से समझाते हैं लोगों को?
0: तो जैसे जब भी हम अंगदान के लिए किसी से बात करते हैं, किसी के परिवारजन से बात करते हैं, तो उनके जो मन में है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होता है ये, अंगदान करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या मतलब क्यों हमें अंगदान करना चाहिए, ये सारे होते हैं। और उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ सुन रखा होता है। जैसे आप मिथ्स में बोल रहे हैं, तो जैसे किसी को लगता है कि अगर हमने किडनी दान कर दिया या आंख दान कर दिया है ना, तो अगले जन्म में जब हम पैदा होंगे तो शायद हम किडनी नहीं रहेगी हमारे ये शरीर में, या हम नेत्रहीन पैदा हो जाएंगे, ऐसी मिथ्स होती हैं, है ना। कई पेशेंट्स को, कई परिवार को ऐसा लगता है कि जैसे ही ब्रेन डेथ जब पेशेंट का हो जाता है और हम अंग दान करने की बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब हमारे मरीज का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा अच्छे से, अब वो उनका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ ब्रेन डेथ हो जाने के बाद अंग दान की ओर है, जबकि ऐसा होता नहीं है, है ना। सबसे पहला प्रायोरिटी जो डॉक्टर्स की टीम का होता है वो पेशेंट को ठीक करना होता है और बचाना हो।
1: बिल्कुल। और आपको लगता है कि इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ में अंगदान के प्रति जो है वो जागरूकता बढ़ेगी? अंबे जी,
0: जी बिल्कुल बढ़ेगी, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब यहाँ पे एम्स में पहली, छत्तीसगढ़ में दूसरी बार और एम्स में पहली बार किसी बच्चे के परिवार ने, मतलब 12 साल की बच्ची के परिवार ने ये साहस दिखाया, और अभी तक एम्स में ये 8वां डोनेशन हुआ है। तो इस मतलब डोनेशन के बाद बहुत सारे न्यूज कट्स आते हैं, इन सबसे भी जागरूकता होनी चाहिए। मतलब
1: बिल्कुल। और अंत में विनीता जी, श्रोताओं के लिए आप लोगों का क्या संदेश है ऑर्गन डोनेशन को लेकर?
0: तो जैसे अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग अवेयर हो पाए इस चीज के लिए कि ऑर्गन डोनेशन हो पाए, है ना। तो जैसे हमारे लिए, हमारी तरफ से ये रहेगा कि जो पहले चीज तो ये कि लोग जान पाए कि जो एक ब्रेन डेथ मरीज है वो 8 लोगों की जिंदगियां बचा सकता है, जाते जाते अपना जीवन, जैसे उनका जीवन नहीं रहा है लेकिन वो 8 लोगों की जिंदगियों में जी सकता है। तो ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में, तो वो सामने आकर अंगदान के लिए वो नहीं करते। लेकिन जैसे अभी क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में या एक नेशनल पोर्टल पे एक प्लेज फॉर्म आता है इसके लिए, शपथ प्रमाण पत्र, कि आप जीवित रहते रहते अपने अंग दान करने के लिए आप प्लेज ले सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। तो इससे बहुत सारी लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि आप मरने के बाद भी अपने अंग दान करके जा सकते हैं।
1: बिल्कुल। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, इतिहास केवल किताबों में दर्ज घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि समाज के स्मृतियों और विरासत का भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इन्हीं ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण और उनकी उपयोगिता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखा

0: कार सप्ताह मनाया जा रहा है। इस विषय पर हमने चर्चा की संस्कृति विभाग के उपसंचालक डॉक्टर प्रताप चंद्र पार्क से। आइए सुनते हैं उनसे ये विशेष बातचीत।
1: अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के मौके पर रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से लोगों को ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रताप चंद्र पारक, उपसंचालक संस्कृति विभाग। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह क्या है और इसका महत्व क्या है।
2: अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह ये वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख परिषद के द्वारा 2007 में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाएगा। उसी के तारतम्य में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें जो अभिलेख हैं जनता के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। और इस वक्त हम इस सप्ताह को 8 जून से लेके 12 जून तक के मना रहे हैं। और इस वर्ष का थीम है, जो प्रत्येक वर्ष एक थीम होता है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के द्वारा एक थीम दिया जाता है, तो इस वक्त थीम रखा गया है न्याय के लिए अभिलेख अधिकार स्मृति करके। तो ये जो न्याय के लिए अभिलेख है वो अभिलेखागार में जो दस्तावेज है ये इनको उपलब्ध कराया जाता है। और ये हमें बताते हैं जो अभिलेख हैं कि भाई ये जो पुराने अभिलेख हैं उनमें हमारी अधिकारिता क्या थी या हम किस तरह जुड़े हुए थे।
1: और क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है, आम लोगों के लिए एक तरह से ओपन रखा गया है, तो लोग क्या क्या देख सकेंगे और कौन से विशेष जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
2: यहाँ पे 12 टॉपिक को लेकर अभी लगाए गए हैं। 12 टॉपिक, पिछले साल हमने जो हमारे छत्तीसगढ़ के रियासत थे उनके फ्लैग्स भी लगाए हुए हैं। तो 12 टॉपिक्स में जो लगाए गए हैं, तो जब राज्य बना, जब राज्य नहीं देश का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो 1947 में जब देश अलग हुआ उस समय आप लोग को शायद मालूम होगा सीपीएन बरार कहलाता था ये जगह। ये सीपीएन बरार जो प्रोविंस था इसके राज प्रधानमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हुआ करते स्टार्ट जब, तो उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गई, तो उससे संबंधित अभिलेख हैं। और वो छुट्टी घोषित हुई तो उस समय जब भारत देश अलग बना, चूँकि ये संघों एक राज्यों का संघ था, तो जो सीपीएन बरार उसके जो अब आज के ज़माने में आज जो है जो स्टेट है वो मुख्यमंत्री कहलाते हैं, उसी तरह सीपीएन बरार जो था वो मध्य प्रोविंस का था जिसके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बने। और इसी तरह अन्य अभिलेख भी लगे हुए हैं।
1: और किसी भी राज्य में अगर हम देखें तो ये अभिलेखागार किसी समाज को या उनके राज्य के इतिहास को संरक्षित करने में कितनी इनकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है।
2: इस संबंध में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। माना एयरपोर्ट जो है 1942 में जमीन अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज, तो उन किसानों को जिनको आज तक के मुआवजा नहीं मिला है, तो पिछले साल हमने इससे संबंधित अभिलेख का यही अभिलेखागार दिवस में लगाया हुआ था सप्ताह में, तो वो शख्स आके हमसे अभिलेख सूचना के अधिकार में ले गया और वो आज न्यायालय में गया क्योंकि उनके पूरे पैतृक उसमें नाम दिए हुए थे। तो जो आप कहना चाहते हैं ये समाज के लिए पूरी तरह आईना है और एक न्याय के रूप में जो जस्टिस दिलाता है सामान्य जनता को।
1: बिल्कुल। और क्योंकि अब तो डिजिटल दौर भी चल रहा है, तो ऐसे में जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, अभिलेख हैं, तो उनके संरक्षण को लेकर के विभाग के सामने किस तरह की चुनौतियां होती हैं?
2: नहीं, हम इन चुनौतियों को फेस कर रहे हैं और इन चुनौतियों को हमने एक्सेप्ट भी किया है।
1: बिल्कुल, ये जो आयोजन हो रहा है ये एक तरह से आम लोगों के लिए तो है ही, शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और खासकर जो हिस्ट्री से जुड़े हैं, इतिहास के छात्रों के लिए ये कितनी उपयोगी साबित हो सकती है?
2: बहुत ज़्यादा उपयोगी। आज रविशंकर यूनिवर्सिटी के जो HOD हैं मिश्रा सर भी आए थे।
1: बिल्कुल। और अंत में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश आप?
2: भाई, अभिलेखागार हम बहुत जल्दी डिजिटलाइज करके हम ऑनलाइन अवेलेबल कराने वाले हैं।
1: बिल्कुल पारक सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: साथियों, धरती आबा बिरसा मुंडा

0: केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि जनचेतना, आत्मसम्मान और सामाजिक जागरूकता के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके स्मृति दिवस पर उनके जीवन और संदेश की प्रासंगिकता पर हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ आदिवासी परिषद के अध्यक्ष आर के शाहजी से।
1: बताऊं, आज भगवान बिरसा मुंडा का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने अपने विचारों, नेतृत्व और संघर्ष से आदिवासी समाज में नई चेतना जगाई। आज भी उनका जीवन और संदेश करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत, उनके योगदान पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के आर शाहजी। शाहजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: जी नमस्कार
1: जी। सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम आज भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या मानी जानी चाहिए?
2: जल, जंगल, जमीन और युवाओं के शोषण के खिलाफ में जो उन्होंने जो विद्रोह चलाया
1: जी,
2: और संगठित विद्रोह चलाया, बिरसा मुंडा की जो पहचान है आज पूरे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
1: जी जी
2: इसी रूप में जानी जाती।
1: बिल्कुल, और क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता था, और उनके इस संबोधन के पीछे क्या भावना और इतिहास जुड़ा हुआ है?
2: क्योंकि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक
1: जी
2: तीन क्षेत्रों में उन्होंने विद्रोह किया
1: जी,
2: और इस असंगठित विद्रोह किया। उसके पहले का जो भारत का इतिहास है 1857 की क्रांति के बाद का
1: जी जी,
2: तो उसके बाद फिर वो संगठित विद्रोह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ
1: जी।
2: तो बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन रहा 3-4 साल का, वो एक संगठित विद्रोह रहा। वो अकेले ट्राइबल को उन्होंने संघर्ष में शामिल नहीं किया
1: जी जी।
2: उसने झारखंड के जो ओबीसी जो जातियां थी
1: जी जी,
2: उनको उन्होंने संगठित किया और तब मिल करके लड़े। इससे वो बड़ा डायनामिक संघर्ष रहा उनका, और अंग्रेजों को बाध्य होना पड़ा। आदिवासी युद्धों में बहुत सारे कानून हमारे में बिरसा मुंडा का आंदोलन ही सफल हुआ।
1: यकीन है सभी लोगों को और सभी वर्गों को उन्होंने लेकर चले, और क्योंकि ये भी कहा जाता है कि उस समय उनकी उम्र भी काफी कम थी, तो इस कम उम्र में उन्होंने लोगों के बीच में अपना ऐसा प्रभाव कैसे बनाया होगा?
2: देखिए, जो भी साहब के साथ लड़ता है
1: जी
2: और जमीनी मुद्दों को उठाता है, समाज के हित की बात करता है, तो हीरो होता ही होता है
1: जी जी।
2: आज भी हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग हीरो बनता है।
1: यकीनन, और क्योंकि बिरसा मुंडा केवल एक आंदोलनकारी नहीं थे बल्कि समाज सुधारक भी थे, उनके व्यक्तित्व का ये पक्ष कितना महत्वपूर्ण है?
2: बहुत महत्वपूर्ण। कम उम्र में उन्होंने जो जनता के बीच में जो भय था, सेठ साहूकारों का, टिप्पुओं का और अंग्रेजों का, उसको दूर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल
1: जी। बिल्कुल, और अगर हम अभी आज की युवा पीढ़ी को बिरसा मुंडा के जीवन से सीख लेने की बात कहें तो वो कौन सी सीख होगी सर?
2: संघर्ष के खिलाफ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में बोलना
1: जी,
2: और अपनी आवाज के साथ में तमाम आवाजों को जोड़ करके विद्रोह करना
1: जी,
2: ये आज युवा पीढ़ी को उसे सीखना चाहिए
1: जी। बिल्कुल, और आज क्योंकि विशेष स्मृति दिवस भी है बिरसा मुंडा जी का, तो इस मौके पर आप श्रोताओं के लिए अपना क्या संदेश देंगे?
2: मैं तो इस देश की जनता को बिरसा मुंडा के आदर्शों में जो सबसे बड़ा आदर्श था कि शोषण, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ में चुप नहीं रहना चाहिए,
1: तो
2: चाहे वो शोषण करता इतना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। ये बिरसा मुंडा की प्रेरणा से हमको सीखना चाहिए, और आज भी हमको अपना एक अच्छा देश बनाना है, महान भारत बनाना है, तो हमको अन्याय अत्याचार के खिलाफ में मुखर होना चाहिए। यही उनका संदेश था, और आज देश की जनता को उनके इस आदर्शों को एक्सेप्ट करना चाहिए।
1: बिल्कुल के आर शाह जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद, धन्यवाद आपका।

साथियों, जिंदगी की असली पहचान मंजिल पाने में नहीं बल्कि हर दिन कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ने में है। इसी सकारात्मक विचार के साथ अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अपने सपनों पर भरोसा रखिए, मेहनत का साथ मत छोड़िए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार रायपुर में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति देवव्रत भगत को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, प्रस्तुतकर्ता थे देवव्रत भगत। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत

0: संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
6: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
4: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी

0: गिरफ्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमांड पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. Federal Court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
3: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade facilitation, connectivity, national security, and the vision of Viksit Bharat by 2047. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. The system will also provide end-to-end digital

0: छत्तीसगढ़ ही समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू को तीले। श्रोता साथी हो, आज के अंक में आप मन ल सुनवात हन कवि गोष्ठी, और एक कवि गोष्ठी के संचालन करत हैं श्री ईश्वर साहू।
1: संगवारी हो, जय जोहार। मोर भुइया कार्यक्रम के कवि गोष्ठी में आज संग्रह हवें श्री शिव कुमार अंगारे जी, बंगला मटिया बालोदले, सुश्री सुनंदा शर्मा जी भनपुरी रायपुर ले, और मैं स्वयं ईश्वर साहू ग्राम बंधी बेमेतरा ले। आज की कवि गोष्ठी में मैं सबले पहली आमंत्रित करत हूँ सुश्री सुनंदा शर्मा जी ला।
2: बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर भैया। और जैसे कि आज मोर भुइया कार्यक्रम के अंतर्गत हमन आयन कवि गोष्ठी करे भर, और सबले पहली मैं गर्मी के बात ला करूँ। और कहते ना कि जेठ जेठ ही होते, ये जेठ के महीना में सबो जन ला अपन मूड़ी ला ढाके ला पर जाते। मैं वही जेठ और गर्मी के बात ला करता हूँ, और ये कविता ला आप मन के सामने रखता हूँ, सुनू।
1: स्वागत स्वागत।
2: जेठ के महीना, जेठ के महीना आवत है पसीना, जेठ

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया श्री सुनंदा शर्मा जी, ले आप मन सुने हो, जेठ के महीना, जेठ के महीना आवत है पसीना। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शिव कुमार अंगारे जी ला अपन कविता पाठ करे बार।
2: ये साल घाम बड़ जीवलेवा हो गए है और वही सब बात ल लेके मोरे रचना है सूरज रिसागे। घाम जरत है सरी देह चटाचट सरी

0: आघू के कवि गोष्ठी ल आगे बढ़ाए बर में भैया ईश्वर साहू बंधी ल आवाज देता हूँ।
1: धन्यवाद सुनंदा जी। गर्मी उमिया लेवत है, सबो ला जियान परत है।
0: सही बात,
2: बढ़िया।
1: आवो वही जियान परत तेला सुनथन, कावर जियान परत है।
2: स्वागत, स्वागत,
0: स्वागत है भैया।

0: आवो आगु के काव्य गोष्ठी अब हमन बरसात के आगमन के ऊपर सुनथन। तो सबले पहली मैं श्री शिव कुमार जी अंगारेला आमंत्रित करत हूँ बरसात के स्वागत बर कविता पढ़े बर।
1: जेठ के घाम जब जना थे तब सब ल बरसात के सुरता थे, तो वही बात ला अपन रखत हूँ, बादर ल बलायक कोशिश करत हूँ।
2: स्वागत है सर।

बादर गजब तपिस झांझ झोला जेठ के महीना बाय बिया कुल करी से अबड़ घमुरी पछीना गजब तपिस झांझ झोला जेठ के महीना बाय बिया कुल

0: घर।
1: रिमझिम के घुंघरू बांध बरखा रानी नाचही, लौकत बिजली के संग नरवा ढोड़गा हँसही, लौकत बिजली के संग नरवा ढोड़गा हँसही, मिचका मन एक सुरमा तब आल्हा बाँचही, मिचका मन एक सुरमा तब

परस जा रे अब तो करिया बादर, झूम के बरस जा रे अब तो करिया बादर, गिर मुसर के धार पर खेत झन परिया, जाग ही धनहा डोली तहर से हलधरिया, गिर मुसर के धार पर खेत झन परिया, जाग ही धनहा डोली तहर से हलधरिया, गूंजन दे खेत खार करमय ददरिया, सुन के अरतता के राग जागे भुइया के भाग, सुन के अरतता के राग जागे भुइया के भाग, मगन मन किसान लय।

बरस जा रे अब तो करिया बादर। आखिरी बंद है। बादर तोर हाथ मा है सबके दाना पानी, लिखथस तही तो सबके सुख दुख कहानी। बादर तोर हाथ मा है सबके दाना पानी, लिखथस तही तो सबके सुख दुख कहानी। सरबस जिनगी देवैया तय दधीचि दानी,

0: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप मन सुने हो श्री शिव कुमार अंगारे जी ले। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुश्री सुनंदा शर्माला।
1: धन्यवाद भैया। और जेठ के बाद तो मन कट रहे, बारिश के बाद अब शुरू हो चुके हैं, तो कैसे हम मन इंतजार करते हैं कि पानी गिरे, हम मन के मन प्रसन्न होए। मैं वही क्रम लागे बढ़ाता हूँ,
0: स्वागत स्वागत।
1: बरखरानी के होए अगोरा, बरखरानी के होए अगोरा, चम चम बिजली चमके,

0: और संचालन करैया भाई ईश्वर साहू जी लमे आरो देत हो कि वह अपन सुघर कविता पाठ ला हम ला सुनाए।
1: बहुत धन्यवाद। जब बारिश आए बर रिथे तब हमार प्रकृति बहुत आनंद से झूमर उठते, काबर की सबके प्यास बुताए बर रिथे।
2: हाँ।
1: तो आओ। डबरा मुस्कावत है हासे नरवा ढोड़गा, रुख राई जामत है कांदी कोला करगा। अरे डबरा मुस्कावत है हासे नरवा ढोड़गा, रुख राई जामत है कांदी कोला करगा। धरती दाई हा सिंगार साजे रे, झमझमा झमना छत बरसात आगे रे। आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे, झमझमा झमना छत बरसात आगे रे। आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। आगे है किसान बैला नागर लधर के, भुइयाला जोहारत है सुघर पाँव पर के। भुइयाला जोहारत है सुघर पाँव पर के। झुमर झुमर बैला रेंगे सुन के रे ददरिया, अर्रतता नहीं लागे जोते हरिया हरिया। अर्रतता नहीं लागे जोते हरिया हरिया। बाँक बोवारा माते चारों कोती जमके, पानी पी के भुइया गजब सोंधे सोंध गम के। बाँक बोवारा माते चारों कोती जमके, पानी पी के भुइया गजब सोंधे सोंध गम के। अन्नदाता के भाग जागे रे, झमझमा झमना छत बरसात आगे रे। आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे, झमझमा झमना छत बरसात आगे रे। आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। डोंगरी का छार डोली भर के जला रंग है, भुइया के जीव जंतु सबोला उमंग है। भुइया के जीव जंतु सबोला उमंग है। कभू घाम छाँव सूरज रही रही के झाके, शीतल पुरवैया सुघर संगीत साजे। शीतल पुरवैया सुघर संगीत साजे। घटा छागे चारों डहर निचट अंधियार के, छनकत है बूंद बूंद फुटे फुटका पार के। घटा छागे चारों डहर निचट अंधियार के, छनकत है बूंद बूंद फुटे फुटका पार। चिरई चिरगुन मनोलिया गे रे, झमझमा झमना छत बरसात आगे रे। आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे, झमझमा झमना छत बरसात आगे रे। आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। डबरा

0: झमझमा झम नाचत बरसात आ गेरे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गेरे। झमझमा झम नाचत बरसात आ गेरे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गेरे। संगवारी हो, अब बेरा है जाए के, तो जाए के बेरा में एक ठन छोटे से कविता में फिर से आप मल्ला सुनावत हो।
1: स्वागत
0: मौका।

0: भीज गए धरती के कोरा पेड़ लगा लो
1: वाह वाह वाह वाह
0: जी,
1: वाह,
0: भीज गए भुइयां के कोरा पेड़
1: बिल्कुल तेरा
0: लगा
1: बात।
0: लो जी, आओ पेड़ लगा लो जी, सब जन पेड़ लगा लो जी। कुंवर होते माटी कुंवर, जीव जंतु के तन, घाम के देखे तरुआ झुकाते, हो जाते
1: वाह
0: अलहन। अहिला जथे रुख राई, संग माया टा जथे पानी, बिन बिरछा बिन जुड़ छैहा के जर जाथे जिन गानी।
1: वाह,

0: भीज गए भुइयां के कोरा पेड़ लगा लो जी। बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी हो आज के कवि गोष्ठी माँ श्री शिव कुमार अंगारे जी संग्रह रहीन, सुश्री सुनंदा शर्मा जी संग्रह रहीन और महू ईश्वर साहू संग्रह रहे। तो जाय के बेरा आप सबला जय जोहार जय छत्तीसगढ़।
1: अभी आप मन सुनत रहो कवि गोष्ठी, एकर संचालन करत रहिन श्री ईश्वर साहू और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के अंकले विदा देवा जय जोहार राम राम।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वय साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे ही लीजिए सुनिए पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए। लेखिकाएं सुनीला दास, प्रस्तुतकर्ता हैं समीर शुक्ला।

0: अजी सुनिए, अजी सुनिए।
1: ओफो, फिर शुरू हो गई मैडम।
2: अब क्या हुआ भगवान, सुबह की चाय बना दी, बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया और अब अपने कपड़े प्रेस कर ही रहा हूँ। अब और क्या आदेश है इस सेवक के लिए?
0: ओहो, एक दिन सुबह घर के एक दो काम क्या कर दिए तो आप सेवक बन गए, और मैं जो रोज खटती रहती हूँ घर के कामों में, उसका क्या?
2: हाँ हाँ, अब तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी मोहतरमा, एक खादिम तो आपकी सेवा में है ही। कॉलोनी की प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के बाद ऐसे कई सेवक और सेविकाएं आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे मैडम।
0: उड़ा लीजिए जितना मजाक उड़ाना है, मेरा भी दिन आएगा और सब देखते रह जाएंगे, देखना।
1: देख ही तो रहे हैं, अब और कौन सा दिन दिखाने वाला है ऊपर वाला, पता नहीं।
0: क्या क्या कहा आपने?
1: कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं, आदेश करिए।
0: वो क्या है ना, एक्चुअली आज शाम को अपनी कॉलोनी में एक मीटिंग है और मुझे उसमें भाषण देना है।
1: तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
0: बस ज्यादा कुछ नहीं, 2-4 पेज भाषण लिख दीजिए ना मेरे लिए, मैं उसी से काम चला लूंगी।
1: अरे भगवान, दिन भर तो घर में सबको भाषण देती रहती हो, कभी मुझे, कभी बच्चों को, कभी काम वाली बाई को, कभी।
0: बस बस, मैंने भाषण देने को नहीं, भाषण लिख कर देने को कहा है।
1: ओहो, तो क्या अब यही काम रह गया है मेरे पास? अरे घर में बच्चों के काम, ऑफिस में बॉस का काम, और फिर।
0: देखिए जी, भूलिए मत कि घर की बॉस पत्नी ही होती है।
1: अच्छा, ये गलत पाठ किसने पढ़ा दिया है तुम्हें?
0: गलत नहीं रंजन जी, एकदम सही पाठ पढ़ाया है। और अब तो कॉलोनी की प्रेसिडेंट बनकर मैं यहाँ भी सबकी बॉस बन जाऊंगी, और फिर पार्षद, महापौर, विधायक, और फिर।
1: हाँ, शेख चिल्ली के हसीन सपनों की दुनिया से अब बाहर भी आ जाइए मोहतरमा। एक घर तो संभाले नहीं संभलता, अपने घर की समस्याओं को तो दूर करते नहीं बनता, अरे कॉलोनी की समस्याएं खाक दूर करेंगी।
0: देखिए जी, आपकी तरह नहीं हूं मैं, मुझे घर और

0: बाहर दोनों के काम को हैंडल करना अच्छी तरह से आता है।
1: अच्छा, ये बात तो ठीक है। आज से घर और बाहर दोनों के काम खुद ही करो। मैं चला अपने ऑफिस। और हाँ, इतना जो भाषण देती रहती हो ना घर में, उसे ही बोल देना, सारी पत्नियां अपने पतियों को भाषण दे देकर अच्छा खासा भाषण दे ही लेती हैं। उन्हें किसी से भाषण लिखवाने की क्या जरूरत।
0: तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे? तुम्हें तो मैं सबसे बड़ी दुश्मन लगती हूँ ना। तुम तो मुझे आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते।
1: खुद तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो और कहती हो मैं आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता।
0: हाँ, अच्छा, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ ना, और तुम मेरा बहुत सपोर्ट करते हो, है ना?
1: अरे अब तो ये ऊपर वाला ही जानता है। सुबह से उठकर घर के कामों में तुम्हारी हेल्प ही तो कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है।
0: प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हें है। तुम्हें तो यही लग रहा होगा कि अगर कॉलोनी की प्रेसिडेंट मैं बन गई तो तुम्हारी पूछ परख कम हो जाएगी, है ना?
1: अब पूछ परख की तो पूछो ही मत। अरे जब घर में ही कोई पूछ परख नहीं है तो बाहर वालों की क्या कहूँ।
0: हाँ हाँ, बाहर वालों को क्यों कहोगे, तुम तो बस मुझे ही कहोगे। खुद तो हर बात पर ताना देते रहते हो और अब बच्चों को भी यही सिखा रहे हो।
1: अच्छा, अरे तो तुम ही उन्हें कुछ सिखा देती ना, पर तुम्हें किटी पार्टियों से फुर्सत ही कहाँ है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, सिवाय इधर उधर की बातों के कोई बात होती ही कहाँ है लेडीज के बीच।
0: अच्छा, और जेंट्स क्या करते हैं जी, सिवाय वक्त और हालात को कोसने के? कोई और काम रहता भी है? कॉलोनी की वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम आए, ड्रेनेज सिस्टम जाम हो जाए, कॉलोनी का गार्डन उजड़ जाए, जेंट्स को क्या? बस एक ही जवाब होता है सबके पास, ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिलती, अब हमें कॉलोनी की समस्याओं में मत उलझाओ।
1: अगर जेंट्स ऐसा कहते भी हैं तो क्या गलत कहते हैं?
0: तो फिर कॉलोनी का प्रेसिडेंट भी किसी लेडी को बनना चाहिए ना, जो कॉलोनी की समस्याओं को समझ सके।
1: बस बस, अब रहने भी दो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
0: हाँ हाँ, चुप ही हो जाती हूँ ना, मुझे भी तुमसे बहस करने का कोई मुंह नहीं, समझे?

0: अरे कोई है?
1: रंजन भाई, रंजना भाभी, कहाँ हैं आप लोग? ये अजीब सी शांति, क्या हुआ रंजना भाभी?
2: अरे होना क्या है रमेश, वो कॉलोनी की शर्मा भाभी है ना, उन्होंने उचका दिया है कि रंजना इस बार कॉलोनी की प्रेसिडेंट बन ही जाओ।
1: अरे ये तो अच्छी बात है ना।
3: पर इन्हें कहाँ अच्छी लगती है भाई साहब, इन्हें तो मेरे हर काम में खोट नजर आती है। इन्हें लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, बस खाना बनाओ, सबको खिलाओ। हाउसवाइफ को तो कोई कुछ समझता ही नहीं, न पति न बच्चे।
2: अच्छा अब पति के साथ बच्चे को भी घसीट लो, है ना वो तुम्हारी शर्मा भाभी, दिन भर खुद जो कुछ करती नहीं सिवाय इधर की बात उधर और उधर की बात इधर।
3: हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरी सारी फ्रेंड्स ऐसी ही लगती है, और एक मैं हूँ जो हमेशा तुम्हारे दोस्तों की खातिरदारी करती ही रहती हूँ।
1: हाँ रंजन भाई, ये तो भाभी एकदम सही कह रही है, दोस्तों की खातिरदारी तो खूब करती है रंजना भाभी।
2: तुम भी ना यार, बस
3: अब आप तो यही कहेंगे, ठीक है आज से मैं बाहर का काम करती हूँ और अपना इंतजाम आप कर लीजिएगा।
1: अरे भाभी ऐसा मत करिए, वरना रंजन भाई तो बिल्कुल टूट जाएगा।
2: अरे नहीं यार रमेश, मैं भी सब कर सकता हूँ, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है, सारे काम आते हैं मुझे भी।
3: ओहो सारे काम आते हैं तो करते क्यों नहीं, मैंने रोका है।
2: अरे तुम भला क्यों रोकने लगी भगवान, तुम तो जाने कब से यही चाहती हो।
3: और तुम क्या चाहते हो, बिना तनख्वाह की काम वाली बाई जो मिल गई है तुम्हें, दिन भर बस काम करवाओ।
2: अब तनख्वाह की बात मत करो भगवान, मेरी जेब हर महीने कौन काटता है ये तो घर का बच्चा बच्चा जानता है। मेरी तनख्वाह तो सिर्फ कहने को मेरी है, जाती तो वो तुम्हारे पास है।
3: हाँ जी क्यों नहीं, आखिर उस पर मेरा भी हक है।
2: अरे लेकिन हक सिर्फ जताने से नहीं मिल

0: जाता।
1: अगर ऐसा होता
2: तो क्या? अरे खुल के बोलिए ना, अब बोल ही दीजिए ताकि मन में कुछ बाकी न रहे। मैं भी तो जानू और क्या क्या है आपके मन में।
1: ओहो भाभी, आप भी ना, अब छोड़िए भी।
2: हर बार मैं ही तो छोड़ती हूँ भैया, ये कभी चूकते हैं क्या बोलने से?
1: अच्छा, कब मैंने तुम्हें कुछ कहा है? अरे बस यही समझा रहा हूँ कि कॉलोनी की प्रेसिडेंट बनना आसान है, लेकिन उस पद की जिम्मेदारी तुम अभी संभाल नहीं पाओगी। अरे बच्चे अभी छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं फिर सोचना।
2: बस यही सब सोचते सोचते तो उम्र निकल गई है मेरी। बस तुम्हारे प्रवचन सुनना ही लिखा है मेरी किस्मत में।
3: अरे भाभी रुकिए, तो मुझे भी तो मौका दीजिए कुछ बोलने का।
2: ठीक है भाई साहब, आप भी बोल ही लीजिए, पर ये नहीं समझने वाले।
3: देखो रंजन, इस बात से तुम भी इनकार नहीं कर सकते कि लेडीज बहुत अच्छी मैनेजर होती। घर के सारे कामों में भी उनका टाइम मैनेजमेंट दिखते ही बनता है, इसीलिए तो घर संभालने की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई है।
1: वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले घर संभाल लो फिर।
3: क्या रंजन भाई, आप भी ना पहले बात तो पूरी करने दीजिए। अब देखिए, लेडीज को अच्छा मैनेजर इसलिए माना जाता है क्योंकि वो घर और बाहर दोनों जगह संतुलन स्थापित करते हुए काम करती हैं, और दुनिया का कोई काम अब ऐसा नहीं जो नारी ना कर पाए। इसीलिए तो नारी को शक्ति का ही रूप मानकर सारी दुनिया उन्हें सलाम करती है।
1: लेकिन लेकिन रमेश भाई।
3: लेकिन वेकिन कुछ नहीं रंजन भाई, रंजना भाभी कॉलोनी की प्रेसिडेंट बन गई तो वाकई सारी समस्याओं पर इनकी नजर रहेंगी।
1: कॉलोनी का तो पता नहीं, मेरी तनख्वाह पर इनकी नजर जरूर रहती है।
2: देखा देखा आपने रमेश भाई, ये हमेशा सबके सामने यही कहते हैं, जैसे जैसे मैं कोई।
1: देखा देखा रमेश, आखिर आंसुओं के रूप में अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दिया इन्होंने।
3: ओफो, तुम भी ना जरा जरा सी बात पर भाभी को परेशान कर देते हो। अब तुम ही बताओ, पिछली बार जब कॉलोनी में वाटर सप्लाई वाला पंप खराब हो गया था, सारा दिन कॉलोनी की लेडीज परेशान थी, तब प्लम्बर को किसने बुलाया और पंप किसने ठीक करवाया?
1: अब वो तो रंजना को कहीं प्लम्बर का नंबर मिल गया था इसलिए।
2: कहीं से मिला नहीं था, किटी क्लब में अभी एक नई दोस्त बनी है मेरी, उससे लिया था मैंने। अगर उसने मुझे प्लम्बर का नंबर न दिया होता तो ऑफिस से लौटने के बाद आपके लिए मुंह धोने तक का पानी न होता।
1: अब रहने भी दो।
2: रहने भी क्या दो, जिस किटी क्लब की आप लोग सारा दिन बुराई करते हैं ना, उसी किटी क्लब की सारी सदस्याएं पानी की प्रॉब्लम लेकर पार्षद के पास गई थी, और पार्षद ने बहुत जल्द कॉलोनी में निगम का नल कनेक्शन देने की बात कही है।
3: भाभी बिल्कुल ठीक कर रही हैं रंजन भाई, कॉलोनी की समस्याओं से इन सबको ही जूझना पड़ता है, क्योंकि जेंट्स तो ऑफिस में रहते हैं, उन्हें रोजमर्रा की समस्याओं का पता कहां चलता है। कॉलोनी में हर पर्व, हर उत्सव और जो भी गेट टूगेदर होता है, उसमें भी सबको एकत्र करने में लेडीज का ही योगदान होता है। आज नारी हर क्षेत्र में आगे है, घर और बाहर के बीच संतुलन स्थापित करना उसे अच्छी तरह आता है। भाभी अगर घर से बाहर निकलेंगी तो बच्चों को पढ़ाने और समझाने के चार नए तरीके भी सीख कर आएंगी, समझे?
1: लेकिन
3: रंजन भाई, जमाना बदल गया है। आज नारी सागर की गहराई से लेकर आकाश की ऊंचाई तक पहुंच चुकी हैं। रिक्शा, ऑटो चलाने और ट्रेन से लेकर प्लेन तक उड़ाने में सफल रही हैं।
2: लेकिन ये सब इन्हें बताने से कोई फायदा नहीं है भाई साहब, ये तो बस
1: मैं तो बस तुम्हें परेशान ही करता रहता हूँ, है ना?
2: मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
1: लेकिन तुम्हारा मतलब तो ऐसा ही था। यार रमेश, एक बात तो है, पुरुष बाहर चाहे जितनी बॉस गिरी झाड़ ले, घर में उसकी बॉस उसकी पत्नी ही होती है।
3: तो बस अब अपने घर की बॉस को कॉलोनी की बॉस बना ही दो। जरा सोचो, रंजना भाभी जैसी पढ़ी लिखी और समझदार महिला अगर आपकी कॉलोनी की प्रेसिडेंट बन गई ना, तो समझो।
1: अरे तो समझो, घर में मेरा दाना पानी बंद। क्यों यार रमेश?
3: अरे नहीं, अब ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भाभी खाना बनाना बंद कर देंगी, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी मदद तुम्हें ही करनी होगी।
1: मतलब?

0: मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम आटा गूंथ देना, भाभी रोटी बना लेंगी, तुम सब्जी काट देना, वो सब्जी छौंक देंगी, और
1: अब और क्या,
0: और बस सुबह पीने का पानी भरना होगा और भाभी के लिए एक कप गर्मा गर्म चाय, क्यों भाभी?
2: बिल्कुल, वैसे अगर अभी चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े खाने हैं तो वो बनाने की जिम्मेदारी मेरी।
0: अरे जल्दी ले आओ भाभी, वैसे भी रंजन को खुश करने और राजी करने के लिए इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता।
1: हाँ हाँ भाई, आज तो पकोड़े खिला ही दो, कॉलोनी की प्रेसिडेंट बनने के बाद पता नहीं तुम्हारे हाथ के पकौड़े मिलेंगे या वो भी मुझे अपने ही हाथों से बनाने पड़ेंगे। वैसे अगर ऐसा हुआ भी तो यार रमेश, प्याज तुम्हें ही काटनी होगी, क्योंकि तुम तो जानते ही हो। रंजना, आई हेट टीयर्स।

अभी आप सुन रहे थे पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए। लेखिका थी सुनीला दास, प्रस्तुतकर्ता थे समीर शुक्ल, प्रतिभागी कलाकार थे संजय पांडे, अर्पिता बेडेकर और श्याम वर्मा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। श्रोताओं, आज हिंदी फिल्मों के निर्देशक, निर्माता और पट कथाकार राज खोसला जी की पुण्यतिथि है। 1950 से 1980 के दशक तक राज खोसला जी ने कई फिल्मों का निर्देशन किया। राज खोसला जी का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। उनका बचपन से ही गीत संगीत की ओर रुझान था और वो प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। आकाशवाणी में बतौर उद्घोषक काम करने के बाद राज खोसला जी अपने पिता के साथ पार्श्व गायक बनने की तमन्ना लिए मुंबई आ गए, लेकिन उन्हें पार्श्व गायन का मौका नहीं मिला। किस्मत को कुछ और मंजूर था। गुरुदत्त के असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने काम शुरू किया और उनके साथ रहकर फिल्म बनाने की बारीकियों को सीखा। गुरुदत्त ने अपने प्रोडक्शन के तहत फिल्म CID में राज खोसला जी को निर्देशक के तौर पर ब्रेक दिया। राज खोसला अपने समय में भारतीय सिनेमा के ट्रेंड सेटर साबित हुए, क्योंकि उनके आने से हिंदी सिनेमा में कई बड़े बदलाव हुए। एक तरफ वे अपनी फिल्मों में अभिनेत्रियों को दमदार रोल देने के लिए जाने जाते थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने ही हिंदी सिनेमा में सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों को बनाना शुरू किया, जैसे कि फिल्म वो कौन थी। उनकी निर्देशित प्रमुख फिल्में रहीं CID, वो कौन थी, मेरा साया, दो रास्ते, मेरा गांव मेरा देश और भी अनेक फिल्में। निर्देशक राज खोसला जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित फिल्मों के गाने सुनते हैं। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

सी आई डी, इस फिल्म का नगमा भी आपने सुना। आवाज़ें थीं मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की, गीत था जानिसार अख्तर का और संगीत था ओ पी नैयर का।

लीजिए अब सुनिए फिल्म वो कौन थी का नगमा, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत राजा मेहदी अली खां का, संगीत मदन मोहन का।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म काला पानी का गीत। गीत था मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत था सचिन देव बर्मन का।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश नमस्कार।

0: के बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
3: सुनिए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: सोलहवां साल, इस फिल्म का नखमा भी आपने सुना। आवाज़ हेमंत कुमार की थी, गीत था मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत था सचिन देव बर्मन का।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: घर आंगन, ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

अभी आपने सुना फिल्म बम्बई का बाबू का नगमा। आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। गीत था मजरूह सुल्तानपुरी का और संगीत था सचिन देव बर्मन का। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं दलेश्वर साहू और साथ ही। पहले सुनिए दलेश्वर साहू, सुनीता आचार्य और नंद कुमार के स्वर में ये गीत।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर।

0: अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लीजिए अब सुनिए दलेश्वर साहू और सुनीता आचार्य के स्वर में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे दलेश्वर साहू और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के 3 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत होगी। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाले पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल हैं। भोजराम साहू बालोद जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने वर्ष 2025 में मणिपुर में एक आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। वहीं पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख लंबे समय से बस्तर और राजनांदगांव के दुर्गम जंगलों में नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख को उनके अदम्य साहस, असाधारण वीरता और राष्ट्र सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया जाना पूरे प्रदेश के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। इन्होंने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान विषम परिस्थितियों में प्रदर्शित अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल और कर्तव्य निष्ठा से न केवल अभियान को सफल बनाया बल्कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई ऊर्जा भी दी है। उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी छत्तीसगढ़ पुलिस के दोनों अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से पीएमएसएमए के 10 वर्ष एक दशक की देखभाल राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे से नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने धान खरीदी में करीब 4.5 करोड़ रुपए के गबन मामले में लंबे समय से फरार 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा में वर्ष 2020-21 के दौरान 17,210 क्विंटल से अधिक धान की हेराफेरी की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और सेल्समैन राजकुमार पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है। इस दौरान

0: करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के 3 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत होगी और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। अपने नागरिकों की खुशहाली के लिए प्रदेश शासन कृत संकल्पित है। सरकार ऐसा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती जिससे संवादहीनता की स्थिति पैदा हो। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई है वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम। राज्य में उद्योगों की स्थापना और निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए ये एक एकीकृत औद्योगिक मंच है। सिंगल विंडो सिस्टम से कम समय में सभी सेवाएं एक जगह पर पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध होती है। इससे भूमि आवंटन और सब्सिडी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के आ जाने से विभिन्न विभागों से मिलने वाली स्वीकृतियों का समय अधिकतम 30 दिन हो गया है। साथ ही 90 से अधिक औद्योगिक सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गई है। इसके साथ सेम डे

0: इंस्पेक्शन रिपोर्टिंग को जोड़कर इसे द्रुतगामी बना दिया गया है ताकि उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया सरल और तेज हो सके।
1: मैं ऋतुराज ताम्रकार, उपसंचालक उद्योग संचालनालय रायपुर में पदस्थ हूँ। छत्तीसगढ़ आज देश के उभरते हुए औद्योगिक राज्यों में अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। हमारी औद्योगिक विकास नीति 2024-30 और निवेशक अनुकूल दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य है कि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने और संचालित करने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से उपलब्ध हो। इसी सोच को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 इसके अंतर्गत इन्वेस्ट सीजी पोर्टल विकसित किया है, जो निवेशकों और शासन के बीच एक आधुनिक, डिजिटल और पारदर्शी मंच के रूप में कार्य कर रहा है। अक्सर निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के दौरान विभिन्न विभागों से अनुमति, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ता था। कई बार आवेदन की स्थिति जानना भी चुनौतीपूर्ण होता था। इन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्वेस्ट सीजी को एक ऐसे एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जहां निवेशक को अधिकांश सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। वर्तमान में इन्वेस्ट सीजी के माध्यम से 10 विभागों की 130 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। निवेशक एक ही पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और अपने आवेदन की प्रगति को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही एक बार आवेदन में दी गई जानकारी को बार बार भरने की भी आवश्यकता नहीं रहती। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सिस्टम में स्वतः उपलब्ध हो जाती है। सिंगल विंडो 2.0 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पारदर्शिता और जवाबदेही। जब कोई आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होती है। आवेदन किस अधिकारी के पास लंबित है, किस स्तर पर परीक्षण चल रहा है, आगे क्या कार्यवाही हुई है, इसकी जानकारी सिस्टम में उपलब्ध रहती है। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ता है। इसके साथ ही विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। इससे विभागों की जवाबदेहिता बढ़ती है और निवेशकों को समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने में सुगमता केवल नियमों को सरल बनाने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि निवेशक अपना समय उद्योग के विकास और अपने उत्पादन पर लगाएं, न कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में। इन्वेस्ट सीजी इसी उद्देश्य को पूरा करता है। इस प्रणाली के माध्यम से विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। पहले जहां विभिन्न विभागों में अलग अलग आवेदन करने पड़ते थे, वहीं अब एकीकृत डिजिटल व्यवस्था के कारण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बन गई है। इससे समय की भी बचत होती है, कागजी कार्यवाही कम होती है और निवेशकों को एक बेहतर अनुभव प्राप्त होता है। साथ ही एक बार आवेदन में दी गई जानकारी को बार बार भरने की आवश्यकता नहीं रहती। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सिस्टम में स्वतः उपलब्ध होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया। इसके साथ साथ इन्वेस्ट सीजी निवेशकों के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पे राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश के क्या अवसर हैं, औद्योगिक भूमि की उपलब्धता, कोई सेक्टर विशेष में क्या संभावनाएं हैं, निर्यात, स्टार्टअप, उद्यमिता प्रशिक्षण, इस तरह की समस्त जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। अर्थात निवेश की योजना बनाने से लेकर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने तक की पूरी यात्रा को एक ही डिजिटल इकोसिस्टम में समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने नई तकनीकों का भी प्रयोग करना शुरू किया है। तो हमने ये किया कि निवेशकों की सहायता के लिए वाणी AI आधारित एक वर्चुअल असिस्टेंस उपलब्ध है। वाणी के माध्यम से निवेशक जो है अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं, सेवाओं और प्रावधानों की जानकारी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इससे जानकारी सामान्य जन तक और भी आसानी से पहुंच जाती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का स्पष्ट विश्वास है कि निवेश आकर्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है निवेशकों को भरोसेमंद, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना। हमारा सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो तकनीक के माध्यम से प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी और निवेशक केंद्रित बना रहा है। आज छत्तीसगढ़ केवल प्राकृतिक संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रगतिशील नीतियों और निवेशक अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी जाना जा रहा है। इन्वेस्ट सीजी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म इस परिवर्तन के प्रमुख आधार है। मैं सभी उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता हूँ कि वे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं और राज्य की विकास यात्रा के भागीदार बने।

0: छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। सरकार ये चाहती है कि प्रदेश की युवा शक्ति इधर उधर भटके बिना अपने ही राज्य में रोजगार पाकर राज्य की उन्नति में सहायक बने। छत्तीसगढ़ अब बड़ी ही तेजी के साथ औद्योगिक और तकनीकी हब बन रहा है। ये अब निवेश का सबसे आकर्षक केंद्र बन चुका है। छत्तीसगढ़ में कई संरचनात्मक सुधार लागू किए गए हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।
1: मैं गुंजन शुक्ला, मुख्य निवेशक छत्तीसगढ़। साथियों, जैसा कि आप सभी भलीभांति जानते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की ये पावन धरती हमारे देश की औद्योगिक तरक्की का एक बहुत मजबूत पावर हाउस बनती जा रही है और शासन की सुगम नीति के कारण उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर लगातार अग्रसर है। फैक्ट्रियों और मिलों की धड़कनों के देने का काम वाल्व या वाष्पयंत्र करते हैं। हमारे विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी हमारे प्रदेश की औद्योगिक सुरक्षा को सबसे ऊपर रखने के लिए और आपकी सेवा में सर्वदेश पर रहने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि बेहतर से बेहतर सर्विस देकर एक सुरक्षित वातावरण में छत्तीसगढ़ को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार और उद्योग को और अधिक सफल बनाने और आसान बनाने की अवधारणा को एक नई ऊंचाई पर ले आया जा सके। इसी कड़ी में सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ शासन के मार्गदर्शन में एक निर्मित एक बेहद आसान डिजिटल समाधान SWS 2.0 वन क्लिक बनाया गया है। आइए सरल शब्दों में इसे समझते हैं कि एक नया पोर्टल आपके लिए कितना मददगार साबित होगा और इसे अधिक बेहतर बनाने के लिए भविष्य में हम निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने और व्यवसाय को पंजीकृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक नया एकीकृत वन क्लिक और सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल से बॉयलर से संबंधित सुरक्षाओं में कितनी बढ़ोतरी हुई है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। एक ही छत के नीचे अब आपको सब कुछ मिलेगा। बॉयलर की स्थापना से लेकर ड्रॉइंग्स का अनुमोदन एवं बॉयलर का हर साल होने वाला रिन्यूअल, ये सभी सुविधाएं एक ही वेबसाइट पे उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त वेल्डर टेस्ट की नई सुविधा हमने चालू की है SWS 2 में, जिससे बॉयलर को सुरक्षित चलाने के लिए कुशल वेल्डर्स की जो जरूरत होती है उसकी कमी को छत्तीसगढ़ राज्य में ही टेस्ट और सर्टिफिकेशन के माध्यम से पूर्ण किया लिया जाएगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे उद्योगों को समय पर प्रमाणित कुशल कारीगर मिल सके। इकोनॉमाइजर की सेवा को भी हमने ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और उसका सालाना रिन्यूअल भी अब एक ही पोर्टल में जोड़ दिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से स्थानांतरित होने वाले बॉलरों को स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन प्रारंभ कर दी गई है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि उद्योगों में अब सरकारी जो काम है वो कागजी काम बहुत आसान कर दिया गया है। कागजी काम की जरूरत ही नहीं है। समझने के लिए बहुत एक आसान फॉर्म्स हमने बनाए हैं। आवेदन फॉर्म्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो पूरी जानकारी देने के साथ साथ बेहद सरल भी रहे, जिसे भरने में किसी भी इंडस्ट्री को कोई उलझन नहीं हो। जब आप कोई एक फॉर्म भरते हैं और दोबारा उस फॉर्म को लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं तो बुनियादी जानकारी जैसे फैक्ट्री का नाम, बॉयलर का मॉडल, पता सब फॉर्म में पहले से भरा हुआ मिलेगा, जिससे आपका कीमती समय बचेगा। करेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है। ऑनरशिप चेंज होने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है और यह भी प्रक्रिया सब ऑनलाइन शामिल कर ली गई है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फाइलों के निपटारे और काम की रफ्तार में बहुत तेजी से गति आई है। दिनों की पक्की सीमा कर दी गई है, जिसके लिए लोक सेवा गारंटी नियमों के अंतर्गत हर काम के लिए दिन तय कर दिए गए हैं। बॉयलर के रजिस्ट्रेशन नियम निरीक्षण के लिए अधिकतम 30 दिन और नवीनीकरण के लिए अधिकतम 15 दिन का समय सीमा है। कंप्यूटर का ऑटोमेटिक रिमाइंडर है, यदि किसी फाइल पर तय समय पर फैसला नहीं हो पाता है तो कंप्यूटर सिस्टम

0: से खुद ब खुद वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में ले आएगा। अगर कोई राइस मिल या इंडस्ट्री वाला बॉयलर का रिन्यूअल या वार्षिक अनुमोदन कराना भूल जाता है तो हमारा सिस्टम उसे 30 दिन पहले ही SMS के माध्यम से याद दिला देगा, जिससे समय पर उसकी जांच हो सकती है और फैक्ट्री का अनावश्यक उत्पादन रुकेगा भी नहीं। ऑनलाइन बातचीत और सुधार में अगर कोई कमी रह जाती है तो सिर्फ आवेदन को खारिज करने की जगह हमारे अधिकारी उसे सीधे ऑनलाइन पे ही आप संपर्क कर सकते हैं और उसे करेक्शन करके वापस अपलोड कर सकते हैं। सबसे प्रमुख जो चीज हमने इसमें इंट्रोड्यूस की है वो पारदर्शिता, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि किसी भी व्यवस्था में काम करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता सबसे अच्छी बात होती है। घर बैठे अब कोई भी उद्योगपति अपने आवेदन की प्रकृति को मोबाइल या कंप्यूटर पर लाइव देख सकता है। यदि समय पर आवेदन पे आपको सेवा नहीं प्राप्त होती है तो पोर्टल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी समीक्षा का अनुरोध भी कर सकते हैं। जब कोई भी इंस्पेक्टर साइट पे जांच के लिए जाता है मोबाइल ऐप के माध्यम से उसकी सटीक लोकेशन और समय सिस्टम खुद ही दर्ज हो जाएगा। निरीक्षण के समय बॉयलर की तस्वीर जो ली जाती है वो लाइव रहेगी, जिससे अपने आप यह साबित हो जाएगा कि जांच किस तारीख को किस समय और किस कारखाने में जाके की गई। इसके बाद जब जैसे ही जांच का काम सफलतापूर्वक पूर्ण होता है डिजिटल सर्टिफिकेट का लिंक तुरंत आपके सिंगल विंडो आईडी पर आ जाता है, जिसे आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत प्रमाण पत्र प्राप्त होने पे आप प्रोडक्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं। अंत में प्रिय मित्रों, हमारा एकमात्र लक्ष्य प्रगतिशील और सुरक्षित औद्योगिक माहौल तैयार करना है, जहां हमारी फैक्ट्री बिना किसी रुकावट के प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। वास्तव में निश्चित है कि यह पहल और पेपरलेस व्यवस्था छत्तीसगढ़ के उद्योगों को एक नया आयाम देगी। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस आधुनिक SWS 2.0 पोर्टल को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं और सुरक्षा के साथ साथ छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम को सुशासन की दिशा में एक अभूतपूर्व पहल के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके तहत प्रदेश में निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाया है। अब सभी विभाग एक ही मंच पर आ गए हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कम समय में ऑनलाइन क्लीयरेंस इस सिस्टम की विशेषता है। सिंगल विंडो सिस्टम यानी एक क्लिक में मंजूरी। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र रायपुर के उप महाप्रबंधक श्री विश्वजीत का कहना है,
1: अगर देखें कि एक उद्योग को स्थापित होने के लिए विभिन्न शासकीय विभागों से अनुमति NOC क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, तो इन सब के लिए भी औद्योगिक नीति के अंदर ही ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए उद्योग विभाग की invest.cg.gov.in वेबसाइट लाइव है। इस वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न शासकीय NOC अनुज्ञप्ति लाइसेंस इत्यादि के लिए, जो कि उद्योग स्थापना करने के लिए, उद्योग को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, इन सब के लिए जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, वो सीधे इस वेबसाइट के माध्यम से, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन एक ही जगह पर एकल खिड़की के रूप में आवेदन कर सकते हैं। जब कोई उद्योग स्थापित होता है तो उद्योग स्थापित करने के लिए जो पूंजी निवेश निवेशक करता है, यानी जो अपने अपने पैसे लगाता है उद्योग को स्थापित करने के लिए, तो उस पर शासन की तरफ से अनुदान छूट का प्रावधान है। तो ये अनुदान छूट विभिन्न प्रकार के अनुदान छूट औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत है। जैसे कि कुछ का मैं नाम आपको बता देता हूँ, जैसे स्टाम्प शुल्क से छूट, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में भी छूट है। इन सब के अलावा ऐसे विभिन्न प्रकार के 20-22 प्रकार के अनुदान छूट एवं रियायतें इस नीति के अंतर्गत निवेशकों को मिल सकती है। अर्थात कुल मिलाकर उद्योग लगाने में जो खर्च, जो निवेश होता है, उसका कुछ प्रतिशत नीति के माध्यम से निवेशक वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो यह निवेश प्रोत्साहन उद्योगों के सफल स्थापना के लिए इसलिए भी दिया जाता है कि अधिकाधिक मात्रा में वो छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को रोजगार दे सके, और साथ ही साथ शीघ्र ही वो अपने उद्योग को स्थापित करके राज्य के व्यापार, व्यवसाय और निवेश में प्रोत्साहन दे सके। तो जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेशों में भी, जैसे जापान और दक्षिण कोरिया का भी दौरा कर नीति का प्रचार प्रसार किया, साथ ही साथ हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी

मैं विदेश में जर्मनी का दौरा किया था विगत वित्तीय वर्ष में, वर्ष 2025 में। इसके अलावा देश के जो प्रमुख शहर हैं जैसे दिल्ली और मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, यहाँ पर भी निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशकों के निवेश के सम्मेलन किए गए, इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम किए गए, जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में निवेश के विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश के अंदर रायपुर, बस्तर एवं अन्य समस्त जिलों में भी इन्वेस्टर कनेक्ट के कार्यक्रम सफलतापूर्वक कराए गए हैं, जिसमें भी संपूर्ण प्रदेश के निवेशकों, उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न निवेश के प्रस्ताव उद्योग विभाग को दिए गए हैं, और इसके आधार पर अभी पूंजी निवेश चल भी रहा है।

छत्तीसगढ़ अब समझ रहा है नई तेज और पारदर्शी योजनाओं की बदौलत। ऐसी ही एक कारगर और सर्व सुलभ व्यवस्था का नाम है वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0। ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति लाने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ अब कोर सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये अत्याधुनिक उद्योगों का राष्ट्रीय केंद्र बनने के लिए तैयार है।

छत्तीसगढ़ अब औद्योगिक विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए विकसित राज्य की श्रेणी में आने के लिए बेताब है। उद्योग धंधों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। मांग और पूर्ति के वैश्विक सिद्धांत पर आधारित छत्तीसगढ़ की बाजार व्यवस्था में सिंगल विंडो सिस्टम का बड़ा योगदान है। उद्योग भले घरेलू या पारंपरिक हों या फिर अति आधुनिक तकनीक पर आधारित, सभी का लक्ष्य एक है और वो है छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास।

छत्तीसगढ़ में छोटे मझौले और भारी उद्योग पहले से ही स्थापित हैं, लेकिन अब वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम के आ जाने से नए उद्योगों को लगाने का सिलसिला गति पकड़ रहा है। इससे प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही है और कौशल विकास को भी बल मिल रहा है। तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षित युवा नई औद्योगिक नीति के प्रति जितने आश्वस्त हैं, उतने ही उत्साहित हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर ये है सरकार के प्रति।

0: और निवेशकों का विश्वास। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र सरगुजा के मुख्य महाप्रबंधक श्री त्रिपुरारी राम कश्यप।
1: औद्योगिक विकास नीति के तहत हम लोग शासन के निर्देश के अनुसार जो औद्योगिक विकास नीति को हमारे जिले सरगुजा के हिसाब से तीन समूह में बांटा गया है, पूरे राज्य में तीन समूह, समूह एक, समूह दो और समूह तीन, जिसमें हमारे जिले के 7 विकास खंड में समूह दो और समूह तीन प्रावधानित है। समूह एक में अंबिकापुर विकास खंड है और समूह तीन में लुंड्रा, बतौली, मैनपाट, सीतापुर, ये 6 विकास खंड अंबित है। तो मैं जो शासन के प्रावधान हैं और छूट और रियायतें हैं उसके संबंध में बिंदुवार बताना चाहूंगा। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योग सम्मिलित हैं। सूक्ष्म उद्योग में निवेश राशि 1 करोड़ तक का है और लघु उद्योग में 10 करोड़ तक का है, मध्यम में 50 करोड़ और बृहद में 50 करोड़ से अधिक की है। इस राशि में बताना चाहूंगा कि ये राशि तो अधिकतम राशि है, लेकिन इसमें हम लोग न्यूनतम राशि से भी अपने उद्योगों को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे स्थायी पूंजी निवेश, इसमें जो भूमि रहता है या जो शेड बनता है फैक्ट्री के लिए, उसमें हमको सूक्ष्म उद्योग में 45% तक का छूट मिलता है। मतलब कोई उद्योग यदि 1 करोड़ का राशि का लागत है तो उसमें 45% छूट मिलेगा, ये लघु उद्योग में है। उसी प्रकार मध्यम उद्योग में 35% छूट है और अधिकतम राशि इसका 4.5 करोड़ है। ब्याज अनुदान में सूक्ष्म उद्योग में समूह एक मतलब अंबिकापुर विकास खंड में 45% का अनुदान है और समूह तीन मतलब अंबिकापुर छोड़ के 6 जो विकास खंड हमारे आते हैं जिले के अंतर्गत, उसमें 50% का अनुदान है। मतलब ब्याज अनुदान ऐसा है जैसे अपन बैंक से ऋण लेते हैं तो उसमें जो ब्याज लगता है उसमें 50% तक शासन अनुदान के रूप में संबंधित इकाई जो उद्योग लगाता है उसको दिया जाता है। उसी प्रकार लघु उद्योग के लिए अंबिकापुर विकास खंड में 45% छूट है, जो अधिकतम राशि 30 लाख तक की जाती है, और समूह तीन जो अंबिकापुर विकास खंड छोड़कर शेष जो 6 विकास खंड बचते हैं उसमें 50% तक का अनुदान मिलता है, जो बैंक से ब्याज मिलता है उसमें। इसी प्रकार विद्युत शुल्क छूट, मतलब विद्युत शुल्क में कोई इकाई उद्योग लगाता है तो उसमें विद्युत शुल्क में जो छूट होता है, जो बिल देयक राशि होता है उसको छोड़ के जो विद्युत विभाग द्वारा शुल्क लिया जाता है उसमें 7 वर्ष तक का पूर्ण छूट अंबिकापुर विकास खंड में है और शेष विकास खंड में 9 वर्ष तक का पूर्ण छूट मिलता है। उसी प्रकार स्टाम्प शुल्क छूट में यदि कोई इकाई उद्योग लगाना चाहते हैं और किसी से जमीन खरीदते हैं उसमें भी जो स्टाम्प शुल्क का प्रावधान है उसमें 1 लाख तक का छूट इनको मिलता है। और उसी प्रकार बैंक से ऋण लेते हैं और उसमें जो अनुबंध करते हैं उसमें भी 1 लाख तक का छूट इनको स्टाम्प शुल्क से छूट मिलता है। उसी प्रकार परियोजना प्रतिवेदन में यदि उनकी लागत आती है उसमें 2% तक का छूट है, यदि कुल इनका लागत 1 करोड़ का आता है तो उसमें 2% 2 लाख, ये भी उसमें छूट का प्रावधान।

भौगोलिक विविधताओं से भरा छत्तीसगढ़ का हर भूभाग अपनी किसी न किसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यही खासियत अपने संसाधनों के साथ अब उभर कर सामने आ रही है। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम वो झरोखा है जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत को लेकर बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

मनोकामना। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर और संगीत पप्पी लाहिड़ी का था और गीत था इन देवर का। लीजिए अब सुनिए फिल्म बाबू का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत राजेश रोशन का।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए

अखियों के झरोखों से इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज हेमलता की थी, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। लीजिए सुनिए फिल्म नदिया के पार का गीत, आवाजें हेमलता और जसपाल सिंह की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

मुकेश और कंचन के युगल स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म धर्मात्मा का गीत। गीत इंदिवर का था, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि तलाशी अभियान में शामिल परिसरों में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय और व्यावसायिक कार्यालय शामिल हैं। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए समूह गान शिक्षा के कार्यक्रम में कन्नड़ भाषा में समूह गान शिक्षा। रचनाकार हैं बी आर गीथा।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है। हाँ,
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ।
0: सब लिख लीजिए।
1: हारु
0: तिहवु हारु तिहवु
1: हारु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खग कुला
1: कडल करेय खग कुला यनी तो मुगीला
0: उद्द अगला
1: उद्द अगला जी की दानी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: हाँ। आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुव नाक
1: बान लोक नगुव नाक
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे
0: हसीव मरेसी
1: हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा।
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ,
0: लिख
1: हाँ,
0: लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
1: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ। हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी। हाँ? उसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे। हाँ?
1: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुट जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ताकी ता ताकी।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुवनाक, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: समूह गान शिक्षा के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कन्नड़ भाषा में समूह गान शिक्षा। रचनाकार थी बी आर गीता। लीजिए अब सुनिए समूह स्वर में सुगम संगीत।

पत्थर के सनम। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ मुकेश और लता मंगेशकर की थी, गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में फिल्म तीसरी मंजिल का नगमा। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत रचना राहुल देव परमन की।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत। गीतकार थे कमर जलालाबादी और संगीतकार थे ओपी नैयर। लीजिए अब सुनिए फिल्म चलती का नाम गाड़ी का गीत, आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

bummak bim bummak bim bummak bim bummak teri gatri mein laga chor musafir jaag zara tu jaag zara teri gatri mein laga chor लीजिए आप सुनिए फिल्म मधुमति का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। शैलेंद्र के लिखे गीत के लिए संगीत सलिल चौधरी का है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार नगमे, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री आज सीएम हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आज से प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री नवा रायपुर में स्थित सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076-1076 होगा। ये एक टोल फ्री नंबर होगा। इसके अलावा नागरिक वेब मोबाइल, मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत दर्ज होते ही आवेदक को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। इसके जरिए वो अपनी शिकायत की पूरी प्रगति को ऑनलाइन देख सकेगा। ये हेल्पलाइन नंबर सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे संचालित रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। उन्हें आदिवासी गौरव, देशभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का अमर प्रतीक बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को उनके अधिकारों और विरासत की रक्षा के लिए संगठित किया और जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से पीएमएसएमए के 10 वर्ष एक दशक की देखभाल राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाले पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। रायपुर जिले में कल देर रात तेज बारिश हुई, इससे तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून की बारिश बताया है। अगले 2-3 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बताई गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में गर्जन, तेज हवा और हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहने तथा 11 जून से इसमें वृद्धि होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री आज सीएम हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
3: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
3: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
3: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
3: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टेक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
3: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
3: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
3: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
3: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
3: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
3: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
3: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा यानी हारमोनी या सामंजस्य।
3: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई
3: जी
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
3: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
3: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है
2: जी। एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम

0: जाए ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है, जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है, जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सर का लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम

0: अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
1: लो,
0: देखो जी मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
1: आए, आए।
2: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही, बोलो चाहोगे ना?
1: कहाँ बड़ी बहुरिया?
2: मेरी माँ के पास।
1: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
2: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
1: बड़ी बहुरिया,

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिकर मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ?

0: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
1: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
2: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
3: पाए लागू माँ जी।
4: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
3: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
4: मेरी बेटी का कोई संवाद?
3: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
4: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
3: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
4: सो तो है।
3: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
4: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली। बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
4: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ। हाँ? अब थोड़ा जलपान कर लो।
3: अच्छा अच्छा माँ जी।
4: हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
1: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोचकर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
3: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
4: अरे
3: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पान लागू।
4: जीते रहो बेटा।
3: अब चलता हूँ।
5: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
3: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
5: अच्छा
3: अच्छा, राम राम।
5: राम राम
3: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
2: बड़ी माँ
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजंस

संगी हो ये कार्यक्रम में सबले पहली हम सुनथन कल्याण सिंह गायकवाड़ और किरण सोनी के स्वर में ये गीत और ये गीत ला सुने खातिर बार हमला पाती पठो हैं भाटापारले बचकमल मोतीलाल डॉक्टर बसंत भिगु विनय ठाकुर भाटापारले हमर और संगवारी हैं राधे श्याम टेलर जितेन साहू मिलौदास कुलदीप संतोष संदीप अजीत लक्की यश और कुलदीप कुमार भाटापारा ले हमारे संगवारी हैं अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम मोहम्मद साजिद मोहम्मद जावेद एकता यदू पूजा यदू रेशमा निषाद चुवाराम वर्मा मुकेश वर्मा दुलारी वर्मा दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा मोहम्मद सलीम मोहम्मद नईम मोहम्मद ताहिर परस शर्मा निधि शर्मा रुचि शर्मा नित्या शर्मा राम कुमार राउत अमरीका राउत गणेश राउत कार्तिक राउत युवराज राउत मोतीलाल झेरिया कल्पना झेरिया बिट्टू कुमार झेरिया चिंटू झेरिया युग कुमार झेरिया इन्हें ले हम अरु संगवारी हैं अशरफ खान अयाज खान अल्फैज खान बिलहली शेख नासिर महजबीन बानो मोकपा ले हमर संगवारी हैं दयालू राम वर्मा तेज राम वर्मा सहदेव राम चिरंजीवी वर्मा शिक्षक नगर दुर्ग ले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर आरसी कामड़े विपुल करुणा कामड़े भिलाई ले डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम हमीदुद्दीन सिद्दीकी जिशान अहमद सिद्दीकी शाहनवाज अहमद सिद्दीकी भिलाई ले हमारे संगवारी हैं विकास वर्मा खुशी वर्मा ग्रंथ वर्मा संजय प्रधान पूजा प्रधान सिमगली रमेश कुमार यादव माया यादव रिंकू सन्नी कोमल यादव इन्हें हमारे संगवारी हैं सविता जैन और मोनिका जैन प्रदीप जैन तो अब आप जम्मू झन के फरमाइश में सुनथन कल्याण सिंह गायकवाड़ और किरण सोनी के स्वर में ये गीत

कल्याण सिंह गायकवाड़ और किरण सोनी के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुनेव। आवाव अब सुनथन कुलेश्वर ताम्रकार और संगवारी मन के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीत ला सुने खातिर बर हमला पाती पठुआ हैं गंडई पंडरियाले, दरियानमल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, तिलदाले हरीश, कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला, निजामाबाद ले वासुदेव सावलानी, अशोक कुमार सावलानी, बेलर गांव ले मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन, मगरे लोड ले पुनुराम साहू राज, तेजस्वरी साहू, राशि और राजवीर साहू, चना गांव ले जयंती शोरी, विष्णु साहू, गैन मरकाम, जैनू राम सूरी, नंदलाल मरकाम, कोमल सूरी, डोंगर गांव ले राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये, खट्टी महासुमन ले छाया शर्मा, सुभाष शर्मा, सुरेंद्र मिश्रा, प्रमिला मिश्रा, कमलेश मिश्रा, विजिता मिश्रा, रीनी ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पटेल नगर मलूट पंजाब ले डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया, बेबी आरजू जाजूरिया, सिर मुंदा ले सूरज कुमार दामले, कुमारी हेमा दामले, कांतिबाई दामले, राजेंद्र कुमार दामले, कन्नेवाड़ा ले देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मणा सोनवानी, गीतिका गुड़िया, झावेन डुग्गू और लल्ली गिन्नी, अमलीपदर ले निकुंज तिवारी, लाची तिवारी, ममता तिवारी, सरंगपाल ले भागवत देवांगन, पदुम देवांगन, सुनैना, पिंकी, यश देवांगन, प्रियांश, तन्वी, नीता, चंद्रबती, युवराज, गीता, घासी, सलाम, चंद्रचंद, रामचंद देवांगन, डोंडी लोहारा बालोदली देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डाली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका प्रभा देवी तामोरिया और अल कबीर। करही भदल्ले हमर संगवारी हैं पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर, श्रद्धा निर्मलकर, लोचन विद्यार्थी, चंद्रिका निर्मलकर, जमुना निर्मलकर, महेश्वरी निर्मलकर, पटपट डोंगरगढ़ली राम गोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंती ध्रुव, बलौदा ले दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, सिर्री गातापार ले लावण्या साहू, उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार साहू, पुष्पराज साहू, प्रभुराम साहू। तावो आप जम्मो जन के फरमाइश में सुनथन कुलेश्वर ताम्रकार और संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

कुलेश्वर ताम्रकार और संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। आवाओ अब सुनथन महादेव साहू के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीत ला सुनने खातिर बार हमला पाती पठुए हैं हमार ये संगवारी मन। महासुन बरोंडा चौकले साधुराम यादव, रामकली यादव, आशाबाई यादव, किरण बाई यादव, टिमिन बाई यादव, डाली बाई यादव, पंकज कुमार यादव, पिथौरौली कौतुक पटेल, गौरी पटेल, पाजल पायल, काजल पटेल और पिथौरौली एफ ए नंद, दतरंगीले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झाविंद कुमार वर्मा, दरचूराले ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू, दरचूराले हमारा संगवारी हैं पिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, बुड़गहनले राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति, बठेनाले बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदाले सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा, धवलपुरले गेंदलाल मिश्रा, कांति मिश्रा, अर्चना प्रतीक्षा, धनंजय मिश्रा, देवरीले गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, दत्तरंगीले हमारे संगवारी हैं विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना और लक्ष्मीना यदु, बीमेतरले भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा। तो आओ आप जमुझन के फरमाइश में सुनथन महादेव साहू के स्वर में ये गीत।

महादेव साहू के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। आवाओ आप सुनथन कमला वर्मा और परसराम यदु के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत और गीतला सुने खातिर बार हमला पाती पठवे हैं। रायपुर ले विनोद वंडलकर, विविधा वंडलकर और वीणा वंडलकर। रायपुर ले हमारे संगवारी हैं अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, मोहनलाल देवांगन, भूपेश प्रभा और तुषार देवांगन, योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा, ओझल वर्मा और सेज भाले राम भांडेकर, रेणु भांडेकर। रामनगर ले हमारे संगवारी हैं राजेश अंबादी, शशिकला अंबादी, पूजा अंबादी। भरेवा पथरियाली चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, लोमेश सिंगरोल, नेहा अववानिया सिंगरोल। बन बघेरा ले आशा सारवा, योगेश सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा, रोशनी सारवा। गातापार बांधा बाजार ली गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, राकेश साहू, मानवेन साहू। बंबू डीहली चंद्रकांत महिलांग, दिनेश महिलांग, रमाकांत महिलांग। छिरहली दिलीप जायसवाल, दिलेश्वर जायसवाल, दीपक, विभू, चित्रांश और देवांश जायसवाल। अंबागढ़ चौकी ले रिजवान खान। घटारानी अंचल फुलझरली योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी साहू, यामिनी साहू,

कमला वर्मा और परशुराम यदु के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने। कार्यक्रम का अगला गीत लस्वर दे हैं महेंद्र कुमार यादव संगवारी मन और ये गीत ल सुने खातिर बार हमला पाती पठो हैं धमतरी ले रामचंद माखीजा स्वाति माखीजा सविता माखीजा किरत राय वाधवानी दीपक घनश्यानी प्रदीप कुमार साहू माही पूजा छुटकी शरद कुमार डूडवानी बिलाईगढ़ ले रोशनलाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिम्पल देवांगन खीकराम देवांगन धर्मेंद्र देवांगन मलाज खंड डुंगरियाली मुन्नालाल पटले माधुरी पटले याचना पटले दीपांशु पटले अनुपुर ले जयमंत्री केवट अंजलि केवट रुदानी केवट कृष्णा केवट पुतकी कला ले राधेश्याम पांडे बीना पांडे मीना शंकर पांडे नयन पांडे सोमांशु पांडे भाग्यलक्ष्मी पांडे गुनगुन पांडे महासमुंद ले भीषम दास मणिकपुरी।

नर्मदा हिरमानी दीपक दास मणिपुरी साले भाटाले जीतू ध्रुव केमल ध्रुव किरण दिव्यांशी खेमू ध्रुव हिच्छाले अदालत दास वैष्णव मानस दास वैष्णव सतीश ऋचा गायत्री वैष्णव गंडेली जागेश्वर देवांगन कचरीबाई देवांगन दीपक कुमार देवांगन जयश्री देवांगन ऋषभ ऋचा देवांगन लोहारडीह कवर्धाली अशोक कुमार साहू लिलेश्वरी खुशान निशांत अमलेश्वर महादेव घाटली डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तारणी ठाकुर सुरज ठाकुर सुजला ठाकुर ज्योतिष ठाकुर रेयांश ठाकुर पिपरियले कमलकांत गुप्ता दीपा गुप्ता रिमछिम गुप्ता औ रुद्री धमतरीले चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश शुभम शिखा शेफाली साहू आवाओ आप जमोझन के फरमाइश में सुनथन महंत कुमार यादव संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

संगी हो महेंद्र कुमार यादव संगवारी मन के गाए गीत के संग आप मन के गीत ये कार्यक्रम अभी है से आवत है। अब अपन संगी शशांक हरेल दव आज्ञा जय जोहार।

0: आगमन के गीत। अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर का एक बजने वाला है। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने, शब्द रचना एस एच बिहारी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए अब सुनते हैं राजेश रोशन की बनाई तर्ज पर अनजान का लिखा गीत। फिल्म याराना के लिए स्वर दिया है किशोर कुमार और साथियों ने।

राजेश रोशन की बनाई तर्ज पर ये था अनजान का लिखा गीत। फिल्म याराने के लिए स्वर दिया था किशोर कुमार और साथियों ने।

इब्राहिम अश्क का लिखा गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल, पंकज उधास और साथियों की, फिल्म का नाम है बाहर आने तक।

बाहर आने तक इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों ने, शब्दरचना इब्राहिम अश्क की थी और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

आइए अब सुनते हैं खयाम के संगीत निर्देशन में साहिर का लिखा गीत। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है कभी कभी।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को भी आपने सुना फिल्म कभी कभी में। शब्द रचना साहिर की थी और धुन बनाई थी खयाम ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, इसी सभा में दोपहर 2 बजे और 2:30 पर चित्रपट संगीत का पुनः आनंद ले सकेंगे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम रात 8:30 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत आज रात 9:25 पर सुनिएगा आर्थिक विकास पर केंद्रित कार्यक्रम। रात 10:00 आपकी पसंद फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां का सरूद पर बजाया राग जय जय वंती। रात 8:15 पर लोक संगीत के कलाकार होंगे दलेश्वर साहू और साथी। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें आज महिलाएं सुनेंगी आज के गुट, वार्तालाप या संवाद कभू झन रुके इस विषय पर चर्चा। इसके अलावा वार्ता कामकाज के जगह मां सुरक्षा के अधिकार, वार्ताकार होंगी महेश्वरी वर्मा। बहनी मन की चिट्ठी और गीत संगीत। शाम 5:10 पर युवाणी में युवा साथी आज सुनेंगे अपन गुट, विश्व प्रत्यायन दिवस पर चर्चा। इसके अलावा सवाल जवाब और माटी के गीत। शाम 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। इसमें किसान भाई आज सुनेंगे आज की बात, सब्जी के नर्सरी तैयारी और प्रबंधन इस विषय पर चर्चा। शाम 7:30 पर किसान वाणी, हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम। विषय होगा वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी। जानकारी देंगे डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पांडा दुर्ग। संचालन निर्मल साहू का और प्रस्तुत करता होंगे शशि प्रकाश पांडे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गुट शाम 5:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बीड़ियां शाम 6:30 पर। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 2:00, 2:30, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

घर में कहूँ चार ठन बर्तन हवे तो ठुकुर ठाकर तो होबेच करही। वैसने परिवार में घलोक चार सदस्य है तो कभू कहा सुनी घलोक हो जाते, कोनो बात ले के मन मुटाव तको हो जाते, फिर अन्न बोलना कभू झन रहन। कहते नहीं चूल्हा मा आगी ल सिपचाबे तो छेना गुंगवाते और आंखी मा आंसू ल भर देते, और उही आगी कहूँ चूल्हा मा बने बरेला धर लेते तो धुआं हा घलोक छट जाते और खाना हा तको बन जाते। वैसने बहनी हो अपन विचार ला भीतरे भीतर दबा के झन रखन, अपन परिवार संग साझा जरूर करन। परिवार में छोटे लइका ले लेके सियान माने बड़े छोटे सबो सदस्य के बात के सम्मान करन। कोनो विषय में परिवार के सबो सदस्य के विचार एक के होए, कोनो बात में सबो के सहमति होए, ये जरूरी नहीं है। त ऐसन बेरा में कोनो बीच के रद्दा ल निकाल लेवन, भई जिहां समस्या है तो उहें समाधान घलोक तो होते। बहनी हो परिवार होए समाज होए या अपन संगी संगवारी मन संग आपसी संबंध हुए, ये सब्बो के न्यो बातचीत में ही तो टिके रही थे। संचार और संवाद एक दूसरे ल समझे के सबले बढ़िया तरीका है। आज के बेरा में मोबाइल टीवी और काम काज के बीच परिवार के सदस्य मन एक के घर में रह के घलोक एक दूसरे ले दुरियावत जावत है। देखो बहनी हो लइका मन के मन में का चलत है, बुजुर्ग मन ला कोनो चिंता सतावत है का, हम पति पत्नी अपन परिवार पर का सोचत हन, ये तो तभी समझ में आई ना जब हमार आपस में बातचीत होत रही। सुरता राखो मया के पौधा पानी ले नहीं अपनापन के गोड बात ले हरियर रही थे। तब बहनी हो अपन परिवार भर बेरा निकालन, गोठियावन बतावन सुख दुख बाटन और कुछ अपन कहन और कुछ उंकरों मन के सुनन। काबर जिहां संवाद जिंदारी थे वहां संबंध घलो ओतकेच मजबूत होते। लेवा बहनी हो हम तो अब बड़ अकन गोठिया डरेन और अब आवो लता खापड़े बहनी गीत के माध्यम ले एदे का कहना चाहते ओखरो लतोरिक सुन लेवन।

0: बेनी हो, आज के बेरा म हम महिला मन घर के संगे संग ऑफिस, स्कूल, अस्पताल, कारखाना और हर क्षेत्र में अपन जिम्मेदारी निभावत हवन। माने पुरुष ले कदम मिला के विकास के रद्दा में अपन सहभागिता देवत हन। फिर काम काज के जगह में सुरक्षित वातावरण ये सिर्फ सुविधा भरनो है बल्कि हरेक महिला के अधिकार है। आवा बहनी हो, अब आप मन ला सुनवात हन वार्ता जेखर विषय है काम काज के जगह में सुरक्षा के अधिकार। और हमार वार्ताकार बहनी हवे श्रीमती महेश्वरी वर्मा।
1: महिला मन खातिर कार्य स्थल में सुरक्षा बर कई ठन कानून बने हैं ताकि वह कार्य स्थल में स्वतंत्र होके अपन काम कर सके, शारीरिक व मानसिक शोषण से अपन आपला बचा सके। इसी संबंध में आज बात करबो कार्य क्षेत्र में महिला मन के सुरक्षा संबंधी अधिकार और कानून। भारत में महिला मन के हित और सुरक्षा खातिर कई कानून बनाए गए जे महिला मन ला कार्य स्थल, घर और समाज में सुरक्षित माहौल दे के सशक्त बनाए में मदद करते। ये वार्ता में हमन कार्य क्षेत्र में महिला मन के सुरक्षा संबंधी अधिकार और कानून के विस्तार ले चर्चा करो। महिला मन के कार्य क्षेत्र में सुरक्षा खातिर कानून ढांचा, भारतीय संविधान में महिला मन के समानता और सुरक्षा खातिर कई प्रावधान है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण जे सुनिश्चित करते कि कोई व्यक्ति ला लिंग के आधार में भेदभाव नहीं हुए। अनुच्छेद 15(3) में राज्य ला महिला मन और बच्चा मन के हित में विशेष प्रावधान करे के अधिकार देते। अनुच्छेद 16 में लोक सेवाओं या समान अवसर जे कार्य स्थल में लिंग आधारित भेदभाव लक रोक थे। अनुच्छेद 39(d) में समान काम खातिर समान वेतन जे महिला मन ला आर्थिक सुरक्षा देते। ये संवैधानिक प्रावधान कार्य स्थल में महिला मन के अधिकार के संरक्षण खातिर आधार प्रदान करते। कार्य स्थल में लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 में, ये अधिनियम जिला संक्षेप में पोस अधिनियम बोले जाते हैं। कार्य स्थल में महिला मन ला लैंगिक उत्पीड़न बचाए खातिर बनाए गए है। छत्तीसगढ़ में सरकारी और गैर सरकारी दोनों कार्य स्थल में कानून लागू है। इकर मुख्य बिंदु है आंतरिक परिवाद समिति जिला ICC भी बोलते। यह हर संगठन जहां 10 ले ज्यादा कर्मचारी है ला आंतरिक परिवाद समिति गठित करे के जरूरी है। ये समिति लैंगिक उत्पीड़न के शिकायतों के निपटारा करते। यहां लैंगिक उत्पीड़न में अवांछित शारीरिक स्पर्श, यौन टिप्पणी, अश्लील चुटकुला, यौन अनुरोध, अश्लील सामग्री दिखाए या सुनाए या दूसर काम वातावरण ला असुरक्षित बनाए वाले व्यवहार शामिल है। शिकायत प्रक्रिया, शिकायत कैसे कर सकते पीड़ित महिला ICC आंतरिक शिकायत समिति में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते और समिति 90 दिन के भीतर जांच करे के बाध्य है। सजा और संरक्षण, इसमें दोषी पाए जाने में नियोक्ता दोषी ला बर्खास्त कर सकते, वेतन कटौती कर सकते या दूसरा उचित कार्यवाही कर सकते। पीड़िता के गोपनीयता की और सुरक्षा घलो सुनिश्चित करे जाते। जागरूकता कार्यक्रम, नियोक्ता ला कर्मचारी मन और ICC आंतरिक शिकायत समिति सदस्य खातिर नियमित जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे के जरूरत है। छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग ये अधिनियम कार्यान्वयन में निगरानी रखते और जिला स्तर में स्थानीय परिवार समिति ICC के गठन ला प्रोत्साहित करते। इमे आते प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, ये अधिनियम गर्भवती महिला मन ला कार्य स्थल में सुरक्षा और सहायता प्रदान करते। छत्तीसगढ़ में एकर मुख्य प्रावधान है प्रसूति अवकाश 10 या एकल ले ज्यादा कर्मचारी वाले संगठन में काम करे वाली महिला मल्ला 26 हफ्ता के सवेतन प्रसूति अवकाश मिलते। काम के माहौल, गर्भवती महिला मल्ला शारीरिक रूप ले कठिन काम या लंबा समय तक खड़ा रहना नहीं पड़े। क्रेच सुविधा जैसे पालना गृह, इनमें 50 ले ज्यादा कर्मचारी वाले संगठन में क्रेच सुविधा देना अनिवार्य है जेमा छोटा बच्चा के देखभाल हो सके। बर्खास्तगी ले संरक्षण, गर्भावस्था के दौरान

या प्रसूति अवकाश में दोनों महिला ल बर्खास्त नहीं करे जा सके। समान वेतन अधिनियम 1976, ये अधिनियम सुनिश्चित करते कि पुरुष और महिला कर्मचारी मल्ला समान काम खातिर समान वेतन मिले। छत्तीसगढ़ में खास करके खनन कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में यही लागू करे मां विशेष ध्यान दे जाए ताकि लिंग आधारित भेदभाव न हो। छत्तीसगढ़ में विशेष प्रावधान और योजनाएं, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिकार संरक्षण और सशक्तिकरण खातिर काम करते। इकर मुख्य कार्य है कार्य स्थल में लैंगिक उत्पीड़न के शिकायतों के निपटारा, महिला मन के कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पोष अधिकार के तहत ICC और LCC के गठन और कार्यकरण के निगरानी। छत्तीसगढ़ में महिला मन के तुरंत सहायता खातिर कई हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है, जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर 181, ये पूरे देश में लागू है और छत्तीसगढ़ में घलो तुरंत सहायता देते। छत्तीसगढ़ पुलिस हेल्पलाइन नंबर, स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय करके महिला मन ला तुरंत सुरक्षा प्रदान करते। राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायत दर्ज करे खातिर टोल फ्री नंबर है 7827178271710170। सुरक्षित शहर परियोजना केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग भिलाई जैसे शहर में सुरक्षित शहर परियोजना लागू है। एमा शामिल है कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थान में बेहतर प्रकाश व्यवस्था, CCTV कैमरा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय, महिला मन के अन्य कानूनी अधिकार से घरेलू हिंसा के संरक्षण में अधिनियम 2005। हालांकि ये अधिनियम मुख्य रूप से घरेलू हिंसा में लागू होते, लेकिन कार्यस्थल में घरेलू हिंसा के प्रभाव ले प्रभावित महिला मन ला भी संरक्षण देते। उदाहरण, अगर महिला ला घरेलू हिंसा के कारण कार्यस्थल में परेशानी होते तो वो संरक्षण आदेश मांग सकते। यौन उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, जो अब BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान है, धारा 354A में यौन उत्पीड़न जैसे अवांछित शारीरिक संपर्क या यौन टिप्पणी खातिर सजा, धारा 354D पीछा करे ला अपराध माने जाते, कार्यस्थल में भी लागू होते। धारा 509 महिला के सम्मान ला ठेस पहुंचाए वाले व्यवहार जैसे अश्लील इशारा या टिप्पणी खातिर सजा, 0 FIR। महिला मन कोनो भी थाना में शिकायत दर्ज करा सकते, चाहे अपराध कितना भी दूर या कोई भी थाना क्षेत्र से दूर, अपन एरिया से दूर ही जहां भी उपस्थित रही वहां अमन शिकायत दर्ज करवा सकते, ओला 0 FIR बोले जाते। चुनौतियां और समाधान, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में महिला मन ला अपन अधिकार के बारे में कम जानकारी होते, कानून के कार्यान्वयन में कमी, कई संगठन में ICC गठित नहीं हुए या शिकायत के निपटारा में देरी होते, सामाजिक और सांस्कृतिक रुकावटें और सामाजिक दबाव के कारण महिला मन शिकायत दर्ज करे ले हिचकिचाते। एकर समाधान है जागरूकता अभियान, स्कूल कॉलेज और कार्यस्थल में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे जाना चाहिए। प्रशिक्षण, आंतरिक शिकायत समिति ICC सदस्य मन और नियोक्ता मन खातिर नियमित प्रशिक्षण। सख्त कार्यान्वयन, कानून के उल्लंघन में सख्त कार्यवाही और निगरानी। और महत्वपूर्ण बात, सुरक्षा पहली प्राथमिकता। अगर आप लगते कि मामला गंभीर है जैसे शारीरिक हमला और धमकी, तब तुरंत पुलिस के मदद लेवे और नजदीकी डॉक्टर के पास परामर्श लेवे। जागरूक रहो, अपन कार्यस्थल के नियम और आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य मन के बारे में जानकारी रखो। छत्तीसगढ़ कार्यस्थल में महिला मन के सुरक्षा खातिर कई कानून और नीतियां उपलब्ध है, जे भारतीय संविधान, पोष अधिनियम, प्रस्तुति मातृत्व लाभ अधिनियम और दूसर कानूनी प्रावधान मन में आधारित है, लेकिन ये कानून मन के प्रभावी कार्यान्वयन और जागरूकता के कमी के कारण अभी भी सुधार की जरूरत है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग हेल्पलाइन और सुरक्षित शहर परियोजना जैसे कदम सही दिशा में है, लेकिन समाज के हर स्तर में सहभागिता जरूरी है। महिला मन ला अपन अधिकारों के प्रति जागरूक करे।

0: सुरक्षित माहौल देके और कानून के सख्ती ले लागू करे से ही कार्यस्थल में सही मायने में लैंगिक समानता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।
1: अभी आप मन सुने वार्ता जिखर विषय रहीस काम काज के जगह में सुरक्षा के अधिकार और वार्ताकार बहनी रहीस श्रीमती महेश्वरी वर्मा। ये वार्ता ला सुन के हमन अतका तो जानेन बहनी हो कि महिला सुरक्षा सिर्फ कानून के बात न है बल्कि सम्मान समानता और आत्मविश्वास के बात आए। जब हमार काम काज के जगह सुरक्षित रही तभी हम महिला मन अपन पूरा क्षमता के संग आगू बढ़ सकथन। फिर आवाओ अब आगू बढ़थन गीत संगीत डहर और सुनथन मंसूरी सिंह और सत्यभामा सिंह के गाए ये गीतला।

बहनी हो, अब क्रम हवे आप मन के अपन क्रम बहनी मन के चिट्ठी के। और भाई हमर करा तो अब बड़ा कन ईमेल और चिट्ठी आए हवे, हमला देख के तो ऐसे लागा थे। चलो कही देता हूँ। चिट्ठी माँ मया समाय है, चिट्ठी माँ विश्वास, बहनी मन के बात ले जुड़ थे मन के आस। तभी पहली संदेशा आए है 16 तारीख के कार्यक्रम पर, और संदेशा भेजैया श्रोता

संगवारी मन हावय तेंदुभाठा मगरलोड जिला धमतरी ले श्रीमती मुहेश्वरी निषाद, देविका नूतन और लक्ष्मी निषाद ये बहनी मन लिखे हे 16 तारीख शनिचर के घर आंगन कार्यक्रम ल धर के आय रहीस हमर मयारू संगीता वर्मा दीदी हा जेन अपन सुघर गोट बात के संग जोहार बहिनी कार्यक्रम ला सुनवाइन जेमा हमर श्रोता संगवारी मन संग गोट बात करत मन पसंद गीत ला सुनवाइन जेन हमर मन ला मोहलिस कार्यक्रम के संपादन बीरभान साहू और फोन संवाद बर संगीता वर्मा ला गाड़ा गाड़ा बधाई और ये फोन इन फरमाइश जोहार बहिनी हमारे यूहू बहिनी मल्ला बड़ निक लागे है और पाती पठोए है सिमगाले भारती सेन विजया सेन ललिता सेन रामेश्वरी सेन और मीरा सेन तबहिनी हो कार्यक्रम आप मल्ला भागे तमाने हमर मेहनत सार्थक होए कहान भाई आपो मन जुड़ाओ हमर जोहार बहिनी मा और गोट बात करत अपन पसंद के गाना ला सुनो ईमेल और पाती भेजो एखर बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद और ये ईमेल आए हवे 23 मई के कार्यक्रम पर और श्रोता बहिनी मन लिखे हे 23 तारीख के घर आंगन ला अपन गुरतुर बोली के ले संवार के लाने रहीस आशा दीदी हा जिन पर्यावरण संरक्षण हमर जिम्मेदारी विषय में गोट बात करत विशेष कार्यक्रम चौथापन के सांझ अनुभवी दीदी मन के विचार ले सिरझे रहीस जिन हमर अंतर मन ला छूगे कार्यक्रम के आलेख वाचन बर आशा दीदी ला और संपादन बर बीरभान साहू ला गाड़ा गाड़ा बधाई और ये विचार ला भेजैया हमार ये श्रोता बहनी मन है आर्यनगर कोहका भिलाई ले मूरज जंघेल गायत्री जंघेल सकुन जंघेल ओशिका जंघेल योगेश्वरी जंघेल आरुषि जंघेल और नंदनी जंघेल और ये ईमेल आए हवे 30 मई के कार्यक्रम पर जिला लेके आए रहीस हमर आशा बहनी हा संदेश भेजैया बहनी मन हावे रानीगांव नगरी ले चित्ररेखा साहू उर्वशी साहू राधाबाई साहू चंदा साहू कुमारी सेजल साहू वीना साहू बहनी मन लिखे हे 30 मई के घर आंगन के बगिया ला सुघर गोट बात ले सजा के लाने रहीस हमर दीदी आशा हा मुंगरा फिर महमहागे गीत ले भरे कहीं नी सुनवाई जिन हमन ला बड़ सुघर लागे गीत संयोजन घलो बड़ शानदार रहीस कार्यक्रम के आलेख और वाचन बर आशा शर्मला और संपादन बर बीरभान साहूला और प्रस्तुति बर रमा शंकर सरला गाड़ा गाड़ा बधाई है और इही दिन के कार्यक्रम बर हमर करा और ईमेल और पाती आए है लोरमी ग्राम चचेड़ी ले प्रमिला मरावी नेहा मरावी रिंझा मरावी तनु और राही मरावी के और ग्राम रिंगनी ले करुणा वर्मा और प्रियंका बच्चोर के तो बहनी हो गीत ले भरे कहानी के माध्यम ले हमन कहीं ना कहीं संदेश दे के कोशिश ल करत रहन आप मल्ला हमारी ये नान नान कोशिश कैसे लागते एला आप मन जरूर बताए करो संदेशा भेजो एखर बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद और ये ईमेल आए हवे 26 मई के कार्यक्रम पर और संदेशा भेजैया संगवारी मन हवे गंडई टिकरी पारले श्रीमती कचरीबाई देवांगन श्रीमती जयश्री देवांगन कुमारी हिमांशी देवांगन और ग्राम नेवई उतईले श्रीमती उर्वशी देवांगन कुनिका और दीपशिखा देवांगन श्रोता बहनी मन लिखे हे 26 मई के घर आंगन ला अपन गुरतुर बोली में सजा के लाने रहीस रोशनी दीदी हा जिन पहला सुख निरोगी काया विषय में गोट बात करत क्रम डॉक्टर के सलाह में गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप बढ़े के कारण और उपाय विषय में चर्चा करी डॉक्टर आकांक्षा साहूले जिन हमन ला बड़ ज्ञानवर्धक लागिस और संगमा बहिनी मन की चिट्ठी और गीत संगीत घलो सुने बर मिलिस कार्यक्रम के सफल प्रस्तुति पर रोशनी दीदी संग डॉक्टर आकांक्षा साहूला गाड़ा गाड़ा बधाई है और 2 जून के कार्यक्रम ल घलो हमर रोशनी बहिनी के ही रहीस उही दिन बर ईमेल और पाती घलो आए हवे श्रोता बहिनी मन लिखे है 2 जून के घर आंगन ला अपन मीठ बोली में सवार के लाने रहीस रोशनी दीदी हा ये दिन सुघर गोट बात के संग कहानी पार्वती सुने कहानीकार बहिनी रहीन सुनैना साहू और छोटे छोटे चर्चा के बीच में गीत संगीत बड़ मनमोहक लागे इस कार्यक्रम के सफल प्रस्तुति पर रोशनी दीदी संग कहानीकार बहिनी सुनैना साहूला गाड़ा गाड़ा बधाई और ये ईमेल भेजे है करही भदर ले शारदा निर्मलकर लक्ष्मी सोनवानी गीतिका सोनवानी और इही दिन के कार्यक्रम पर पाती घलो का है नवागढ़ कटैले श्रीमती शारदा वर्मा दामिनी वर्मा और सीमा वर्मा के तो बहनी हो ऐसने ही दया माया बनाए रखो अपन सोर संदेशा ऐसने ही भेजते रहो काबर बहनी हो आप मन के सुझाव समीक्षा प्रशंसा सबो हमला कार्यक्रम ला बने ले और बनाए बर हमर मन बर टानिक के काम करते तो भाई आज के ए कार्यक्रम कैसे लागी इस पाती और ईमेल के माध्यम ले बताबे करूँ फिर आवो जावत जावत एक गीत के आनंद लघलुक उठा लेथन

अभी आप मन जौन गीत ल सुने उलापन सुर ले सजाए रहीस कांति यादव फरीदा हा। तो बहनी हो पाती भेजू एखर भर हमर पता है बहनी मन के चिट्ठी घर आंगन प्रभाग द्वारा केंद्र निर्देशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर 4920001 और ईमेल आईडी है राय बहनी मन के चिट्ठी 10@gmail.com और ये सबो शब्द मन बहनी हो अंग्रेजी के छोटे अखर में हवे। तो भाई अब मोरो जाए के बेरा तो हुआ थे ता आज के घर आंगन ले अपन संगवारी संध्या ला देवा विदा लेवा हमार राम राम।

ये था ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए क्षेत्रपट संगीत।

0: मोहम्मद अजीज और आशा भोसले को भी आपने सुना फिल्म इलाका में। शब्द रचना समीर की थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइम

0: वी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: श्रोताओं, क्षेत्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

आइए अब सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत, आवाजें अलका याज्ञिक और बाबुल सुप्रियो की। फिल्म का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके।

0: चोरी चोरी चुपके चुपके इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था अलका याज्ञिक और बाबुल सुप्रियो ने, शब्द रचना समीर की थी और धुन बनाई थी अन्नो मलिक ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में

0: भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनीमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार का

0: कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रूपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या

0: तेज हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनी राजेश रोशन की बराई तर्ज पर इब्राहिम अश्क का लिखा गीत, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याज्ञिक की, और फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

0: कहो ना प्यार है, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था उदित नारायण और अलका याज्ञिक ने, शब्द रचना इब्राहिम अश्क की थी और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हों, फिर पढ़ के भुला जाते हों।
0: अरे तो सुने करना।
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुरकरा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान में वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे

0: कक्षा युवाणी माँ तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत हमार गांव आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह एक के कार्यक्रम में इतना कुछ तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा तेना 6 तक चलते जेमा तह मंगलवार गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में
1: तब तो सुने ला पढ़ी
0: एक संग युवाणी।

विनोद राठौर और अलका याज्ञिक को अभी आपने सुना फिल्म दीवाना में। शब्द रचना समीर की थी और धुन बनाई थी नदिम श्रवण ने।

आइए अब सुनते हैं अलका याज्ञिक और उदित नारायण को। शब्दकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण और फिल्म का नाम है राज

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में ये था समीर का लिखा गीत। फिल्म राज के लिए स्वर दिया था अलका याज्ञिक और उदित नारायण ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और कुमार सानू को, बोल समीर के, संगीत नदीम श्रवण का, और फिल्म का नाम है बलमा।

आशा भोसले और कुमार सानू को भी आपने सुना फिल्म बलमा में। शब्द रचना समीर की थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा गीत। फिल्म प्रेम रोग के लिए स्वर दिया है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में ये था पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा गीत। फिल्म प्रेम रोग के लिए स्वर दिया था सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा में 5 बजे इसी मीटर और फ्रीक्वेंसी पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का एक विशेष डाक टिकट जारी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्ति

0: करण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। क्रिकेट में दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रनों का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 10वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 65 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today said the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage, from infrastructure to the digital revolution. Mr. Modi underlined that to realize the resolve of a developed India, the government will continue to move forward relentlessly on the path of service, good governance and prosperity. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. Speaking at a United Nations Security Council session, India's permanent representative to the United Nations, Parvathaneni Harish, slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling militant outfits operating inside its own territory as Fitna al-Hindustan. The ambassador targeted Pakistan's political framework and the dominant role played by its military in governance, pointing to recent constitutional amendments as clear indicators of expanding military dominance over civilian authorities. He also condemned Islamabad's cross-border military operations, holding Pakistan accountable for

कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, जब हम आदतें बदलते हैं तुम शर्तें बदल देते हो। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां ये समय है मनभावन प्रोग्राम का। मनभावन वही प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी पसंद के गीत आपको सुनवाते हैं अब से लेकर 4 बजे तक, और इन गीतों की फरमाइश या रिक्वेस्ट आप हमें लिखकर भेजते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि है fmgoldaiadelhi@gmail.com। तो पहला गाना मैं आपको सुनवा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत, 3 देवियां फिल्म से किशोरदा की आवाज़ में।

जी हम तो बिल्कुल हकीकत हैं और इसीलिए आपके मैसेजेस यहाँ शामिल कर रहे हैं और आज आप ही के पसंद के गाने आपको सुनवाने वाले हैं। पहला मैसेज हमें मिलता है संतोष खटसे का। आप गैंगस्टर फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं, महाराष्ट्र से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं विनोद खटसे के साथ। अगला मैसेज है तुलसी मस्कीन का और आपके साथ है वीना, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधान खुराना भी आपके साथ हैं। प्रोग्राम आपको ये वाला पसंद आता है ऐसा आप कहते हैं। अंकित कांगड़ा हरियाणा से हमें मैसेज भेजते हैं, राम राम जी लिखकर कहते हैं कि दो बदन फिल्म से एक गाना आपको सुनवा दिया जाए। मोनी कांगड़ा, अंकित, प्रिंस बोट, सीताराम और साहिल कांगड़ा आपके साथ हैं। स्वरूप आनंद सरजल प्रोग्राम को सुन रहे हैं और बहुत सारे इमोजीज के साथ आपने हमारा स्वागत किया है, जिसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहती हूँ। छत्तीसगढ़ से आप हमारे साथ हैं और जिंदगी और तूफान फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं मुकेश साहब की आवाज़ में। और स्वरूप आनंद सरजल आपके साथ जी आपने ही हमें संदेश भेजा है। और मेहर अरोड़ा का भी मैसेज हमें मिलता है, मेहर अरोड़ा क्या कहते हैं जान लेते हैं। आप श्री गंगानगर राजस्थान से प्रोग्राम को सुन रहे हैं ममता अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा के साथ और चरस फिल्म से आपने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। विजय सुरलकर का भी मैसेज हमें मिलता है, झुक गया आसमान से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, रतन माला और गौरी सुरलकर आपके साथ हैं। अगला मैसेज हमें जगन्नाथ पटेल का मिला है और आप खंडवा से हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कमला, अंतिम, जगन्नाथ पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल आपके साथ हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अगला गाना है वो कौन सी फिल्म का है, वो कौन सी फिल्म है ये, जी हाँ वो कौन थी ये फिल्म है और आप चंडीगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते हैं, बिमला और सतीश अनेजा। तो चलिए सुनते हैं आशा जी की आवाज़ में ये गाना।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: स्वागत एक बार फिर आप सभी का मन भावन में। एक बार फिर से सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो ये एक रिक्वेस्ट बेस्ड शो है जिसमें आप अपनी रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि है fmgoldairdelhi@gmail.com। आपकी पसंद के गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, और अगला जो गाना है वो किसकी पसंद का होगा उसके लिए हमें थोड़ी सी ईमेल्स, थोड़े से नाम शामिल करने होंगे। तो अगला मैसेज हमें मिला है रवि कुमार राहुल का, और आप हीरा फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं हरियाणा से। रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल आपके साथ हैं। और अगला मैसेज आता है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आपके परिवार के सदस्य हैं और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको लगता है कि आपका मैसेज गायब हो गया है। हालांकि अब्बासी साहब, आपने इतनी सारी ईमेल भेजी हैं, मैसेज गायब हो के भी गायब नहीं होता है ना। जो जानते हैं हमने कितनी बार भेजी हैं, वो ताल्लुक रख पा रहे होंगे मेरी बात से। तो खैर, हरजिंदर सिंह भाटिया ने हमें ईमेल लिख भेजी है, आपके साथ हैं एंजल सोनू पप्पी भाटिया, और आप जमशेदपुर से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। 2 आंखें 12 हाथ से आप एक गाना सुनना चाहते हैं आज। अनिल मोहन का मैसेज हमें मिलता है, तीसरी कसम से, आप मुल्तानी डांडा से अपनी रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं। उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक आपके साथ हैं। अगला मैसेज अनंता वाढे का हमें मिला है, और गैम्बलर फिल्म से एक बहुत ही सुंदर गाना आप सुनना चाहते हैं। आपके साथ है रामेश्वर वाढे, शुभम, साक्षी, खुशी, समस्त वाढे परिवार, आप सब इस गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजते हैं। और अगला मैसेज हम देखते हैं किसका है। फैज़ अहमद कतरी भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम अपनी पसंद का गाना आपको सुनवा सकते हैं। आपके साथ शाकिर मुलाजी, साबिर और रफ़ीक भी हैं, और आप हुबली से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। क्या बात है, देश के कोने कोने से जब मैसेजेस आते हैं ना, तो लगता है कि बस सभी की पसंद के गाने सुनवा दिए जाएं। तो चलिए ऐसे देखते हैं कि अगला गाना किसकी पसंद का है जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपसे बस कुछ ही सेकंड्स दूर है वो गाना। वक्त फिल्म से एक गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, और धर्मेंद्र, कपिल, ईशान, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से इस गाने को सुनना चाहते हैं। तो आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गाना आप सबके लिए, आप ही के अपने, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी, तो अगले मैसेजेस जो पहुंच रहे हैं हमारे पास, वो पूनम गगनेजा का अगला मैसेज आया है। आपके साथ हैं सुरेश, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित भी, और आप जलालाबाद वेस्ट से हमारे साथ हैं। अगला ईमेल हमारे पास अल्तमश खत्री का आया है और आप सुनना चाहते हैं दर्द फिल्म से एक गाना। आपके साथ अकरम फरजाना और शबनम है। किशन वंजनी भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपके साथ हैं नीलम, स्वाति, कीशु। आप रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और कहते हैं कि हम अपनी पसंद का कोई भी गाना आपको सुनवा दें तो आपको अच्छा लगेगा। उत्तम सिंह जंगेल का मैसेज हमें मिलता है, साजन फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और आपके साथ हैं मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल। और इसी के साथ सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल का भी नाम आपने शामिल किए हैं। और राजा और रंग फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंचती है जुम्मा नगर खंडवा से, और आप

0: का मैसेज हमें मिलता है गुलाम साबिर राही मेराज जहां के साथ। आप हरिद्वार से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। शमशूल कमर राही गंज डुंडवारा से खानदान फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है शाहीन फातिमा अनू खान अदनान खान और फैजान खान। भूषण खेड़ा भी हैं मैसेज भेजने वालों में। आप भी राजा और रंग से गाना सुनना चाहते हैं। फजिल का पंजाब से आपके साथ है विशु खेड़ा विशाल लाडी और फिरकी वाली तू कल फिर आना। ये हैं गाने के बोल। वैसे मैं आपको बता दूं कि पुकार फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है मेरठ से दिग्दर्शन गौर और कविता जी की। तो चलिए आपकी रिक्वेस्ट आज पूरी कर देते हैं और ये गाना आपकी पसंद का सुनवाते हैं सभी सुनने वालों को आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: देखो हाँ माइके नहीं तू मत माइके माइके मत जाइयो। ए टोनी फर्नांडिस बेबी

अगला मैसेज हमें मनभावन में मिला है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब रियाज मोहम्मद कैफ अंसारी अनवर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का और बोधराज खोरवाल भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं। कमला रानी गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश के साथ धनवान फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। ढेर सारी ईमेल्स आपने हमें भेज दी हैं और ऐसा लगता है कि एक पूरा पेज आप ही की ईमेल से जो है ना वो आप मुझे भरा हुआ लग रहा है। एचआर पांड्या का भी मैसेज हमें मिलता है जाने अनजाने फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। असम से आप हमें सुन रहे हैं हरेन पांड्या नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या, क्या बात है। और अमोल मानकर का मैसेज मिलता है रास्ते का पत्थर फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। शोभाताई मानकर दीपाली और श्लोक कुमार आपके साथ हैं और सहदेव दामोदर शशिकला और सुमित कुमार भी आपके साथ ही हैं। मोहम्मद यूनिस खत्री प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं सच्चा और झूठा फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ हैं अयूब यूसुफ और मोहम्मद सादिक खत्री भी। आप खंडवा से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और किशन वंजनी का भी संदेश हमें मिलता है आप दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से अजीब दास्तां है, ये बहुत ही फेमस गाना है इसे सुनना चाहते हैं। और आपके साथ है सुमन महाजन, आप इन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं गाना, क्या बात है। और इसके बाद सुनील पाठक भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपके साथ है कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। दोस्ती फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। आफताब अंसारी का भी मैसेज हमें मिला है और मैसेज भेजने वालों में सुनील पाठक का नाम है। गणेश सुतर का भी मैसेज आया है, आनंद फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। चेतन सुतार सारिका सुतार आपके साथ हैं, कोल्हापुर से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। रफीक भाई पवार का भी मैसेज आया है, एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ है बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, अलमाज बानो पवार, बेबी आयत फातिमा और मोहम्मद हसनैन पवार। अगला मैसेज हमें मिलता है किसका, ये मैं आपको बताती हूँ। जय का मैसेज आता है हमें, जय राम खोरवाल, सचिन अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, 1942 लव स्टोरी से आपने गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। लेकिन मैं कौन सा गाना सुनवा रही हूँ ये आपको बता देती हूँ। इज्जत फिल्म से इस गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास दिल्ली से आई है और उग्रसेन शकुंतला यादव और गरिमा इस गाने को सुनना चाहते हैं। लता जी और रफी साहब की आवाज़ में ये गाना आप सबके लिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: ढेर सारे मैसेजेस आपके मिल रहे हैं हमें मनभावन में, जिसे आप सुन रहे हैं आप ही के अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अरविंद कुमार का मैसेज हमें मिलता है, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आलिम पटेल सुन रहे हैं प्रोग्राम और पर्वत फिल्म से आप ये गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ हैं मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल भी। कल्पना झा का मैसेज हमें मिलता है, फिर वही शाम वही गम, ये गीत आप सुनना चाहते हैं तलत साहब की आवाज में। आपके साथ है मानव, मयंक और आप गुजरात से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। सुशांत प्रिया झा का मैसेज आया है, छाया फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमारी आपके साथ हैं, कीर्ति नगर से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। सुरेंद्र संधू का भी मैसेज हमें मिला है और आपके साथ है अनीता संधू, रोहित, रितेश, शिखा संधू, प्रीतीश और मैक्स। और आप कहते हैं कि आप हमारी ही पसंद का गाना सुन लेंगे, उसी में बहुत खुशी हो जाती है। क्या बात है। उग्रसेन यादव प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपकी पसंद का गाना तो हम आपको सुनवा चुके हैं। और अगला मैसेज शीशपाल वर्धन का हमें मिलता है, दिल के टुकड़े दो ये गाना आप सुनना चाहते हैं। और अगला मैसेज अनूप कौर का आता है, आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं सरोज बंसल के साथ गुरुग्राम से। इशाक मोहम्मद भी हैं सुनने वालों में और आपके साथ है खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा और आपके परिवार के सभी सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। भव्या मैथिली हैं, तीसरी कसम से गाना सुनना चाहती हैं। आपके साथ है लड्डू कुमारी और टुकटुक भी। नजफगढ़ से आप प्रोग्राम सुन रही हैं, इसे पसंद कर रही हैं। मल्होत्रा टीडी आपका मैसेज आता है, आपके साथ है ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप सिंह। आप ही की पसंद का गीत है अगला, जिसकी रिक्वेस्ट आपने हमें लिख भेजी है। मैंने प्यार किया से ये गाना आप तक पहुँचा रहे हैं। और एक और रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी इसी फिल्म से गाने की, भारत भूषण साहब हैं, आप भी इसी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ बेंगलुरु से। तो आपकी पसंद का गाना पहुंचा रहे हैं आप तक।

0: राजेश खोबड़खेड़े, सुरेश नारंग, नीटू मल्होत्रा, संजय साहू पोटिया कला से मैसेज भेजते हैं। ताज मोहम्मद, नवी हसन अब्बासी, सुरेंद्र संधू, बबलेश पवार, पूनम गगनेजा, उत्तम सिंह जंघेल, शेख मूसा भाईजान, जॉन डिकोस्ट्रो, पर्ल विलिस, संदीप मक्कड़ और मन्नत भरत मक्कड़, आप सब प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आपके साथ ज्योति मक्कड़ भी हैं और रामकुमार रिवार, अत्तर सिंह करदम, शीश पाल वर्धन, मास्टर खिल्लू परवेज, सुरेश नारंग, इशाक मोहम्मद, उदय भानपाल, मोहम्मद वकार, अभिजीत ग्वांकर, पंडू चंदन, सुरेश राठौड़, अशोक डाले, रिजवान, आप सबके लिए ये गाना जाने से पहले।
1: हाँ,
2: क्या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है,

इसी के साथ अपराजिता को दीजिए कुछ समय के लिए विदा। इस गाने के बाद आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद एक बार फिर से मैं मिलूंगी आपसे यहीं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर पहली बड़े पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और साथ ही बिजली खर्च में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बचत भी करेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कहा कि प्रत्येक शिशु को गर्भावस्था के प्रत्येक चरण में सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक देखभाल का अधिकार है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने लाखों गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जाँच, विशेषज्ञ परामर्श और बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाएं

0: प्रदान करके सुरक्षित मातृत्व को एक जन आंदोलन बना दिया है। पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन और वैश्विक स्तर पर UPI जैसे डिजिटल उपायों के जरिए हमेशा राष्ट्रीय हित को विश्व कल्याण के साथ जोड़ा है। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनिकबर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक क्षण बताया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष गढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 23 ओवर में 3 विकेट पर 115 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation this afternoon with the Amir of Kuwait, Sheikh Mishal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for early restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Amir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The core aim of the scheme is to reduce maternal and neonatal mortality by facilitating early detection and prompt management of high-risk pregnancies. Through early identification of high-risk pregnancies, regular monitoring and timely medical intervention, the program has helped strengthen maternal healthcare services across the country. Defence Minister Rajnath Singh has approved the first large-scale solar power project on defence land at Sitapur, Uttar Pradesh. The Defence Ministry said that this is the first of its kind project undertaken by the ministry involving the development of a large-scale solar power generation facility with integrated battery energy storage system BESS support on defence land. The ministry said that this 250 megawatt solar BESS project will strengthen energy security of defense establishments across Uttar Pradesh while generating significant long-term savings in power expenditure. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। आइए सुनते हैं किशोरदा की आवाज में ये गाना, और साथ में लता जी भी हैं।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जयसिंह रोड नई दिल्ली 1 आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। कनिष्ठ अभियंता कुल पदों की संख्या 6, कनिष्ठ अभियंता 1 पद, कनिष्ठ अभियंता QS एवं C 1 पद, कनिष्ठ अभियंता योजना 2 पद और कनिष्ठ अभियंता बिलिंग तथा अनुबंध 2 पद। गैर तकनीकी पद कर्मचारियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं जिनका विवरण इस प्रकार है: सहायक प्रबंधक प्रशासन 1 पद, लेखाधिकारी 1 पद, सहायक 1 पद, कंप्यूटर प्रोग्रामर 1 पद, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी 1 पद, कनिष्ठ सहायक 2 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर 2 पद। विस्तृत नियम शर्तों और आवेदन तथा आरक्षण संबंधी जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.dphcl.com और www.delhipolice.gov.in। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम इंडिया ऑप्टल लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है एक पद के लिए आवेदन। पद का नाम है सलाहकार फील्ड ट्रायल कोऑर्डिनेशन। थल सेना के सेवानिवृत्त मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी जो कि इन्फेंट्री डिवीजन से संबंधित हों केवल वही आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा है 62 वर्ष। विज्ञापन का विस्तृत विवरण देखा जा सकता है इंडिया ऑप्टल लिमिटेड की इस वेबसाइट पर जिसका पता है www.indiaoptal.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी प्यारी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास हमारे लिए, और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रोज की तरह रहेगी हमारी नज़र। दोस्तों, हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ आज मैं हूं मुनीष शर्मा और हमारे साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
2: नमस्कार मनीष। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आर लिसनर्स राइट नाउ। यस, दिस इज आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। यू ट्यून टू 100.1 मेगाहर्ट्ज गोल्ड एंड लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस एट दिस आवर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया।
2: इंडिया हिट्स आउट एट पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशंस, कॉल्स इट द फैक्ट्री ऑफ हेट।
1: खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू।
2: स्ट्रेटेजिक रोड प्रोजेक्ट जोजिला टनल अचीव्स फाइनल ब्रेक थ्रू, ब्रिंगिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर वैली एंड लद्दाख क्लोजर टू रियलिटी।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल हुए पूरे, राष्ट्रव्यापी समारोह आज से हो जाएंगे शुरू।
2: IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe, also predicts heat wave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan.
1: और पुरुष क्रिकेट में दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया।
2: And now it's time for our segment, Dateline.

0: के बारे में सोचिए जिसे हाल ही में पता लगता है कि वो मां बनने वाली है। उसका परिवार उत्साहित है, पड़ोसी सलाह दे रहे हैं, भविष्य के सपने आकार लेने लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उसे गंभीर एनीमिया हो जाए और उसे पता ही ना चले? क्या होगा अगर कोई समस्या तब तक छिपी रहे जब तक कि वो इमरजेंसी ना बन जाए? इन जोखिमों को जानलेवा बनने से पहले कैसे पहचाना जा सकता है?
1: Sometimes the difference between a complication and a safe delivery comes down to one thing, and that is timely medical care. And over the last decade, India has taken a remarkable step to ensure that millions of mothers receive exactly that. And today, as the nation celebrates 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, we look at a program that has quietly transformed maternal health care across the country and touched the lives of crores of families.
0: Darasal, प्रेगनेंसी के बारे में हमेशा पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। जो महिलाएं स्वस्थ दिखती हैं उन्हें भी दिक्कतें हो सकती हैं। गंभीर एनीमिया, जेस्टेशनल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन या एक से ज्यादा बच्चों की प्रेगनेंसी जैसी स्थितियों से माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। ऐसे में समय रहते समस्या का पता लगाना बहुत जरूरी हो जाता है।
1: Right, and that is precisely the challenge Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan set out to address. Launched on this particular day, that is 9th of June in 2016, this initiative gave a powerful promise to nation's mothers. On this day, every month, pregnant women across India can visit designated government health facilities and receive free, quality antenatal care. The program focuses especially on women in their second and third trimesters, the period when many pregnancy-related complications begin to emerge.
0: इस विजिट के दौरान माताओं की पूरी हेल्थ जांच, खून और पेशाब की जांच, अल्ट्रासाउंड, दवाएं, पोषण संबंधी सलाह, काउंसलिंग और एक्सपर्ट मेडिकल सलाह दी जाती है। डॉक्टर गर्भवती महिलाओं में 25 अलग-अलग तरह की हाई रिस्क स्थितियों की जांच करते हैं। जरा सोचिए अगर डिलीवरी से हफ्तों या महीनों पहले ही किसी समस्या का पता चल जाए तो कितनी जानें आखिर बचाई जा सकती हैं।
1: The answer is reflected in the numbers. More than 7.5 crore pregnant women have received antenatal services under the Abhiyan over the past decade, complementing routine antenatal care.
0: दरअसल हर आंकड़ा एक ऐसी मां को दिखाता है जिसकी सेहत पर नजर रखी गई, एक ऐसे परिवार को जिसे मन की शांति मिली और एक ऐसे बच्चे को जिसकी जिंदगी की शुरुआत बेहतर हेल्थ केयर सपोर्ट के साथ हुई। एक जानी पहचानी स्थिति पर विचार करें। दूर दराज इलाके में रहने वाली महिला को गर्भावस्था के दौरान सब कुछ ठीक लग सकता है। वो घर के काम करती रहती है, परिवार का ध्यान रखती है और ये मान लेती है कि सब कुछ सामान्य है।
1: बट During a Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan checkup, doctors discover that her hemoglobin levels are dangerously low and treatment begins immediately. Follow-up care is arranged, a potential emergency is prevented before the delivery. Stories like these are unfolding every month across India.
0: और जब high-risk pregnancy का पता चलता है, तो मदद वहीं नहीं रुक जाती। ये समझते हुए कि पहचान करना सिर्फ पहला कदम है, सरकार ने 2022 में एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान रणनीति शुरू की। क्यों? क्योंकि जोखिम का पता लगाना जरूरी है, लेकिन उस पर लगातार नजर रखना और भी जरूरी है।
1: Under the extended program, every high-risk pregnancy is individually tracked until safe delivery. Additional antenatal visits are encouraged. Mothers receive reminders. Asha workers stay connected. Medical support remains available throughout the pregnancy journey. And this ensures that no woman feels alone during one of the most important phases of their lives.
0: इस पहल की एक और खास बात ये है कि इसने डॉक्टर्स की भूमिका को सिरे से परिभाषित किया। क्या उनका योगदान रोजमर्रा के क्लिनिकल कामों से आगे भी हो सकता था? एक अनोखे वॉलंटियर मूवमेंट ने दिया इसका जवाब। इस प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर के ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस को अपनी

0: विशेषज्ञता का योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया।
1: The Prime Minister himself appealed to the doctors through Mann Ki Baat, requesting them to dedicate only one day every month, 12 days a year, to support pregnant women. Across the country, medical professionals responded. Thousands stepped forward, and together they transformed healthcare into a nationwide mission of service, and the impact has been extraordinary.
0: दरअसल मातृ स्वास्थ्य के सबसे अहम संकेतकों में से एक है मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो, यानी प्रति एक लाख जीवित बच्चों के जन्म पर गर्भावस्था से जुड़ी वजहों से जान गंवाने वाली माताओं की संख्या। एक दशक पहले भारत में मातृ मृत्यु दर थी 130, आज ये घटकर 87 हो गई है। हर आंकड़े के पीछे एक ऐसी माँ है जो सुरक्षित घर लौटी, एक ऐसा बच्चा जो माँ के प्यार के साथ पड़ा हुआ, और एक ऐसा परिवार जो किसी दुखद घटना से बच गया।
1: And this significant decline reflects years of dedication, stronger healthcare systems, and also better awareness. And Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan is not working alone. It forms the part of a larger network of maternal healthcare programs that strengthen support at each and every stage. If we talk about other government initiatives working in this direction, it includes the Janani Suraksha Yojana, which encourages institutions deliveries. The Janani Shishu Suraksha Karyakram ensures free healthcare services for mothers and also newborns. Suman scheme strengthens quality maternal healthcare across thousands of facilities.
0: Poshan Abhiyan माताओं के पोषण को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृत्व लाभ देती है। लक्ष्य लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, और ये सभी मिलकर एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं जो गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म और उसके बाद भी माताओं की मदद करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। लगभग 1.8 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं दी जा रही हैं।
1: Community awareness programs are bringing people together. Special Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan sessions are also being organized in hospitals and healthcare facilities. But perhaps the biggest celebration is not an event. It is the reassurance of a family that knows quality healthcare is within the reach.
0: और ये इस बात का भी भरोसा है कि जिंदगी के सबसे अहम सफर में हेल्थ केयर सेवाएं उनके साथ खड़ी रहेंगी। जैसे जैसे भारत विकसित भारत 2047 की राह पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे कार्यक्रम हमें एक बड़ी सच्चाई की याद दिलाते हैं। तरक्की को सिर्फ इमारतों, सड़कों या टेक्नोलॉजी से नहीं मापा जाता, इसे इस बात से भी मापा जाता है कि हम अपनी माताओं का कितना ख्याल रखते हैं।
1: Indeed, because when a nation protects its mothers, it protects its future. 10 years ago, a promise was made, and today, crores of mothers stand as the living proof that India kept that promise. And this journey is only and only getting stronger.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास उनके पास। त्रिपुरा के कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर कैलाश शहर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने राज्य में पहली बार मीठे अंगूरों की सफल खेती की है। पारंपरिक रूप से पश्चिमी और दक्षिण भारत की फसल माने जाने वाले अंगूरों ने त्रिपुरा के मौसम में अच्छे नतीजे दिखाए हैं, जिससे किसानों और कृषि शोधकर्ताओं के लिए नई संभावनाएं खुली हैं। तो त्रिपुरा से सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: The project was launched with financial assistance from NABARD. Grafted grape saplings were planted on a 15 decimal plot of land within the KBK campus, Koilashahar. Within a few months, the plants started bearing fruits, producing both black and green varieties of sweet grapes. The achievement is being viewed as a major breakthrough because grape cultivation has long been considered a challenge in the humid climate of the Northeast. Through scientific methods, proper crop management and continuous monitoring, the researchers were able to achieve encouraging results. The success has already attracted national attention. Scientists and officials from the

और दोस्तों आज दिग्गज फिल्म निर्देशक राज खोसला साहब की भी पुण्यतिथि है, जिन्होंने देव आनंद जैसे अभिनेताओं को मौका दिया और बहुत सी सफल फिल्में उन्होंने बनाई। उन्हें बॉलीवुड में नियो नॉयर यानी सस्पेंस क्राइम फिल्मों का उस्ताद माना गया और उन्होंने CID, मेरा गांव मेरा देश, दो रास्ते जैसी एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में हमें दी और वो कौन थी, मेरा साया, दोस्ताना और मैं तुलसी तेरे आंगन की जो फिल्में थी इनके लिए भी हम उन्हें याद करते हैं और सुनते हैं उनका एक बड़ा ही यादगार गीत और उसके बाद सुनेंगे फिल्म दोस्ताना से, लेकिन सबसे पहले मैं तुलसी तेरे आंगन की।

0: Today is the birthday of Anushka Shankar, a British-American sitar player and musician of Indian origin. She performs across multiple genres and styles, classical and contemporary, acoustic and electronic. She has received 14 Grammy Awards nominations and was the first musician of Indian origin to perform live and to serve as a presenter at the ceremony. The music that you're listening to in the background is one of her performances on Indian classical rag.
1: और दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, तो आज्ञा दीजिए मुझे यानी मुनीष शर्मा को और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सराईपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, सिधमा, बदौली, जवाखान, मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ागांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडीह, दातीढाप, गढ़गांव, बड़डांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, कुकुर

0: गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल, धरमजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये लुटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जिगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, पसान और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडू पानी, कठमोरगा, लालपुर, परला, चोटिया, कापानवापारा, खड़पड़ी, बनिया, झुनकीडी, बांधापारा, कुकरी, कादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 87 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, कशडोल, बुलेकेरा, चिमटा पानी, कया, कटाई, पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोट ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। आपको जानकारी दे दें, हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन सुनिएगा रात 8:30 पर, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम में आज सुनिएगा आर्थिक विकास रात 9:25 पर। रात 8:15 पर सुनिएगा मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की होगी। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित होगा रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां का सरोद पर बजाया राग जय जयवंती। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर सुनिएगा युवाओं का कार्यक्रम युववाणी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें अपन गोट का विषय होगा विश्व प्रत्यायन दिवस, होंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बीड़ियां सुनिएगा शाम 6:30 पर। शाम 7:21 पर किसानों के कार्यक्रम चौपाल में आज के बाद का विषय होगा सब्जी के नर्सरी तैयारी और प्रबंधन। शाम 7:30 पर किसानवाणी के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग, संचालन निर्मल कुमार साहू, प्रस्तुतकर्ता शशि प्रकाश पांडे। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

स्पोर्ट्स कैन हम अनुप्रसारित करेंगे कल रात 8:30 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर कल रात 9:25 पर। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का समय होगा कल सुबह 7:05 पर। कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा आपके पत्र, प्रस्तुतकर्ता दीपक हटवार। कल सुबह 9:00 गांधी चर्चा में सुनिएगा महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ, वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर की। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 10:00 सुनिएगा रामचंद्र भागवत का वायलिन वादन, राग होगा बसंत मुखारी। और इस कार्यक्रम में कल रात 10:30 पर सुनिएगा सुलोचना बृहस्पति का गाया राग कौसी कान्हड़ा में ख्याल। ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो प्रसारित होगा कल सुबह 11:05 पर। रूपक छत्तीसगढ़ में पुरातत्व सुनिएगा कल दोपहर 1:30 पर। आलेख डॉक्टर प्रेम नारायण दुबे, प्रस्तुतकर्ता इलाशंकर गुहा। युवाओं के कार्यक्रम युवाणी में कल शाम 5:10 पर आजकल में सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद का दिवस, इस विषय पर चर्चा और होंगे क्रम पत्र मिला और युगल गीत। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुनेगा कल दोपहर 12:00। हमर हाथी हमर गोठ ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा कल शाम 5:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युवा।

0: युवाणी के अगोरा में बैठे हमर जम्मू सुनिए संगवारी मल्ला मोर यानी नीलेश
1: अवसन मा मैं हूँ दुर्गा साहू। दुर्गा साहू के मैया भरे
0: संजय जोहार। दुर्गा आज बिहनिया कुन बड़ दिन बाद कोयली की आवाज सुने ले नींद खुले सब मोर।
1: हाँ ये तो बने बात है संगवारी, माने आज घड़ी के आवाज के जरूरत नहीं पड़ी तोला।
0: हाँ और मने मन में मैं सोचत रहे हूँ कि रोज अतकी बेरा आके मोला उठा दे करती सही से की के।
1: ऐसे का उठा दी ना, फिर एक काम करे पढ़ी।
0: का काम?
1: तोला गांव में जाके रहे ला पढ़े।
0: हाँ गोर तो दे सिरतोन कहा था, यहाँ शहर में कहाँ कोयली के बोली सुनने पर मिलते है नहीं।
1: सिरतोन भाई कभू कभार सुन डरे ते फुर्सत साल भर।
0: हाँ दुर्गा शहर में जतिक सुविधा है ना उतके प्राकृतिक वातावरण के अभाव घला है।
1: सिरतोन भाई एकरे स्थिति तो मुला अपन गांव हम बड़ सुरता आते संगवारी। हाँ। गांव के नाव लसून के गांव घर अंगना मुहाटी खेती खार बाड़ी बखरी और ननपन के संगे साथी मन सुरता आ जाते।
0: कुकरा के बांग
1: गांव के कुकरा है तो ऐसे बांग देते कि पोत जन भाई।
0: हाँ, संगवारी हो गांव सिर्फ एक ठन जगह नो है, गांव हाँ हमार संस्कार और हमार पहचान है।
1: तेकरे सेती गांव ला हमार देश के आत्मा कहे जाते संगवारी हो।
0: और काबर की गांव में ही वो सब संसाधन हवे जेन हाँ हम मनखे के बुनियादी जरूरत ला पूरा करते।
1: जी हाँ मनखे एक दूसर के परिवार बरोबर सम्मान करते।
0: और शहर में तो एक बिल्डिंग में रही के ना दुर्गा, लोगन हाँ एक दूसर ला घलो जाने चिन्ह तक नहीं।
1: उहे गांव में कोनो ला तबियत खराब होते पारा पड़ोस के एक एक झन ला पता चल जाते कि एकर तबियत खराब हो गए है।
0: हाँ, यही तो गांव के सुंदरता है।
1: सिरतोन औ सुंदर मोला मोर गांव के तरिया लगते।
0: हाँ।
1: जेमा गर्मी के दिन मा संगी मन संग नहाए बर जावन तौरे बर सीखन।
0: हाँ और गांव के तीज तिहार के बातें अलग है दुर्गा।
1: सिरतोन
0: चाहे हरेली होवे तीजा होवे पूरा होवे या दिवाली सब एक परिवार

0: बार बरोबर गांव सरीक लगथे।
1: एकरे सेती तो शहर के मन गांव जाथे संगवारी।
0: हाँ।
1: तिहार में पूरा गांव एक परिवार जैसन हो जाथे। हाँ। सब झन मिलजुल के तीज तिहार मनाथे।
0: हाँ, और सबले ज्यादा सुरता आथे दाई के हाथ के बने चीला।
1: का बात,
0: अंगा का रोटी और किसिम किसिम के भाजी।
1: भाई गे भाई गे, मुंह में पानी आ जाए संगवारी। एक तो कार्यक्रम के बीच में खाना मंगवाए के सुविधा घलो नहीं है,
0: फिर गाँव जाए के तो सुविधा है ना।
1: हाँ वो तो है।
0: फिर दुर्गा, पढ़ाई लिखाई और नौकरी खातिर आज कतको झन हा गांव ले दूर शहर में रही थे, फिर शहर में रही के घलो मन जो हवे तेन हा गांव में ही भटकत रही थे। और जब बरसात पड़ते पहली माटी के जब खुशबू आते या कोनो लोक गीत कान में गूंजे लगते तब मन अपने आप कही उठते कि भाई याद आवत है मोला मोर गाँव के।
1: सिरतन संगवारी हो, गाँव हमला मेहनत और मिलजुल के रहना सिखाते।
0: हाँ।
1: एकता ले भरे गांव ले मिले संस्कार हा जीवन भर हमर संग चलते।
0: हाँ, एकरे सेती जरूरी है कि हमन अपन गांव संस्कृति और लोक परंपरा ला संजो के रखन।
1: काबर काबर की हमर गांव हमर संस्कृति रही ता हमर पहचान हमर अस्तित्व घलो जियत रही।
0: और जेन मन हा गांव में रहते ना संगवारी हो, वो मन हा ये अमूल्य धरोहर के सम्मान करो भाई।
1: सेतो संगवारी हो, अपन लोक कला परंपरा पहनावा जैसन जिनिस मन गर्व करो मन में।
0: हाँ।
1: जेकर ले हमार अवैया पीढ़ी ला घलो हमार संस्कृति हमार गांव में गर्व करे।
0: हाँ, तभी तो कीथे सियान
1: कैसे
0: बारी बखरी तीस तिहार औ बर पीपर के जिहा छाव है,
1: ऐसन सुघर मोर गांव है, ऐसन सुघर मोर गांव है।

0: संगी हो अभी सुनत रहिन सुघर कन माटी के गीत ला जिनला अपन सुर ले सजाए रहिन पीताम्बर यादव और कमला देवदास
1: और सुने बर चाह रहीन हमार संगवारी मन हा भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम मोहम्मद साजिद सिरे गातापारा ले लावण्या साहू उपासना देवराज ओम कुमार पुष्पराज प्रभु राम साहू चटौत सारागांव ले सुजान वर्मा सुहद्रा आयुषी कृत वर्मा मनहा बठेना ले बलकरण वर्मा ज्योति अंजनी रेखा धनेश्वरी वर्मा मनहा धरसीमा ले छेदूलाल यादव सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव लच्छनपुर ले संगवारी मन है रामजी साहू जीवन लाल रजक निम्मे शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू मनहा दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छनूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाओ खुशी प्रवीण साहू मनहा
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
3: आँखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं जब आए पूर्ण जांच करवाएं
3: आज ही ऑपरेशन आज ही छुट्टी
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय श्याम नगर गुरुद्वारा रोड तेली बांधा रायपुर
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: दुर्गा युवाणी मा कार्यक्रम सुनत सुनत ऐसे कौन से क्रम होते जिन मा संगवारी मन हा कापी और पेन ला धर के बैठ जाते
1: ले बता ए पूछे एक बात है रे संगवारी हो पूरा युवाणी सुनैया हमार श्रोता संगवारी मन जानते कि ये दिन हा कौन दिन होते कहिके
0: हाँ मंगलवार के दिन सबले बढ़िया क्रम जेन होते वो होते क्रम
1: सवाल जवाब
0: और यही वो दिन आया जब संगवारी मन हा कापी पेन ल धर के बढ़िया बैठ जाते त संगवारी हो झटकुन शुरू करथन क्रम सवाल जवाब त दुर्गा संगवारी मन हा जोन पाछू अंक अंक 233 के जोन जवाब हवे तेन ला तो भेजे हे पाती के माध्यम ले घलो और ईमेल के माध्यम ले घलो त ओ संगवारी मन ला हमन हा उत्तर ला बता देथन भाई वहू मन हा मिला लिही त संगवारी हो पाछू अंक 233 मा हमर कोती ले पूछे गे रही सबे पहले

0: यह सवाल, कौन से राज्य सरकार ह यूपीएससी परीक्षा के तैयारी करैया बर सीएम इंस्पायर योजना शुरू करे हे?
1: संगवारी हो, ये पहले यह सवाल के सही उत्तर आए, आप मन जन उत्तर भेजे हो ओखर ले मिलान करूँ, और सही जवाब आए मेघालय।
0: और संगी हो, पाछू अंक 233 के दूसरैया सवाल है, राजस्थान के कौन प्रसिद्ध लोक संत के 52वां शिष्यला 52 स्तंभ कहे जाते?
1: संगवारी हो, ये सवाल के सही जवाब आए दादू दयाल जी।
0: और संगी हो, पाछू अंक में तीसरैया सवाल रही सवे, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन धावक है पुरुष 100 मीटर दौड़ में नवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए है?
1: संगवारी हो, ये सवाल के सही जवाब आए गुरविंदर सिंह।
0: और संगी हो, चौथैया सवाल रही सब है पांचवा अंक में, के भारत के प्रथम औद्योगिक नीति के घोषणा कौन से बच्छर में करे गए रहीस?
1: संगवारी हो, ए अंक के चौथिया सवाल के सही जवाब है सन 1948।
0: और संगी हो, पांचवैया सवाल रही सब है पांचवा अंक मा, कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाए जाते?
1: संगवारी हो, ए अंक के सही जवाब है 24 अप्रैल।
0: और संगी हो, आखरिया सवाल रही सब है पांचवा अंक मा, डीआरडीओ हा भीषण ठंड मा तैनात सैनिक मन पर यूनिफॉर्म लॉन्च करे है, वो यूनिफॉर्म के का नाम है?
1: संगवारी हो, ये आखिरी सवाल के सही जवाब आए हिम कवच।
0: हाँ, तो दुर्गा, अब जिन संगवारी मन हा सवाल भेजे हे, तीन संगवारी मन हा अगोरा करत होई अपन नाव के, कि मोर नाव ला 600 ही जवाब वाला में शामिल करे हे कि धुन 5 सही जवाब मा?
1: तो संगवारी हो, आपके ये अगोरा ल दुरिहावा था, और मैं बतावा था कि कौन संगवारी मन हा सही सही जवाब सवाल के पठोए हावे। तो आवो जानथन 6 सही जवाब पठोया हमार संगवारी मन के नाम। टिकरापारा रायपुर ले लता देवी चौहान, रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम सेजल साहू, पथरिया भरेवाले चंदूलाल नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा वान्या सिंगरौल मनहा, डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का तन्मय गजभिये मनहा, पुतकी कला कवर्धा ले राधे श्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, नयन सुमांशु पांडे मनहा, चरडोंगरी पिपरिया ले दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू मनहा, खैरागढ़ ले संगी मन है लालपुर ले मोतीलाल भीमटे, सुशीला भीमटे, मेघा नेहा येशु भीमटे मनहा, सौंगा मगरलोड ले फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी मोहित कुमार, देविका रानी गजेंद्र चंदन, हेयांश कुमार चंदन मनहा, परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारनी मसिया, खुमेंद्र मसिया मनहा, बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रंबिका लीना, अंशुमाला आशुतोष अंगारे मनहा, सिंगारबाड़ी घुटकुले भगत राम पटेल, किशन सोनम मानवी पटेल, खमरिया ले साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ ले महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी गोस्वामी, दतरेंगी भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्रमणि, कोयलारी कमरधा ले कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पुणेन्द्र साहिल चंद्राकन, लोहारीडी जिला कमरधा ले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशान निशान साहू मनहा, धरसीमा ले छेदूलाल यादव, सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना रानी खुशी खुशी, प्रवीण साहू, इकबाल कुरैशी मनहा।
0: और संगी हो, यहू संगवारी मन हा 6 ठन सवाल के सही से जवाब पठो है। संगी मन हवे, लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज ऋषभ मरावी, चरौदा बार नवा पारा ले संगी मन हा, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू, ज्योति ठाकुर, पटेल नगर मलोट ले ये संगी मन हा, रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू जाजोरिया, कांकेर संबलपुर ले संगी।

0: मनहा फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव माँ महामाया चौक मेघापारा लेहे राम कौशल पटेल संतोषी दीपांशु दिव्या दीपांजलि दीपक टेकलाल पटेल और नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत शारदा मयंक वर्मा पीपरपारा पालचुआ मुंगेली लेह संगी मनहा उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन वंशिका दिवाकर बिलाईगढ़ लेहे रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगल हिंगोली महाराष्ट्र ले घलोहे संगवारी मन हा संगवारी मन के नाम है शाहजी बोडखे नंदा बोडखे हनुमान बोडखे ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर लेहे संगी मन हा महेश निषाद रंभा रानी निखिल नैतिक निषाद पुष्पांजलि स्वप्निल निषाद मन हा बठेना पाटन दुर्ग लेहे संगी मन हा बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद बंटी बबली वर्मा जवाहर नगर दुर्ग ले आरसी कांबड़े करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े धरदेई सरगांव लेहे संगी मन हा चंदूलाल पटवा सुनीता हर्ष विनीत क्रिस्टी पटवा और भाटापारा ले बचकमल मोतीलाल यादव बसंत भृगु चोवाराम वर्मा अब्दुल मजीद कुरेशी रेहाना बेगम भंवरपुर बसना लेहे संगी मन हा चंपा देवांगन राधेश्याम राजू जगदीश देवांगन अड़ार नांदघाट ले माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा पहंदा पलारी लेहे ये संगी मन हा नितेश ईशांत देवांगन सावित्रीबाई देवांगन तनुजा देवांगन पलारी लेहे संगी मन हा नितेश देवांगन दुर्गा पराग लखनलाल देवांगन बूढ़ादेव पारा लुकाऊपाली छतवन लेहे संगी मन हा नीतू जीतू रिया जया राहुल युवराज सिंह सूर्यवंशी औरिंगनी लेहे दिनेश वर्मा करुणा वर्मा सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द लेहे संगी मन हा कवर्धाले गुनीराम राजपूत संतोषी हेमप्रभाव पुष्पराज सूरज राजपूत
1: यही क्रम में सही छह सही जवाब पठे हमारे संगी मन हावे अमली डी कंवरधाले संतोष राजपूत हेमा प्रभा पूर्वी गौरव राजपूत मन हा भानपुरी मुसराले आत्मा राम यादव सुखदेव विदेशी होमेश्वर मनेश्वर लाक्षी तुलसी यादव मन हा बोरसरा नैला ले प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विभूति साहू बन भगेरा जिला राजनांदगांव ले योगेश सारवा आशा नीरज नीलेश अंजलि रोशनी सारवा मनहा कुमारदार राजनांदगांव ले तारा चंद साहू ओम साहू माही धर्मेंद्र साहू साले भाठा महासमुंद ले जित्तू ध्रुव केवल किरण दिव्यांशी खेमु ध्रुव मनहा कुर्मा जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ ले दिलदार मिरी ज्योति जानवी दीक्षांत मेरी मनहा गेंदा टोला बाजार चौक ले वीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता मनहा गुड़ाराज ले मनोज साहू चित्ररेखा साहू देवेंद्र लवीना चंचल वासनी और गरिमा साहू मनहा आवरा डबरी ले श्यामलाल साहू मोंगरा संगीता केशरी चिंकी साहू भीमखोर तरपोंगी ले संतोषी गुप्ता हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा शीतल गुप्ता महीदही साजा ले बेमेतरा ले हेमा देव विश्व विभू साहू मनहा देवर बीजा बेरला ले दिनेश देवांगन श्रीजन देवांगन रूपेश राजपूत मनहा मड़ौदा जाल बांधा ले पारकदास साहू किरण रेशमा सोनू गुनीता गुस साहू मनहा सलोनी राजनांदगांव ले देवचरण साहू हेमा वेदांत वैभव मनहा हरदेव लाल पारा सिमगा ले संगी मनहे रमेश कुमार यादव माया रिंकू सन्नी कोमल यादव मनहा मुडा टोला डोंडी लोहारा ले डोमेंद्र नेताम गंगेश्वरी नेताम चंचल कामेश हीर नेताम मनहा भदरसी ले घनाराम सेन गीतेश दीपेश निर्मला सेन मनहा बाग बहारा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन मनहा रूपापाली बसना ले हीरालाल जगत देवेश ब्रिजेश एकता लावण्या कश्यप मनहा फूलझर घटारानी जिला गरियाबंद ले योगेश्वर साहू डुमेश्वरी यामनी मुस्कान हर्षिता साहू मनहा तेंदुभाटा मगरलोड जिला धमतरी ले उमेंद्र कुमार निषाद मोहेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर किशन दिव्यांश भूपेश शिवा निषाद मनहा दुर्गापारा संतोषी नगर ले छन्नूलाल यादव पुष्पलता अर्पिता अरुणा अभिनव राजेश्वरी आस्था यादव अनुराग अभिषेक डुग्गू कान्हा यादव मनहा
0: अब संगवारी मनहा घलो हवे आर्यनगर कोका भिलई ले उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल अजीत आयुष और नंदनी जंघेल सुंदर पारा रोहासी ले डगेसर राम साहू नूतन गौरव घनश्याम अलका जानवी साहू सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव ले ये संगी मनहा नारायण लाल साहू कुलवंतीन देवी दिवेंद्र प्रताप नेहा देवी प्रणय रुद्रांश प्रताप साहू कन्हारपुरी राजनांदगांव ले मंथिरदास साहू भेविका संतोष कुमारी देवी चमनलाल दीपाली

0: सतीश गिरी गोस्वामी, श्रेयांश गिरी, शिवाय गिरी, एकांशी गोस्वामी, धतरेंगी लेह संगी मनहा, विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा, रीना लक्ष्मीणा यदु। अब इंदिरा चौक तखतपुर लेह, मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, कबीर डोंडी लोहारा लेह संगी मनहा बालोदले, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार डॉली, पूजा राधिका, प्रभा देवी तामुरिया, आमा खोड़ा रेंगा खारले है संगी मनहा, देवी सिंह नेताम, राजेंद्र दक्षप्रिया, गीत सरगम नेताम, बाजारवाड़ महासमुंदले भीष्मदास, नर्मदा हिरमणि, दीपक लक्षदास संगवारी मनहा, और कुटेना पंडुका गरिया बनले है ये संगी मनहा, झामेश्वरी साहू, टीकम धुरवा, भूषण कुसुम लता, वासु मोक्ष, झरना लक्ष्मी लवली, शशिकांत, जीतू लेखू, गोपाल गेंदी, पुष्पा भोला ओजल मनहा, पलारी लेहे संगी मनहा, प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा, और हसदा नंबर दूले कमलेश साहू, जितेंद्र, दिलीप, प्रवीण पायल, लक्ष्मी गीतांजलि, आकांक्षा पार्वती, टीकेश्वरी, नागेश्वरी और तुलसाराम साहू मन।
1: यही क्रम में छह सही जवाब पठवे अमरा संगी मन के नाम हवे, खलारी भीम खोजले जी एल साहू, सरोज छोटी पिंकी, रोहांसी छत्तीसगढ़ ले मुकेश कुमार, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, कन्यादमो विकासखंड बिरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश ले ध्रुवाराम साहू, परस राम साहू, देवानंद साहू, श्वेता योगिता केंजल साहू, पुरैना शहीद नगर जिला खैरागढ़ ले है पूजा जंघेल, धारनी रेखा ध्रुजंगेल मनहा। यही क्रम में उसंगी मनहावा यहीं ले धर्मेंद्र जंघेल, संतराम लोधी, नागेश्वर जंघेल मनहा, लक्षण पुले रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश मुकेश कुमार साहू मनहा।
0: तो दुर्गा, आज जम्मू संगवारी मनहा सबो छे ठन सवाल के सही सही जवाब पठोए हुई।
1: हाँ, एकर बार संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई
0: है। अब संगवारी मनहा ये अंक खातिर यानी 234 के सवाल क्या गुरा करत हुई
1: सिरतुन।
0: हाँ, फिर ओकर ले पहली संगवारी हो, आप मन हा कापी और पेन ला बने सामने में निकाल के रखो, जब तक हमन आप मन ला सुनाथन मनोरंजन खातिर एक ठन सुघर अकन गीत ला।
2: छत्तीसगढ़ के महिमा सुन लो, छत्तीसगढ़ के महिमा।

0: अपन सुर ले सजाए रहीन हवे मिथिले सहु और साथी मन हा।
1: ओ सुने बर चाहिए हमारे संगी मन हा धवलपुर ले गेंदलाल मिश्रा चंद्रकांति अर्चना धनंजय मिश्रा मन हा बेमितरा ले पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भाव्या सुषमा सारथी मन हा मुलमुला ले संगी मन है नेत्राम साहू मनीराम लक्ष्मी बिंदु डिंपल रामेश्वर मन हा एंचलो संगी मन है शिखन राम साहू अमरीका बाई लेखनी रोशनी चहक साहू अरमरी खुर्द दुर्गले चुरामल्लार वाडे जैनी वाडे तुषा अक्षत कुमार वाडे मन हा।
0: तो दुर्गा अब संगवारी मन हा सवाल जवाब अंक 234 के सवाल के अगोरा करत है भाई
1: सिरतोन
0: तो संगवारी मन ला सवाल ला बता दे भाई
1: तो संगवारी हो आवा जानथन क्रम सवाल जवाब अंक 234 के सवाल और ये अंक खातिर हमार पहले यह सवाल हावे जिला आप मन लिखो सवाल है हाल ही में PME ड्राइव योजना कौन केंद्रीय मंत्रालय शुरू करेंगे है
0: संगी हो सवाल जवाब अंक 234 के पहले यह सवाल मैं दोहरावत हूँ आप मन ध्यान लगा के सुनो पहले यह सवाल है हाल ही में PM ई ड्राइव योजना के शुभारंभ कौन केंद्रीय मंत्रालय हा करे है
1: संगवारी हो क्रम सवाल जवाब अंक 234 के दूसरे यह सवाल आप मन हा लिखो दास कैपिटल नामक पुस्तक ला कौन लिखे रिहिस
0: संगवारी हो ये अंक खातिर हमारा दूसरा सवाल है दास कैपिटल नामक पुस्तक ला कौन लिखे रिहिस
1: संगवारी हो ए अंक खातिर हमारा तीसरा सवाल महिला समृद्धि योजना कहाँ शुरू होए है
0: संगी हो यंग खातिर हमर तीसरा सवाल है महिला समृद्धि योजना कहाँ शुरू होए है
1: संगवारी हो क्रम सवाल जवाब अंक 234 के हमर चौथा सवाल हाल ही मा छत्तीसगढ़ के कौन कौन सिपाही ला शौर्य चक्र ले सम्मानित करे गए है
0: संगी हो ये अंक खातिर हमारे चौथा सवाल आए हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन कौन सिपाही ला शौर्य चक्र ले सम्मानित करे गए है
1: संगवारी हो यही अंक खातिर हमारे पांचवैया सवाल है आप मन लिखो हाल ही में बिलासपुर के कौन युवा क्रिकेटर ला इंडिया ए टीम के श्रीलंका दौरा पर चुने गए है
0: संगवारी हो पांचवैया सवाल है हाल ही में बिलासपुर के कौन युवा क्रिकेटर ला इंडिया ए टीम के श्रीलंका दौरा पर चुने गए है
1: संगवारी हो क्रम सवाल जवाब अंक 234 के हमार आखिरी सवाल आप मन लिखो कौन देश के टीम हा सबले ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के विजेता रहे है
0: संगियो ये अंक खातिर हमार छठवैया और आखिरी सवाल है कौन देश के टीम हा सबले ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के विजेता रहे हवे संगी हो कोनो सवाल हा कोनो छूट गए होही तो जम्मो सवाल ला मैं एक और दोहरावत हूँ आप मन हा जम्मो सवाल ला मिला लूँ हमार पहले यह सवाल है हाल ही में PM ई ड्राइव योजना कौन केंद्रीय मंत्रालय हा शुरू करे है दूसरा यह सवाल है संगवारी हो दास कैपिटल नामक पुस्तक ला कौन लिखे रहीस और हमारा तीसरा यह सवाल है महिला समृद्धि योजना कहाँ शुरू होए है और चौथा यह सवाल है संगवारी हो हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन कौन सिपाही ला शौर्य चक्र ले सम्मानित करे गए हे। और पांचवा सवाल है संगवारी हो, हाल ही में बिलासपुर के कौन युवा क्रिकेटर ला इंडिया ए टीम के श्रीलंका दौरा पर चुने गए हैं। और छठवैया वो आखिरी सवाल है संगवारी हो, कौन देश के टीम हा सबले ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के विजेता रहे हैं।
1: संगी हो, ये तो रही से आज के क्रम सवाल जवाब अंक 234 के सवाल। अब सवाल तो हमन बता रहे हैं कैसे डेलेस,
0: हाँ,
1: लेकिन ये सवाल के जवाब आप मन रहा पठोना कैसे है। अब जे संगवारी मन पहली ले जवाब पठवा थे वो मतलब तो मालूम हो ही कैसे संगवारी,
0: हाँ।
1: लेकिन जे संगवारी मन हाँ अभी नवा सुना थो ही वो संगवारी मन पर हमार पता है। संगवारी हो आप मन हमार पता लिखो, जे संगी मन हाँ पत्र के माध्यम ले चिट्ठी के माध्यम ले हमला अपन जवाब ला पठोना चाहते वो संगी मन हमार पता लिख लो, क्रम सवाल जवाब अंक 234 द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड है संगवारी हो 492001। और जे संगवारी मन हा आधुनिक बेरा में मोबाइल के माध्यम ले ईमेल के माध्यम ले हमला अपन जवाब पठोए वो संगी मन हा हमार ईमेल आईडी लिख लो youtth9@gmail.com। और सब्जेक्ट कोड है संगी हो जिला आप मन लिखे बर झन भुला हो y13। तो संगवारी हो क्रम सवाल जवाब
0: है तक दुर्गा। संगवारी मन हा जम्मो सवाल के सही सही जवाब पठोइस
1: सिरतोन।
0: अब संगवारी मन हा नवा सवाल ला घलो लिख डरिस,
1: लेकिन नीलेश
0: हाँ
1: जेन हिसाब से संगवारी मन हा सवाल के जवाब ला एकदम सही सही पठोथे
0: हाँ।
1: मुला ऐसे लागथे कि ज्ञान के अंजोर हा
0: धीरे धीरे बढ़त जावत है
1: सिरतोन।
0: जतेक आधुनिक समय आवत जात है लोगन हा आधुनिकता के बने प्रयोग करके अपन ज्ञान के गठरी ला बने बढ़ावा जावत है दुर्गा।
1: लेकिन संगवारी हो हमन देखथन कि कोनो भी सवाल हमला मिलथे त हमन ओकर जवाब बर हमन अपन अंतरात्मा ला नहीं ठिठोलन।
0: काबर
1: इस तो मैं तोला पूछत हूँ
0: हाँ, एकर जवाब मैं नहीं दे पाऊँ काबर
1: हमन कहाँ चल देथन
0: दार्शनिक वाले सवाल पूछे हस्ते और आज के समय ला देखबे ना दुर्गा तब बड़ अजब गजब हो गए है।
1: कैसे
0: बोला मैं बताऊं ये सुघ्घर अकन गीत के माध्यम ले। चलो,

0: संगियों अभी सुनत रहिन हमन सुघ्घर अकन माटी के गीत ला जिन ला अपन सुर ले सजाए रहिन हवे भरतलाल हरिंद्र औ साथी मन ह।
1: और सुने बर जाय रहिन हमर संगवारी मन ह दरचूरा ले ददुआ साहू, भूरी रेखा मोतीलाल साहू, देवरी भाटा पारा ले गनुला रजक के आर अश्वनी गणेश साहू मन ह, सिमगा ले लव कुश सेन, प्रहलाद आदित्य आशीष प्रकाश सेन मन ह, भाटापारा दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झाविंद्र कुमार वर्मा, भाटापारा ले दान सिंह रावत, दानू पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत मन ह। निलेश, काली में हा बाजार गे रहे हो तो एक ठन नवा कूलर बिसाए बर
0: गे रहे।
1: हाँ
0: भाई, तो गर्मी के दिन चलत है तो कूलर बिसाबे का ऊ काला बिसाबे
1: फिर
0: हाँ
1: बने सरी नहीं मिलिस मोला।
0: हाँ
1: तमे नहीं ले हूँ।
0: काबर नहीं ले हस, बने जांचे पर के नहीं रहे इसका।
1: बने देखे हो फिर बने कंपनी वाले कूलर हा घलो निचट दिखत रहिस, जानो माने नकली आए तैसे।
0: अच्छा,
1: सरकार के बनाए मानक असन नहीं लागत रहिस मोला।
0: हाँ तब तो बने करेस दुर्गा भाई। वैसे भी अब गर्मी के दिन तो कतेक दिन बाचे है, नहीं लेते हूँ, ठीक है करे हस।
1: अच्छा
0: फिर दुर्गा, ऐसने ना मानक ल देख के कहीं जिनिस ला बिसाना चाहिए,
1: तो
0: जेखर ले संबंधित आज विश्व प्रत्यायन दिवस ल घलो मनाए जावत है। एक ग्राहक होए के नाते तो हमने ये चीज के जानकारी होना चाहिए कैसे।
1: सिरतन संगी फिर निलेश, हमार गोट बाट तो होवत रही, आज तो ज्ञान के गोट करे के दिन घलो आए, फिर आओ सुनथन मनोरंजन खातिर संगवारी मल्ला सुनाबो ये सुघरकन माटी के गीत ला।

0: संगीओ अभी सुनत रहने सुग्घर अकन माटी के गीत ला जिनला अपन सुर ले सजाए रहीन हवे गौकरण सिंह लोधी और साथी मन ह।
1: और सुने बर चाहे रहीन हमार संगवारी मन ह शिक्षक नगर दुर्ग रे राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा मन ह, शीतला नगर दुर्ग ले शिव कुमार चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, बाद बेमेतरा ले भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, भगवान सिंह राजपूत, राजपाल गजभिये, डोंगरगांव ले राधिका गजभिये, अनिष्का तन्मय गजभिये।
0: संगवारी हो हेलो युवाणी ले संबंधित एक ठन सूचना हवे एला सुनाओ। हेलो युवाणी जेखर प्रसारण महीना के दूसरैया अउ चौथा सोमवार के होते तेन ह अब दूसर अउ चौथा सोमवार के पहली पड़ैया बुधवार के होय करही रिकॉर्डिंग। ए रिकॉर्डिंग के बेरा ह उही आए दिन मा 11 ले 11:30 बजे के बीच। अब ए अनुसार अवैया हेलो युवाणी के रिकॉर्डिंग ह अब बुधवार 17 जून के होही। त दुर्गा अब देखना संगवारी मन ले कतेक हमन ह गोड़ बात करे हन, सवाल जवाब में संगवारी मन ह बने बने सवाल के जवाब ल भेजी से। अब सवाल ल घलो लिख डरे हवे। अब संगवारी मन ह

0: हमर कार्यक्रम के समीक्षा करही और पातीपट होही।
1: फिर ओकर ले पहली बता देता हूँ कि संगवारी मन ले बिदा लेके बेरा हो गए।
0: बेरा घलो होते तो जाए ले पहली ओकर ले पहली महू एक ठन चीज बता देता हूँ काली के कार्यक्रम ला। संगवारी हो काली के युवानी सजी हिंदी मा जेमा हो ही क्रम पत्र मिला और युगल गीत। यही गुड़ बात के संग अपन संगवारी नीलेश साहू
1: और दुर्गा साहू ला देवा बिदा। नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों बाद हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित NTA मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट UG पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही CBI ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर शाम के 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
4: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित।
1: हाँ, कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि सरकार ह पाछू 12 बछर में देश के युवा माइलोगिन और किसान मनला सशक्त बनाए में कोनो कसर नहीं छोड़े हे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई में होइस राज्य मंत्री परिषद की बैठक। चालू खरीफ सीजन ले कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप लदीन मंजूरी। प्रदेश में आज ले सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू। 1076 नंबर में आम लोगन मन कर सकत है शिकायत। और मौसम विभाग अवैया 2-3 दिन में प्रदेश के कुछ एक जगह में हवा गरेर के संग वर्षा होए के संभावना जता है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीने कि सरकार ह पाछू 12 बछर में देश के युवा माइलोगिन और किसान मनला सशक्त बनाए में कोनो कसर नहीं छोड़े है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहीने कि 140 करोड़ लोगन मन के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना ले प्रेरित होकर सरकार विश्वास विकास और जन कल्याण पर समर्पित है। प्रधानमंत्री कहीने कि ये अथक प्रयास के बाद आज देश बुनियादी ढांचा लेके डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच में एक नवा पहचान हासिल करे है। श्री मोदी ये बात ऊपर जोर दीन है कि विकसित भारत की अपन संकल्प ला साकार करे बर सरकार सेवा सुशासन और समृद्धि के ये पथ में सरलग आगू बढ़त रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बछर पूरा हुए में आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहर ले 15 मिनट के एक विशेष कार्यक्रम तैयार करेगे है। ये कार्यक्रम के प्रसारण आज रतिया 8:15 में करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र एके संग्रह रिले कर ही। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई में आज मंत्रालय में हुए राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कतकोन फैसला लेगीस। बैठक के बाद पत्रकार मन ले गोट बात करत उप मुख्यमंत्री अरुण साहू बताइन है कि मंत्री परिषद है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ला आईपीओ के माध्यम ले स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करे जाए की मंजूरी दे है। एखर ले आम नागरिक और निवेशक मनला कंपनी के विकास यात्रा में भागीदारी बनाए के मौका मिलही और कंपनी के वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता ला नवा मजबूती मिलही। एक ठीन आने फैसला में मंत्री परिषद हा चालू खरीफ सीजन ले कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप ला मंजूरी दीन है। एखर तहत धान के जगह में आने खरीफ फसल लेवैया किसान और दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी और कपास के खेती करैया किसान मनला हरेक एकड़ पाछू 15,000 रुपया के मदद दे जाही। ये योजना के फायदा एकीकृत किसान पोर्टल एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार में दे जाही। उहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राही मल्ला चालू वित्तीय बछर में चना देवाए के घलो फैसला ले गए है। एकर संगे संग मंत्री परिषद हा योग विषयला समाज कल्याण विभाग ले हटा के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए के प्रस्ताव ला मंजूरी दे है। एकर संग प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के क्रियान्वयन पर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट के सहमति केंद्र सरकार ला भेजे के अनुमति दे है। ये फैसला ले रायपुर दुर्ग भिलाई बिलासपुर कोरबा में मंजूर हुए 240 इलेक्ट्रिक बस के संचालन के रद्दा खुली। मंत्री परिषद हा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ला आपसी मंजूरी ले भूमि खरीदे ऊपर दे जावत मुद्रांक शुल्क छूट के बेरा ला 31 मार्च 2028 तक

0: बढ़ाए के फैसला ले हे। उन्हें छत्तीसगढ़ खनिज नियम में संशोधन ला मंजूरी दे गे हे। प्रदेश में आज ले सीएम हेल्पलाइन 1076 सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई हां मंत्रालय ले ये सेवा के शुभारंभ करीन। ये मौका मोमन कहिने कि अब लोगन मन ला अपन शिकायत सुझाव और समस्या ला टोल फ्री नंबर 1076 मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम ले सीधा दर्ज करा सकी। हर एक शिकायतकर्ता ला यूनिक आईडी दे जाही जेखर ले उनका ट्रैकिंग मॉनिटरिंग और बेरा में निराकरण हो सके। श्री शाह कहिने कि ये व्यवस्था में समाधान ले असंतुष्ट होए में शिकायत के फेर ले समीक्षा के प्रावधान करेगी ही। संगे संग प्रदेश के विकास ले जुड़े विशेष सुझाव घलो नागरिक मन सीधा सरकार तक पहुंचा सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हां सेना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मी मल्ला वीरता पुरस्कार दिन। ये पुरस्कार काली राष्ट्रपति भवन में राखे गए रक्षा अलंकरण समारोह में दे गिस। छत्तीसगढ़ के 3 जिन लोगन ला राष्ट्रपति हां शौर्य चक्र ले सम्मानित करे ही। ये मां असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के संगे संग छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बहादुरी और काबिलियत के परिचय देवैया पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कहने की ये है पूरा प्रदेश भर गौरव के बात आए। आज पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि माँ ओमल्ला श्रद्धांजलि अर्पित करत है। ये मौका माँ उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओमल्ला श्रद्धांजलि अर्पित करें। सोशल मीडिया पोस्ट माँ श्री शाह कहने कि भगवान बिरसा मुंडा हा आदिवासी समाज ला उखर अधिकार और विरासत के रक्षा बर एक करीन और जल जंगल जमीन के संरक्षण जन आंदोलन के रूप दिन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ला आज 10 बछर पूरा हो गए है। ये मौका मा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है कहने कि जम्मू शिशु मल्ला गर्भावस्था के दौरान हरेक चरण मा सुरक्षित और स्वस्थ देखभाल के अधिकार हवे। सोशल मीडिया पोस्ट मा मन कहने कि पाछू एक दशक मा सरकार है लाखों गर्भवती माई लोगिन मल्ला बेरा बेरा मा स्वास्थ्य जांच विशेषज्ञ परामर्श और सुघर मातृ स्वास्थ्य सेवा देवाए के सुरक्षित मातृत्व ला एक जन आंदोलन बना दे है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हा काली देश भर में 100 औद्योगिक पार्क के विकास में तेजी लाने पर पोर्टल भव्य के शुभारंभ करीन। नई दिल्ली में श्री गोयल हा कहने कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के विकास में मदद करही। उमन कहने कि औद्योगिक तंत्र ला विकसित करे के संगे संग पूरा भारत में बड़ पैमाना में निवेश के माध्यम ले बड़े स्तर में रोजगार सृजन ला बढ़ावा दे बर भव्य योजना शुरू करेगी है। भव्य योजना के अंतर्गत आने आने आकार के 100 औद्योगिक पार्क बनाए जाही। अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस के मौका में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल डहर ले 6 ले 12 जून तक आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जावत है। यही कड़ी में आज रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद की अगुवाई में वॉकथन के आयोजन करेगी। ये वॉकथन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय शुरू होके वापिस कार्यालय परिसर में सिराइस। एमा अपर मंडल रेल प्रबंधक के संगे संग मंडल के आने आने अधिकारी और स्काउट गाइड के लयिका मन शामिल होइन। ए दौरान स्काउट गाइड के लयिका मन हा खमतराई फाटक मा नुक्कड़ नाटक के माध्यम ले लोगन मन ला जागरूक करिन। महासमुंद जिला के बसना पुलिस हा धान खरीदी मा करीबन 4.5 करोड़ रुपया के गबन के मामला मा लंबा बेरा ले फरार 2 जिन आरोपी मला गिरफ्तार करे है। पुलिस के मुताबिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा में बछर 2020-21 के दौरान 17,210 क्विंटल ले ज्यादा धान के

0: हेराफेरी करेगी रहीस। तकनीकी साक्ष्य के आधार में ओबेरा के व्यवस्थापक कन्हई सेठ और सेल्समैन राजकुमार पटेल गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेज दे गए हैं। खबर के मुताबिक ये मामला में दो जिन आरोपी की गिरफ्तारी पहली से करेगी है। मौसम विभाग के मुताबिक अवैया दो तीन दिन में मानसून है छत्तीसगढ़ में कुछ एक जगह में पहुंच सकत है। एक असर ले अवैया पांच दिन में प्रदेश के कुछ एक जगह में गरज चमक के संग हवा गरेर और वर्षा होने की संभावना है। रायपुर जिला में पाछू रतिया तेज वर्षा ले तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आए है। मौसम विभाग एला प्री मानसून के वर्षा बताए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कही ने कि सरकार है पाछू 12 बच्छर में देश के युवा माइलोगिन और किसान मल्ला सशक्त बनाए में कोनो कसर नहीं छोड़े है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई में हुई इस राज्य मंत्री परिषद की बैठक। चालू खरीफ सीजन ले कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप ला दिन मंजूरी। प्रदेश में आज ले सीएम हेल्पलाइन की सेवा शुरू। 1076 नंबर में आम लोगन मन कर सकत है शिकायत। और मौसम विभाग है या दो तीन दिन में प्रदेश के कुछ एक जगह में हवा गरेर के संग वर्षा होने की संभावना जताई है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूरभाष द्वारा कुवैत आमीर इत्यनेन सह पश्चिमेशियायाः विकसितां सुरक्षा स्थितिं चर्चितवान्। भारतं संयुक्त राष्ट्र संघे पाकिस्तानं निन्दयन् तं द्वेष उद्योगेति अवोचत्। खाद्य सुरक्षया सह कृषकाणां सशक्तीकरण विषये केन्द्रितस्य पञ्चदिवसीयस्य ब्रिक्स कृषि मन्त्रिणां सम्मेलनम् इन्दौर नगरे आरभ्यते। सामरिक मार्ग परियोजनायाः जोजिला गह्वर मार्गः अन्तिमां सफलतां प्राप्नोत् येन कश्मीर उपत्यकया सह लद्दाखस्य च मध्ये सर्व ऋतु सम्पर्कः वास्तविकतया समीपे आगतः। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां सुरक्षासेनाभिः सह सञ्जातेषु संघर्षेषु 30 अधिकाः जनाः मृताः, प्रायः 200 जनाश्च व्रणिताः अभवन्। अपि च कर्णाटकस्य केरलस्य माही क्षेत्रस्य च उपरि अत्यधिकवृष्टेः सम्भावनामभिलक्ष्य भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीया सञ्चेतना निर्दिष्टा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्याप्राह्णे कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जाबीर अल सबाह इत्यनेन सार्धं दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। उभौ नेतारौ पश्चिमेशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिम् आलक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित तनावपूर्ण विषये गंभीरा चिन्ता प्रकटिता तथा च कुवैतस्य सार्वभौमिक प्रादेशिक अखण्डतां विरुध्य विहित आक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता। असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च पुनः स्थापनार्थं तनावं न्यूनीकर्तुं संवादं पारस्परिक सहभागितां च दृढयितुं पुनरापि आवाहनम् अकरोत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् विगत द्वादश वर्षेषु देशस्य यूनां महिलानां कृषकाणां च सशक्तीकरणे सर्वकारः किमपि न अत्यजतीति। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री मोदी अवदत् यत् 40 अधिकैकशतकोटि नागरिकाणाम् आशीर्वचोभिः राष्ट्रप्रथमस्य भावनया सह सर्वकारः विश्वासाय विकासाय जनकल्याणाय च समर्पितः अस्ति। एतेषाम् अथक प्रयासानां परिणामतः अद्य देशः वैश्विकस्तरे मूलसौकर्यात् आरभ्य डिजिटल क्रान्तीति पर्यन्तं नूतनं परिचयम् अवाप्नोतीति प्रधानमन्त्री अवोचत्। विकसित भारतस्य संकल्पं साधयितुं सर्वकारः सेवायाः सुशासनस्य समृद्धेः च मार्गे अविरामम् अग्रे गमिष्यतीति श्रीमोदी अधोरेखितवान्। मध्यप्रदेशस्य इन्दौर नगरे ब्रिक्स कृषि सम्मेलनं प्रारब्धम्। सम्मेलनेऽस्मिन् ब्राजील इण्डोनेशिया दक्षिण अफ्रीका संयुक्त अरब अमीरात अन्येभ्यः सदस्य राष्ट्रेभ्यः प्रतिनिधयः सहभागित्वं कुर्वन्ति। एकविंशति देशेभ्यः कृषिमन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः विशेषज्ञाश्च समाविष्टाः सन्ति। अद्य बहूनि सत्राणि अत्र समायोजितानि सन्ति यथा खाद्यसुरक्षा, कृषि नवोन्मेषः, पर्यावरणानुकूलकृषिः, कृषिवाणिज्यं, लघु कृषकाणां सशक्तीकरणम् इत्यादयः विषयाः अपि अत्र चर्चार्यन्ते। जोजिला सुरंग परियोजनया अद्य महत्वपूर्णः कीर्तिस्तम्भः अधिगतः। अनया सफलतया

0: प्यारे श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं। आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा नंबर लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। हम आज देखते हैं कि लोग, खास तौर पे माता पिता, आजकल एक बहुत ही गंभीर चिंता में होते हैं। जी हाँ, बच्चों को आज्ञाकारी कैसे बनाएं? ज्यादातर माँ बाप बस इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। और आज हम इसी गंभीर विषय पर अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं गोपी चंद जी का और परमहंस जी का बिहार से, जो हमारा प्रोग्राम लगातार सुनते हैं। आज का ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमको उन्होंने ही प्रोत्साहित किया है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज जी।
1: धन्यवाद प्रियंका, और सारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: सर, आज हम एक बहुत ही नाजुक विषय पर बात कर रहे हैं, जो कि हम ज्यादातर देखते हैं एक आम परेशानी बन चुकी है, हमारे बच्चों का रवैया। ज्यादातर बच्चे या तो बहुत गुस्सा करते हैं, या बात ही करना पसंद नहीं करते, या एकदम से अपने बड़ों को पलट कर जवाब दे देते हैं। और सर, कई बार बच्चे अनजाने में या जानबूझकर अपने माँ बाप को लोगों के सामने शर्मिंदा कर देते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रियंका। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, उनमें धीरे धीरे व्यवहारिक बदलाव भी आते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप से लड़ते झगड़ते हैं, उन्हें पलट कर जवाब देते हैं, उनका आदर नहीं करते। दरअसल जब तक ये बच्चे छोटे होते हैं, तब तक तो सबको प्यारे लगते हैं, पर जब ये बड़े हो जाते हैं, तब ये ऐसा करते हैं तो सबको बुरा लगता है।
0: जी हाँ सर, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, व्यवहारिक बदलाव। हम इसको क्या समझें और क्या और क्यों होते हैं ये व्यवहारिक बदलाव?
1: जी हाँ, व्यवहारिक बदलाव मतलब हमारे व्यवहार में बदलाव का आना। जैसे अभी हमने कहा कि बच्चे पलट कर जवाब देने लगते हैं, या बात करना पसंद नहीं करते, या बातों को नहीं सुनते, कहना नहीं मानते, ये व्यवहारिक बदलाव होते हैं और ये हमें बच्चों में नज़र आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनमें आने वाला हार्मोनल चेंज। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनमें चाहे वो लड़का हो या लड़की, कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। और हार्मोनल बदलाव की बात जब हम कर रहे हैं, तो ये एक तरह का द्रव होता है जो बच्चों के अंदर, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उम्र के हिसाब, उनमें उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक दशा है और इस प्राकृतिक रूप से होता है। जब ये बदलाव होने लगता है, बच्चों के अंगों में बदलाव होता है, उसे उनके शारीरिक संरचना जो है उसमें बदलाव आने लगता है, और उस बदलाव के कारण हम बच्चों में देखते हैं कि वो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बातों को टालना सीख जाते हैं, वो बातों को सुनना नहीं पसंद करते, या लोगों की

0: जब से बच्चा दुनिया में आता है तब से वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीते हैं, पर बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं तो सोचिए कि क्या उनके हृदय में बीतती होगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका, माँ बाप का दुख तो माँ बाप ही समझते हैं, माँ बाप का दिल इससे दुखता है, माँ बाप को इससे दर्द महसूस होता है अपने बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलाव को देख करके, और वो सोचते हैं कि ऐसा बदलाव क्यों मेरे बच्चे में आ रहा, मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी की, जब भी उन्होंने जो कुछ मांगा मैंने उन्हें दिया, फिर ये बदलाव बच्चे में क्यों आ रहा है, और ये सोच सोच कर माँ बाप परेशान होते हैं और वो तमाम तरह की पीड़ाओं से गुजरते हैं। बच्चों में ऐसे बदलावों के कारण ही वो ऐसे हो जाते हैं। हाँ, ये एक ज़रूर बड़ा कारण है, पर प्रियंका हमारे श्रोताओं एक बहुत बड़ा और कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे हम उन बच्चों की बात कर रहे थे जो 10-12 साल के हो जाते हैं या उससे लेकर के 18-19 साल के बच्चे हैं, उनमें ये बदलाव हम देखते हैं जो हार्मोनल चेंज की वजह से बदलाव आते हैं, उन बदलाव के कारण जो है उनकी प्रतिक्रिया जो होती है अपने पेरेंट्स के प्रति वो बड़ी डिफरेंट होती है, बिल्कुल बदली हुई होती है और माँ बाप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या हाथ उठाना, कहना ना मानना, और तब माँ बाप को ये सब बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं, और बाद में बच्चे बड़े होकर भी यही सब करने लगते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो हमको इन बातों का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, बच्चे की पहली पाठशाला माँ की गोद होती है, वहीं से वो सब कुछ सीखता है। इसलिए बच्चों में हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को में किस तरह के वैल्यूज़ को जो है हम इम्पार्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, जब बचपन में बच्चे गलती करके आते हैं तो हम उनको उनका पीठ थपथपा देते हैं, वो किसी को मार करके आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम इस तरीके से बच्चों को बढ़ावा देते हैं जब वो छोटे होते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बढ़ने लगते हैं और उन चूँकि उनको उनके छोटेपन में आपने उनको बढ़ावा दिया होता है और वो उससे प्रोत्साहित होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं हरकतों को वो करते हैं और तब वो प्रॉब्लम पैदा करता है, वो परिवार में प्रॉब्लम पैदा करता है, वो समाज में प्रॉब्लम पैदा करता है और एक बहुत ही बड़े दुख का कारण वो हो सकता है।
0: जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात की। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हमको उनको ना शब्द का अर्थ समझा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को ना शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बच्चों को बचपन से आज्ञाकारी बनाने के लिए नहीं शब्द का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती और माँ बाप अगर किसी चीज को मना करें तो वो नहीं मानते और जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि अगर किसी चीज के लिए ना बोला है तो उसका मतलब ना ही होता है, और ऐसे सबसे पहले बच्चा आज्ञा मानना सीखता है। याद रखिए दोस्तों, आप उनके माँ बाप हैं, वो आपके माँ बाप नहीं हैं। आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेंगे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने प्रियंका, बस हमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और गलती से हम इनमें ही लापरवाह हो जाते हैं। दोस्तों, बस इन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने बच्चों को आज्ञाकारी बना सकते हैं, जैसा कि प्रियंका जी आपको बता रही थी। आप एक अपने बच्चों को एक सभ्य बच्चा, अच्छा बच्चा बना सकते हैं। जी हाँ, जैसे बच्चों को सिर्फ प्यार लाड ही न करें, बचपन से जब से वो छोटे होते हैं तभी से प्यार के वक्त प्यार और गुस्से और सख्ती के वक्त सख्ती, जब हम ये संतुलन कायम रखते हैं तो सब कुछ आराम से चलने लगता है। यानी जब उन्हें डांटने की ज़रूरत हो तो डांटिए, जब प्यार करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं उन्हें प्यार दीजिए आप। तो आपको बैलेंस बना करके चलना होगा और न ही हर वक्त बच्चे को गुस्सा, डांट से ये सभी नहीं करना है। जी हाँ, ऐसा करने से बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि माँ अगर गुस्सा करती है तो पापा बच्चों की साइड ले लेते हैं, और कई बार माँ बाप दोनों अगर बच्चे को गुस्सा करते हैं तो बच्चे के दादा दादी या बुआ या चाचा, मतलब परिवार का कोई ना कोई बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, और बस यही एक बड़ा

0: कारण बन जाता है बच्चों के असभ्य होने का। इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब माँ डांट रही है तो बच्चे को पिता को या तो खामोश रहना चाहिए या फिर माँ के साथ मिल करके बच्चे को समझाना चाहिए।
1: जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। बस हम ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और ये गलतियाँ बाद में हमको भारी पड़ जाती हैं। पर दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो हम माता पिता को समझने की जरूरत है, पर कुछ बातें बच्चों को भी समझने की जरूरत है। दोस्तों, एक बार एक ईशान नाम का लड़का था। उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे, पर वो समझता था कि बस वो ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ना अपने माता पिता की इज्जत करता और ना उनका कहना मानता। उसके माता पिता भी जो भी उसको उपहार लाके देते थे वो सब कुछ व्यर्थ समझता था, किसी भी चीज की वो वैल्यू नहीं करता था। तो दोस्तों, उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ वही किया जो उसके माँ बाप ने उसको करने से मना किया था। जी हाँ, यहाँ तक कि ईशान ने विवाह भी वही किया जहाँ उसके माँ बाप ने उसे मना किया था, क्योंकि उसके अंदर जिद थी। पर दोस्तों, एक बार जिंदगी में वो वक्त आया जब वो पिता बना और वक्त ने करवट ली। जी हाँ, कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। ईशान की जिंदगी में वक्त आया कि जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था अब उसके साथ होने लगा था। अब ईशान को उसके बच्चों का रहन सहन, उनकी बातें, उनके शब्द और उनका उसको पलट कर जवाब देना, ये सब तीर की तरह चुभने लगा। उसको याद आने लगा कि कैसे उसने अपने माँ बाप के साथ व्यवहार किया था। दोस्तों, हम बच्चों को भी यही चीजें सीखना जरूरी है कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितना भी समझदार हो जाएं, कितना भी ज्ञान हमको हो, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। जी हाँ, याद रखिए, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमको जन्म दिया है। हम उनको बेइज्जत करके, उनको पलट कर जवाब देकर या उनका कहना ना माने तो दोस्तों, याद रखिए कि हमने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। हम सफल होकर भी जिंदगी में असफल हो गए हैं, ये समझ लीजिए। दोस्तों, जी हाँ, कई बार हम उम्र के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ सारे बच्चों से जो हमें सुन रहे हैं। हम जिंदगी के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हम भावनाओं के जाल में उलझे होते हैं। हाँ, उलझने होती हैं, तकलीफें होती हैं, गुस्सा होता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने माता पिता पे सारा गुस्सा निकाल दें। जी हाँ, एक बार माँ बाप को बोल कर देखिए, वो सब कुछ कर जाएंगे आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए। पर दोस्तों, आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने माता पिता को अपमानित मत कीजिएगा। जी हाँ, कभी भी अपने माता पिता को पलट कर जवाब नहीं दीजिए, उनका कहना माने, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि आप बहुत सफल हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं हैं। और साथ ही साथ जितने माता पिता हमें सुन रहे हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में अचानक कोई बदलाव आ रहा है, अचानक उसके व्यवहार में बदलाव है, तो आप अपने बच्चे को वक्त दीजिए। जी हाँ, आपको उनका दोस्त बनना होगा और वो आपको सब कुछ बता देंगे और फिर आप अपने बच्चे को वैसा ही जैसे वो पहले था वापस फिर से पालेंगे। दोस्तों, एक संत ने इस प्रकार कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। और कई बार हम ईश्वर के भक्त हो जाते हैं या ईश्वर को तो पाना चाहते हैं, लेकिन एक संत ने इस प्रकार भी कहा कि परमात्मा का या ईश्वर का पहला दर्शन हमें हमारे माँ बाप में होता है। So, दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार, अपने सुझाव और अपने परामर्श हमको भेज सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है, कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
2: हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में

0: दो बार प्रसारित किया जाता है, संध्या 6:50 पर हर मंगलवार और शुक्रवार। जी हाँ, संध्या 6:50 पर हर मंगलवार और शुक्रवार।
1: और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारा नमस्कार।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
9: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
10: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
11: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
10: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
11: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
10: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
11: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
9: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
12: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
13: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश में आज से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ। राज्य मंत्री परिषद ने चालू खरीफ सीजन से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को दी स्वीकृति। और राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास,

0: विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 15 मिनट अवधि का एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। प्रदेश में आज से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय से इस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब नागरिक अपनी शिकायतें, सुझाव और समस्याएं टोल फ्री नंबर 1076, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायतकर्ता को यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसके आवेदन की ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित हो सके। श्री साय ने कहा कि इस सेवा के माध्यम से लोग प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे।
1: आज छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को अपनी समस्याओं के निदान के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम और त्वरित समस्याओं का निदान हो, इसलिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आज जारी किए हैं। सवेरे से अभी तक 10 बजे से लेकर अभी तक 3,500 से ज्यादा समस्याएं यहां पर आ चुकी हैं, जिसको रजिस्टर्ड कर चुके हैं। हम पूरे प्रदेश की जनता को इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं।
0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में किसानों के साथ ही ऊर्जा, परिवहन, खनिज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। साथ ही चालू खरीफ सीजन से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा प्रदेश में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, योग विषय के प्रशासनिक पुनर्गठन और खनिज परिवहन व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने जैसे अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कृषक उन्नति योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा।
2: खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों एवं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
0: वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को चालू वित्तीय वर्ष में चना उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति दी है। इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाले पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीन प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त

0: पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि प्रत्येक शिशु को गर्भावस्था के हर चरण में सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक देखभाल का अधिकार है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने लाखों गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जाँच, विशेषज्ञ परामर्श और बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके सुरक्षित मातृत्व को एक जन आंदोलन बना दिया है। आज पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने धान खरीदी में करीब 4.5 करोड़ रुपए के गबन के मामले में लंबे समय से फरार दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा में वर्ष 2020-21 के दौरान 17,210 क्विंटल से अधिक धान की हेराफेरी की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और सेल्समैन राजकुमार पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 2 से 3 दिन में छत्तीसगढ़ में दस्तक दे देगा। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मानसून अगले 2-3 दिन में बस्तर पहुंच जाएगा।
1: प्रदेश में मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हल्की से लेके मध्यम रूप से मेघ गर्जन एक्टिविटी होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है आगामी 5 दिन तक भी रहने की संभावना है और मेघ गर्जन का गतिविधि 11 जून से बढ़ने की चांसेस है। ये मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा भी होने की चांसेस है 11 तारीख से। एंड मानसून का आगमन जो है बस्तर संभाग में आगामी 2 से 3 दिन में होने की पॉसिबिलिटी है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुकमा में विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा 6 से 12 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद के नेतृत्व में वॉकथन का आयोजन किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक विजय कुमार ने कल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल के 7 कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर दृष्टिबाधित टिकट परीक्षक रानी सोनवानी को यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। बलरामपुर जिले में कुंदी कला गांव के बांधपारा जंगल में आज हाथी के हमले में एक दंपति की मौत हो गई। यह घटना राजपुर वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। और गरियाबंद जिले के कुरुसकेरा गांव स्थित पैरी नदी में रेत के अवैध उत्खनन के मामले में खनिज विभाग की टीम ने 3 चैन माउंटेन मशीन और एक हाइवा को जब्त किया है। साथ ही खदान संचालक और मशीन मालिकों को नोटिस जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश में आज से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ। राज्य मंत्रिपरिषद ने चालू खरीफ सीजन से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को दी स्वीकृति। और राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराय पाली केंद्र है। एक सूचना सुनिए। आगामी शुक्रवार

12 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा फल उद्यान लगाने की तैयारी और उसका प्रबंधन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री कैलाश सिंह पैकरा, उप संचालक उद्यानिकी रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 12 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 में किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। हम हाजिर हैं लेकर चित्रपट संगीत।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में फिल्म यारा दिलदारा का गीत आप सुन रहे थे। गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत जतिन ललित का था। जमाना दीवाना इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए उदित नारायण और सपनावस्थी की आवाजों में, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत।

आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में फिल्म कल की आवाज़ का गीत आपको सुनवा रहे हैं। संगीत नदीम श्रवण का है, गीतकार है समीर।

चित्रपट संगीत में फिलहाल यहीं तक। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराई पाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 होने को हैं। प्रस्तुत है किसानों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम निर्मल भैया।
1: राम राम भूषण भाई, संगे संग कार्यक्रम सुनिया जम्मो संगवारी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम। आओ भैया, काय काम बुता चलेगा?
1: का काम बतावे भाई, देखो गर्मी तान के है अभी, है ना। फिर थोक थोक मौसम बदलते घलो। सबले बढ़िया बूता होवत है अभी हमार घर परिवार भर के मिलके, और आस पास पड़ोस वाला मन सब मिलके जतका आमा खाता ना मन ओकर गोहिल सकेला सर हमन।
0: और कैसे करूँ तन गोहिल
1: कैसे करूँ जी? अब चटनी डराए नहीं ओकर, तो ओला कैसे करना है? छोटे छोटे बॉल बना के, है ना, ओला हमन हाँ इकट्ठा करके रखथन अभी। जैसे पानी वानी गिरते शुरू होते हो, जे डहन में जाना है हमन ला, जैसे कोनो गांव डहन जाथन तो जे जगह खाली जगह दिखते दो चार ठन ला फेंक दे भी करा, जाग गए बढ़िया, नहीं जाग गए तब बढ़िया, जाग गए तब फिर कहा है भाई ओकर पेड़ बन जाए। ट्रेन में चढ़े है तो जगह देख के जहाँ कहूँ जंगल वंगल कुछ झाड़ झड़ू खा वाला जगह दिखी सोला, खिड़की डहन दो चार ठन बीजल फेंक दे, वो जाग जैसे गंगा अमली का बड़कन बीजा सकेल के रखे नमन कहूँ कर बिछित दे, वो जागते बढ़िया और फरते लैके मन खाते छिया घलो होते छिड़े चुरगुन में घलो फायदा है। कुल मिला देखे जाए तो हर एक आदमी कम से कम ज्यादा नहीं तो एक आध किलो बीजहाल भी सकेल ली, और अपन आवाज जवाब कहूँ कर गड़िया आग बुरी बो दी। तो भाई फोकर ने बिना मेहनत करे, पानी कांजिंग डायरेक्ट जरूरत नहीं है ना रूंधे की जरूरत नहीं है, कहूँ झाड़ी वाड़ी का रहे तो अपने अपन जाग जाते जी बढ़िया।
0: देख भैया, यह है ना जिनते सोचे हस और जिनते करत हस और कोनो गलत नहीं है, और मौसम के हिसाब ले। देख वर्षा के जो दिन है ना इमे देखे होबे कैसनो जैसे बीजा जैसे पहली ते तो फेंके की बात करे गोही सकेल के पेड़ ले गोही गिरे रहते तो हम देखथन बरसा में बगीचा डहर घूमे जाथन ना तो जाम जे रहते।
1: तो हमन तो स्कूल में जब पढ़त है ना तब पौधा कहाँ लान घुरुआ में जा गया, घुरुआ घुरुआ खोजन हमन टमाटर के थरहा गलो घुरुआ से मिले हमन ला, आनी पानी पेड़ पौधा घुरुआ से मिल गया, जतका भी खान पियन तेल हमने झुआ में भर के घुरुआ में फेंक के आज और वहाँ बढ़िया खाद मिले वाला और अच्छा जागे और साय साय बाढ़े घलो तो उसने मन लाल लाख लगाओ हमन। तो ये बढ़िया तरीका रही से प्राकृतिक रूप से जागे बढ़िया और बोला हमारा लाख लगाना। अब देखो पानी बरसात के दिन आने वाला है, बारी बखरी साफ सफाई होगी होगी, कतको झन मन तो जगह कर पानी साधन मन लगाते बारी बखरी में, और अक्तिज के दिन सेमिनार वो आ गए भाई और बड़े बड़े हो गए जी, है ना, नार धरे शुरू हो गए। तो इसने कतको झन हमन किसान भाई मन बोए हो ही नार बिहार वाला, तो देखो बताते जो एक्सपर्ट है मन कि जब अब कोई नार वाला पौधा लगाए हो घर में, है ना, थरहा लगाए

0: झिल्ली में या कोनो छोटे छोटे गमला सन में या कोनो भी प्रकार के बोरी में घलो माटी भर के चाहिए हम लगा देते लोगों ने,
1: लगा देते
0: जैसे दो पत्ती होते तो हम हारमोन डाले लागते है ना।
1: का हारमोन?
0: और हारमोन जो है ना अभी हम सुनबो वाला
1: अच्छा।
0: आज के हमारे कार्यक्रम में किसान भाई मन पूछे है का हारमोन की तो बताए होला तो थो कि नीला धीरज रख तो वो हारमोन ला डालवे ना तो ओकर में मादा फूल के संख्या ज्यादा आते
1: अच्छा।
0: और मादा फूल के संख्या ज्यादा आते तो फलन ज्यादा लगते तो अतकी कहूँ तकनीकी बात ला हम जान लेन कि भाई हम जैसे हमन कुम्हरा नान लगाएं हमारे यहाँ और फूले फूल बस दिखाते फरवर एक ठन नहीं रखिया नान लगाएं फूले फूल बस दिखते फरे घलो नहीं। अब हम कहा था भैया वो थे तेकर मन के दब्बड़ फरते बारी वाला मन के हमार काबर नहीं फरे उसने लट लट ले आई हथका नार फैलीस हथका नार फैलीस लेकिन फरबे नहीं करे तो कारण हुई है कि हमन एक कनी बार चूक जतन तो
1: वो देश गहूं चल देश कहूं वाला बात नहीं है वो है तो कम से कम उकर ध्यान घलो रख।
0: और पहली ना भूषण भाई फरे घलो अब्बर के लटलट ले तो एक ठन बात ये है कि अब काबर नहीं फले तो सही मायने में देखे जाए तो जो हमन लगाथन बीज है ना वो में केवल ऐसे बीज लग जैसे कभी कभी का है गर्मी दिन में हमन कुम्हरा लेके लाएन और कुम्हरा खाड़े बीजा ला रख देते हैं संभाल के और वही बरसात में बो देते हैं तो भाई जेन बीज हा गर्मी बर अच्छा तैयार करेगे है वो बरसात में नहीं फरे भाई है ना। और जिन बरसात की बीज है वो गर्मी में नहीं फरे तो हम किसान भाई मतलब ये चाहिए कि भाई थोकिन पैसा बचा के चक्कर में ऐसे बीज ला झन बो देन जिन वो समय को नो है काबर अब सबो मौसम में साग भाजी होवा थे तो हिसाब से कृषि वैज्ञानिक मन है अनुसंधान करके नाना प्रकार के प्रयास करके उन बीज तैयार करते यहाँ कौन सी फसल कब बोबे तब वो कब अच्छा फला नहीं से करके एक आध उठन फल जैसे अलग बात है बेचारा नार जागे छूट के जाबेज करी नहीं जाए नहीं है तो भाजी खाबे तब वो बनी कुम्हरा हम तो भाजी बर बोथन कुम्हरा ला फल फल मत फले लेकिन फल के तो अच्छा बात है तो कहूँ ऐसे हैं तो हमला थोकिन ध्यान देने लगी कि कौन मौसम के बीज काय कैसे करके तभी वो जाके वहाँ अच्छा फलन हो सकते। और दूसरा बात का है कि देख भूषण भाई पेड़ पौधा लगाना भी बहुत जरूरी हो गए है। चिड़ी चुरगुन बर पानी की व्यवस्था करना जरूरी हो गए है। पशु पक्षी मन बर घलो आते घर के आसपास तो ओकरो मन बर पानी की व्यवस्था करना जरूरी हो गए। कुल मिला के देखे जाए तो मानव जीवन धरे हन और किसान हन तो हमारा सबके चिंता करना बहुत जरूरी है।
1: आओ कहते नहीं भैया अब हमारे घर सियान मन कहे कि हमन जो धान उगाथन तक का हो ब्यारा रखेल जावन हमारे घर बाबा काय कहे चिरई चुरगुन मन खाए गाय मन ला हमन राखी बर जावन कि मत खावे कहके तो मन चिरई मन ला खान ना तो मन ला मारन हमन ना हमारे घर जो बाबा है तो बाबा ते चिल्लाए अरे हम किसान मन के जम्मो बर कमाए रहे थे रे ऐसे कहके तो तू जो बात कहते हैं बिल्कुल पोट बात आए।
0: और एक ठन बात वो है देख अभी ना जैसे नार बिहार बोना है मल्ला तो माचा बना के तैयारी कर लेना चाहिए मल्ला काहे लकड़ी खेत डहन जाथन दू ढन ढेकरा धर के आगे कहूँ कर तीर में धाग रख दे रहा है ना कोनो दहिंगला उहिंगला जैसे काड़ी वाला काटे की चीज वाला रख दे रहा हम पहले काट के और जैसे ही अपन नार्थ होकर लमियाई चालू हुई तहन बने माचा बना दीजिए तहन वो अमरऊ अमरऊ बना ज्यादा उन्मत बना ताकि दौड़ भी बने
1: फले
0: और ये सब बात लाना अपन अपन घर के लड़के वाला सिखाना भी जरूरी है। स्कूल के भरोसा झर रहा काबर स्कूल में सब चीज सिखा नहीं जाए पौधा जागत तहूला कैसे पत्ता बना तेन ला हर एक चीज लगो छोटे छोटे लड़का सिखान तो अच्छा रही। देखे भूषण भाई गोट बात तो हवेज कर ही पहले संदेश होकर बात फिर आगू बढ़ो।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: भैया जैसे कहा नहीं अभी नार के बारे में, सेमी नार, कुमड़ा नार, तो अभी घर हमारे गांव में देखते हो तो घर बनाया है ना, तो बारी बकरी पर जगह नहीं बाचे
4: है,
3: नहीं
4: सही बात है।
3: ऐसे घलो कर सकते हैं गमला के माध्यम से घलो जो नृत्य के है, नार हो गए जैसे कुंबड़ा नार, सेमी नार, तेला हम गमला के माध्यम ले भी घर के जो छानी पर हो में चगा के एक हम लाभ ले सकते,
4: छत में हमन हाँ घलो बो सकते
3: हो सकते
4: हाँ, कतको झन मन बताते हो हिसाब से। और ये सब बात तो ठीक है, लेकिन एक ठन और बात है, जैसे नार एक कने बड़े हो ना तहन ओकर फुनगिल काटे लागते चुकले, ताकि ओकर सबो डहन डारा खांदा फेंके और फैल ही तभी ज्यादा फरन होते, तो मोह नहीं करना है।

0: भूषण भाई,
1: हाँ भैया,
0: हमारे अपना कन बात गोठिया है,
1: हाँ।
0: है ना, तो यहू के इसके बारी बकरी कम होगा, छत में लगाना है कि
1: हाँ।
0: फिर एक ठन बात और है,
1: हाँ।
0: अभी थरहा लगे शुरू हुए है खेत खाट डार है ना, तो मेड़ लग लो थोकिन चौड़ा करके हम उनमें भी लगा सकते हैं जी, है ना,
1: यहू बने बात
0: हाँ,
1: है,
0: जिससे कि राहर बोथन हम तिल्ली बोबेस कर थन थोकिन एक कनी ज़्यादा नहीं, जब अपन उपयोग के लिए एक कनी चौड़ा कर देन मेड़ला आजू बाजू माटिल चढ़ा देन, तो ओमे थोकिन अमारी भाजी बो सकथन, करमत्ता भाजी, चेज भाजी हम बो सकथन अपन खाए बुर्दन कम से कम, है ना। और दूसर का है कि बड़े पैमाना में जिन्हा करा थे खेती किसानी भाई, वो मतलब तो नर्सरी तैयार करके ही अपन खेत में सब्जी के खेती करना चाहिए। और जैसे कि हमारे संगवारी मतलब पता है कि आज हरे मंगलवार, और आज हमारे संगवारी मन हाँ बढ़िया सवाल पूछे है ओकर जवाब सुने के भी समय है, तो भाई शुरू करथन फोन इन कार्यक्रम। हेलो किसान वाणी, आज के विषय है क्या है भूषण?
1: आज के जो विषय है वर्षाकालीन जो सब्जी है ओकर नर्सरी कैसे लगावन, कैसे ओकर प्रबंध करने का, और बतैया हमारे जो विशेषज्ञ है डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान की कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा जिला दुर्ग ले, और ये कार्यक्रम के संचालन करते हमारे निर्मल साहू भैया जी, और प्रस्तुत करते हैं शशि प्रकाश पांडे।

0: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। बरसात के समय में आनी बानी के साग सब्जी की खेती नर्सरी के माध्यम ले करे जाते। स्वस्थ और गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करे बर उचित नर्सरी प्रबंधन जरूरी है। नर्सरी बर बीज चयन, जमीन के तैयारी, सिंचाई, खाद पानी प्रबंधन और कीड़ा बीमारी नियंत्रण के विशेष महत्ता होते। कहे के मतलब है कि बरसात के मौसम में सब्जी की खेती बर नर्सरी तैयार करे के सही विधि जानना जरूरी है। आज के हेलो किसान वाणी के विषय है वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी। और हमर संग है विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी, कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा, जिला दुर्ग। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपके स्टूडियो में। राम राम,
1: जय राम भैया।
0: तो पहली सवाल तो आपसे ही है कि नर्सरी हम काला कथन और बरसात के समय में नर्सरी लगाए के उचित समय का है?
1: नर्सरी एक ऐसे जगह रहते जेमा हमन ह रोपाई के पहली थरहा तैयार करथन और एकर बरसात के दिन में लगाए के सही समय हवे जून जुलाई, जिन टमाटर, बैगन, मिर्च और जिन कद्दू वर्गी फसल है ओकर, और जिन फूलगोभी और पत्ता गोभी है एकर लगाए के समय है जुलाई अगस्त। ये समय आप मन लगाहु तो आप मन ला ज्यादा अच्छा एकर रिजल्ट मिले।
0: हेलो किसान वाणी।
2: हेलो किसान वाणी, राम राम भैया।
0: राम राम भैया, जय जोहार। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
2: मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू बोला था।
0: श्रवण कुमार साहू जी के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है भैया। बताओ आज के विषय के अनुसार आपके क्या प्रश्न है?
2: डॉक्टर साहब राम राम।
1: जय राम भैया साहू जी।
2: अब हम सब्जी लगाना चाहथन, जैसे भिंडी है, भट्टा है, ये सब्जी मन लगाना चाहथन, तो एक बार हम का करे देखी, उन्नत बीज है, खातू है, पानी है, एकर बारे में हमला विस्तार पूर्वक जानकारी देते बढ़िया
1: रहती। साहू जी, अभी तो विस्तार पूर्वक बताए के तो अभी ये समय नहीं है। एकर बार आप मन आपके कवर्धा में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ आप मन संपर्क करो, वहाँ

0: कि बरसात में खेती के एक सब्जी की तैयारी, तो
1: हाँ
0: टमाटर लगाना है और भाटा लगाना है, तो खाल ये जमीन का कैसे तैयारी करे जाए तेला वही पूछे बोल लगा है भैया।
1: तो हमारे बीच डॉक्टर कमल नारायण वर्मा जी है, आपके सवाल के जवाब देवा थे।
2: हाँ
0: और
2: चंद्रवंशी जी नमस्कार।
0: नमस्कार भैया,
2: आप मन है
0: नमस्कार।
2: कहा था कि टमाटर और बैगन आप मन लगाना
0: हाँ
2: है ना। तो टमाटर और बैगन लगाए बर दो तरीका हवे। पहली ये है कि आप मन है ड्रिप में लगाता हो कि बिना ड्रिप के लगाता हो।
0: हमारे से जोत की नाली बना के लगा था
2: जोत के नाली
0: भैया,
2: बाहर
0: अपन
2: लगाता
0: देहाती
2: हूँ।
0: अब किसानी।
2: हाँ तो वहाँ फिर आप मल्ला नाली के जिन ऊपर ऊपर जिन मादा है ओला कम से कम 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक के रखना है। मतलब
0: हाँ भैया,
2: है ना वो तब वो क्या है, अभी बरसात के दिन में जिन पानी गिरी तो वो भरना नहीं चाहिए।
0: हाँ
2: दूसरा एक नर्सरी तैयार करे बार अगर आप मन हाइब्रिड लगावा थो हो मान लो तो ओला प्रोटरे में तैयार करो नर्सरी ला। और अगर मान लो जब आप मन देसी किस्म या उन्नतशील किस्म लगावा थो हो जिन मुक्त परागण वाली किस्म हवे तो ओकर बार आप मन हाँ अपन घर में ही नर्सरी तैयार कर सकत हो। चूंकि अभी बरसात के सीजन आने वाला है ता आप मन हाँ जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर बनाओ नर्सरी ला। ओकर चौड़ाई करीब करीब 1 मीटर रखो, लंबाई आप मन अपन आवश्यकता अनुसार रख लो। मिट्टी ला अच्छा से भुरभुरा कर लेना है। भुरभुरा करे के बाद उमा अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद मिला लेना है। 1 वर्ग मीटर में करीब करीब 10 किलो गोबर खाद और उमा 50 ग्राम ट्रैकोडर्मा विरिडी। तो ये ट्रैकोडर्मा विरिडी मिला इस का हुई जिन बीमारी है वो बीमारी आपके फसल में नहीं आवे। दूसरा जब आप लगा लू अभी देखा था अभी कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तापक्रम, 43-44 तक
0: भैया,
2: चला थे तो उमा तो झुलस जाए आपके पौधा। तो ओकर से बचाव करे बार आप मन ला जिन शेड नेट आते ना वो शेड नेट ला ऊपर से छा लेना है। ऊपर से दोनों साइड से नहीं करना है, ऊपर से बस एक छा लेना है। तो जिन सूर्य के जिन ताप है वो कम से कम 50% रुक जाए ही कम हो जाए। ठीक है चंद्रवंशी जी।
0: वो बैगन के लिए भैया।
2: बैगन के लिए भी वही सेम जैसे टमाटर बरे वही सेम बैगन बरे।
0: अच्छा,
2: हाँ
0: हाँ
2: हाँ
0: ठीक
2: और
0: है।
2: नर्सरी के करीब 25 से 30 दिन में नर्सरी जिन है पौधा है वो तैयार हो जाए आपके रोपण बर।
0: ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: हेलो किसान वाणी।
0: हाँ भैया मुरमाया भरे, राम राम।
1: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
0: हाँ मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा नारायण प्रसाद वर्मा बोला था, और निर्मल भैया।
1: नारायण प्रसाद वर्मा जी के हार्दिक अभिनंदन है। बताओ आज के विषय के अनुसार आप का प्रश्न करना चाहते हो?
0: भैया जैसे अभी हमने वर्षा कालीन सब्जी में गोभी वर्गी और कद्दू वर्गी सब्जी लगाना चाहा था हम,
1: हाँ
0: तो एक नर्सरी प्रबंधन और एक लगाए के जिन विधि है यही जम्मो बात ला पूछे बार मैं फोन लगाया हूँ भैया। वर्मा डॉक्टर भैया मेरा,
1: जी, तो वर्मा जी आपके सवाल के जवाब तुरते देवा थे।
0: हाँ वर्मा डॉक्टर भैया, राम राम।
2: जय राम भैया, जय राम गा। ये जिन आप मन हाँ जैसे कभी फूलगोभी पत्ता गोभी के नर्सरी तैयार के बात करत हो तो एकर बार
0: हाँ
2: अभी
0: भैया,
2: थोड़ा समय है, जुलाई अगस्त में एक नर्सरी तैयार करूँ।
0: हाँ
2: और एकर बार अगेती किस्म ला लगाए लगी आप मन हाँ, जब भी बाजार
0: हाँ
2: में
0: हाँ
2: जाऊँ तो
0: भैया,
2: अगेती किस्म लगाऊ
0: हाँ
2: जिन पत्ता गोभी और फूल गोभी। विशेषकर फूल गोभी में क्या समस्या आते, अगर जिन पछेती किस्म है ओला हमन पहली लगा देबो तो क्या हुई छिद्रे छिद्रे वाला जिन गोभी आते वैसने
0: हाँ हाँ
2: पछेती,
0: भैया,
2: हाँ पछेती किस्म ला अगर हमन जल्दी लगा देते हैं तो ये समस्या आते। तो आप मतलब विशेष ध्यान दे लगी कि जब बाजार जाओ तो जिन अगेती किस्म है वही किस्म ला ही आप ला लगाना है पत्ता गोभी और फूल गोभी के। तो जुलाई अगस्त में आपने एक नर्सरी तैयार कर लो और करीब
0: हाँ
2: करीब
0: भैया।
2: 25 से 30 दिन में ये रोपाई के लायक हो जाते हैं।
0: और जैसे भैया अभी हम नहीं लगाबो ने कुम्हड़ा है, तरोई है और लौकी है, ये लगाबुन भैया तो एकर लिए फिर कैसे करी।
2: हाँ अगर आप मन हाँ जिन कद्दू वर्गी फसल है ओला अगर लगाना चाहते हो तो एकर नर्सरी आप मन प्रोटरे में तैयार कर लो है ना। प्रोटरे जानते हो ना।
0: हाँ भैया,
2: हाँ
0: जो
2: हाँ
0: प्लास्टिक वाला,
2: बिल्कुल बिल्कुल प्लास्टिक के ट्रे में एकर नर्सरी तैयार कर लो।
0: हाँ।
2: तो ये जिन प्रोटरे है उमा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट ला मिला के डालना रहते। कोकोपीट 70% और 30% वर्मी कंपोस्ट एला अच्छा से
0: हाँ
2: मिला लेना है भुरभुरा करके। अब मिलाए के बाद एमा एक एक बीज डालना है एक एक खंड में।
0: हाँ हाँ जी,
2: ठीक
0: हाँ हाँ
2: और जैसे ही आपके दो
0: हाँ
2: से चार पत्ती अवस्था में आई, शुरू के एकदम जन शुरू सूरज के पत्ती आते ना दो पत्ती
0: हाँ भैया,
2: वो
0: हाँ
2: अवस्था में आई ना तो ओमा आप मल्ला इथरेल या GA3 ये दोनों
0: अच्छा
2: में से
0: अच्छा अच्छा
2: एक हार्मोन की स्प्रे करना है। अब ये निर्भर करिए कि
0: हाँ
2: आप मन काला लगावा था तो ये एक बार थोड़ा आप मल्ला सलाह ले लगी कृषि विज्ञान
0: हाँ
2: केंद्र स्थित हावे बेमेतरा में तो यहाँ
0: हाँ हाँ
2: जाके थोड़ा
0: भैया,
2: सा वो सलाह ले लूँ कि कौन से हार्मोन ला डालन हमने। तो ये हार्मोन डाले से काय हुई देखे हो जिन कद्दू वर्गीय फसल में नर फूल तो बहुत आते लेकिन
0: हाँ
2: मादा
0: हाँ
2: फूल
0: भैया,
2: की
0: हाँ
2: संख्या बहुत कम आते। तो
0: हाँ हाँ
2: ये जिन
0: हाँ
2: है हार्मोन है वो मादा फूल के संख्या बढ़ाए के काम करी।

0: अच्छा अच्छा
1: अभी
0: भैया,
1: एला आप मन शुरू के 2-4 पत्ती अवस्था में ही डालना है, बाद में डालू तो काम नहीं करे,
0: अच्छा अच्छा हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना। तो ये ला अपन विशेष ध्यान
0: हाँ जी
1: रखू, एक डोज मात्रा और कौन से हार्मोन डालना है, एक बार थोड़ा से आप मन कृषि विज्ञान केंद्र अपन संपर्क कर लू तो ज्यादा अच्छा रही। ठीक है वर्मा
0: ठीक
1: जी,
0: डॉक्टर भैया, हाँ ठीक भैया, बहुत सुंदर जानकारी देवा आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो किसान वाणी।
3: हाँ हेलो किसान वाणी,
2: राम राम भैया, जय जोहार। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: राम राम भैया, मैं तुलसीराम देशमुख, गांव चंगोरी, जिला जरूगली बोला था।
2: जी तो देशमुख जी के बहुत बहुत स्वागत है। बताओ आज के विषय के अनुसार आपके क्या प्रश्न है?
3: भैया प्रश्न ये है कि जैसे हमन है तो भाटा टमाटर या मिर्चा के घर तो नर्सरी डाल था ना ऑलरेडी,
2: हाँ,
3: हमन जैसे बेल वाले पौधा होते जैसे तुरई हो गए, लौकी है या कुमड़ा है, का एकरो हमन है पूर्व से नर्सरी तैयार करके कर पौधा रोपण करबो तो कर अच्छा उत्पादन मिली, का ये जानकारी चाहिए रही से।
2: बिल्कुल मिली और एक अच्छा जानकारी अपना देवा थे हमारे डॉक्टर साहब।
1: हाँ देशमुख जी नमस्कार।
3: नमस्कार नमस्कार,
1: हाँ जैसे आपन हाँ कहा था कि बेल वाली जिन कद्दू वर्ग की फसल है ओकर नर्सरी के बारे
3: हाँ
1: में,
3: जी जी
1: तो बिल्कुल एकर नर्सरी तैयार कर सकत हो आपन। हाँ एकर
3: जी
1: बार जिन प्रोट रे आते नर्सरी प्रोट रे जिन
3: हाँ हाँ
1: प्लास्टिक वाला ट्रे आते
3: जी
1: वो ट्रे में एकर नर्सरी तैयार करना है।
3: हाँ
1: एकर बार अभी एक किसान भाई हमारे पूछे रही से वो ओला अभी बताया हो वो में, हाँ
3: जी
1: विस्तृत आप मतलब वहाँ मिल जाए जानकारी।
3: जी डॉक्टर साहब जी धन्यवाद।
2: और कुछ प्रश्न हो पूछ सकत हो आप?
3: एक जानकारी लेना रही से,
2: हाँ
3: वर्षा कालीन जब हम भिंडी खेती करते महोदय जी, तो ग्रीष्मकालीन खेती के अपेक्षा का उकर दूरी में या लाइन में कुछ कम ज्यादा करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, जानकारी चाहिए रही से।
1: वर्षा कालीन में दूरी ला बढ़ाए लगते, काबर ग्रीष्मकालीन में
3: हाँ
1: बढ़वार ठीक से नहीं हुए, छोटे रहते
3: जी जी
1: पौधा,
3: जी
1: लेकिन
3: हाँ
1: वर्षा
3: हाँ
1: काल में जिन भिंडी है वो अच्छा बढ़ते, तो दूरी ला आप
3: जी
1: मतलब
3: जी
1: बढ़ा लगी 60 सेंटीमीटर के आसपास एक दूरी रखू
3: जी ठीक
1: तो एकर से आप मतलब अच्छा फल मिली।
3: महोदय जी धन्यवाद।
2: आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हेलो किसान वाणी,
4: जयराम भैया,
2: जय राम भैया। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था गा?
4: मैं साहू जी है बोला से हूँ, मैं कुमार साहब गाँव भाटा मगलौर से
2: धमतरी जिला ले बोला था आप, आपके स्वागत है भैया। बताओ आज के विषय के अनुसार कौन से प्रश्न पूछना चाहता?
4: डॉक्टर साहब नमस्कार का।
1: नमस्कार भैया।
4: अभी नर्सरी तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकन, और कब तक कर सकते हैं, अगर बारे में जानकारी देते हो साहब थोड़ा।
1: अभी जिन सब्जी वाला फसल है विशेषकर
3: जी
1: टमाटर बैगन मिर्च, एकर थरहा आप मतलब जून जुलाई में तैयार कर लेना है। और जिन फूलगोभी है पत्ता गोभी है एला आप मतलब जुलाई अगस्त में एकर नर्सरी तैयार करना है। एकर साथ साथ जिन कद्दू वर्गीय फसल है जमा आते आप मन के खीरा लौकी ढोड़का तुरई कद्दू, एकर भी नर्सरी आप मन जून जुलाई में तैयार कर सकते हो। ठीक है निषाद जी,
3: जी सर, जानकारी के धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: धन्यवाद भैया।
2: हेलो किसान वाणी।
5: नमस्कार सर।
2: नमस्कार भैया, राम राम, जय जोहार। कौन बोला था, कहाँ
5: अरे
2: ले बोला
5: निर्मल
2: था?
5: भैया नमस्कार, मैं गांव बनबखेरा जिला राजनाथ गांव योगेश सारा बोला था भैया।
2: जी योगेश सारवा के कोरी कोरी स्वागत है भैया। बताओ आज के
5: जी
2: विषय
5: जी
2: के अनुसार आपके क्या समस्या है?
5: भैया जी, हमारे गांव देहात में कोला बारी के बड़ रहते, छोटे छोटे बाड़ी है ना,
2: हाँ,
5: और हमन किसान भाई मन गए छोटे अपन खाए पिए बर के साथ साथ, हमन ऐसे भी चाहतन कि हमारे कुछ व्यावसायिक उपयोग के लिए भी हम साग भाजी, जब जैसे 40 डिसमिल 50 डिसमिल के बियारा है तो
2: हाँ
5: ऐसे कोई सब्जी लगा सकथन ग्रीन में, सड़े गले की समस्या भी नहीं हो और उचित रेट के हमला बाजार में मिल जाए, थोड़ा से विस्तार से बताते भैया। हमारे टमाटर लेके उदीम सोचे भैया, हाँ ना, तो
2: तो
5: ग्रीष्म वर्षा कालीन सब्जी में टमाटर के और 12 महीना टमाटर के मांग बने रहते, तो टमाटर खेती करना भैया 40 डिसमिल की बखरी में
2: तो आपके सवाल के
5: थोड़े
2: जवाब
5: बाजार।
2: देवा थे हमार कमल नारायण वर्मा जी।
5: जी जी
1: योगेश भैया नमस्कार।
5: नमस्कार वर्मा जी नमस्कार।
1: आप मन टमाटर अभी लगाना चाहता हो
5: जी
1: तो
5: जी
1: बिल्कुल अभी जून जुलाई के मौसम हो ओकर थरहा तैयार करे पर अच्छा समय है।
5: जी जी
1: अभी आप मन पहले ओकर थरहा तैयार कर लो। थरहा तैयार करे में ध्यान दो कि जमीन से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर जेन है वो क्यारी ला बनाहूँ,
5: जी
1: और ओकर बाद जब रोपाई भी करूँ तो करीब करीब 2 से 3 फीट ऊपर मादा बनाहूँ।
5: जी
1: एकर से क्या है अभी बरसात के पानी है रुकी नहीं तब आपके टमाटर है बची।
5: जी जी
1: ड्रिप आवे भैया आप इनके पास?
5: ड्रिप की सिंचाई नहीं है सर, हमारे यहाँ बस छोटे से साधन
1: हाँ
5: है हमारे
1: हाँ
5: पास,
1: हाँ नहीं ठीक है
5: ड्रिप की सिंचाई नहीं
1: अभी
5: हो।
1: तो बरसात है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है पानी के, लेकिन
5: हाँ
1: अगर

0: हाँ दूसरा मौसम में भी लगाना चाहूँ ना, तो ड्रिप अगर लगा लो ज़्यादा अच्छा रही अपन पर।
1: जी, ठीक है सर,
0: ठीक है
1: धन्यवाद
0: भैया,
1: सर।
0: धन्यवाद।
2: हेलो किसान वाणी।
1: हाँ भैया जी नमस्कार।
2: राम राम, जय जोहार। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
1: हाँ भैया मैं झग्गा राम साहू बोल भैया, ग्राम नागर को रहा है
2: जी। झग्गा राम साहू के स्वागत है भैया हमारे कार्यक्रम में। बताओ आज के
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
2: विषय के अनुसार आपके क्या प्रश्न है?
1: हाँ भैया इस वर्षा के इंतजार है।
2: हाँ
1: बारिश हो एक बार, मस्त सब्जी लगाना है बारिश
2: जी।
1: वाले।
2: हाँ हाँ
1: तो का सब्जी हम ना लगा सकते हैं ना, पूरा दे दे
2: जानकारी
1: जानकारी।
2: हाँ।
1: घर अब घर बाड़ी अब होना है, मतलब घर की सब्जी मजा आते खाए में।
2: तो प्रमुख रूप ले कौन कौन से सब्जी के नर्सरी लगाए जा सकते हैं वर्षा के समय में, ये आपके प्रश्न है। डॉक्टर साहब आपके प्रश्न के जवाब देवत है।
0: साहू जी नमस्कार। ये जिन अभी आप मन बरसात के दिन में टमाटर बैगन मिर्च और एकर अलावा कद्दू वर्गीय फसल में खीरा लौकी दोड़का तुरई कद्दू एकर आप मन अभी थरहा लगा सकत हो जून जुलाई में एक, और एकर साथ साथ जुलाई अगस्त में आप मन हाँ जिन गोभी फूल गोभी और पत्ता गोभी एकर थरहा लगा सकते।
2: हेलो किसान वाणी।
3: हेलो किसान वाणी।
2: राम राम भैया, जय जोहार। कौन बोला था, कहाँ बोला था?
3: जय राम भैया। जय राम, रोहित साहू बोला था भैया, मोस्ता भाटा पारल
2: जी। तो रोहित साहू जी के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है भैया।
3: बताओ
2: आज के विषय के अनुसार आपके क्या प्रश्न है
3: भैया? गर्मी में जैसे भी साग सब्जी लगाते हैं, लेकिन बरसात में हमन विशेष रूप से कौन प्रकार से सब्जी अपन घर बाड़ी में लगा सकन, ओकर उचित देखभाल व्यवस्था कैसे करना चाहिए, ये संबंध में थोड़ा जानकारी दो भैया।
2: तो देखभाल करना बहुत जरूरी है, ये संबंध में आपके सवाल के जवाब देवे थे डॉक्टर कमल नारायण वर्मा जी।
0: साहू जी, जैसे आप मैंने कहा था कि बरसात के दिन में आप मतलब सब्जी लगाना है, तो एक बार तो जैसे मैं बताया हूँ कि कौन कौन सी सब्जी लगाना है, लगाना कैसे है एकर बार आप मन हाँ जिन जल निकास के उचित व्यवस्था जरूर रखो। मादा ला ऊपर बनाओ, जितने मादा ऊपर बनाओ उतने फायदा मिले आप मन ला। एकर साथ साथ जिन फफूंदी नाशक है ओकर से बीज उपचार और मिट्टी उपचारित जरूर करूँ। एकर से क्या हुई जिन बरसात के दिन में जिन बीमारी आते वो बीमारी नहीं आवा या कम आई। हाँ जी,
3: जैसे हमन गर्मी में जो बीज के चुनाव करते हैं का वही बीज बरसात में भी हमन का उपयोग कर सकते हैं का, कि बरसाती बीज अलग से एक लिए लेना चाहिए?
0: कायदे से आप मतलब एक बार अलग से किस्म लेना चाहिए।
3: अच्छा।
0: है ना, अभी आप मन जैसे टमाटर लगावत रहो पहली जेन है ना, तो टमाटर के अलग अलग अलग ही फूल गोभी पत्ता गोभी है ओकर किस्म आप ला जेन ठंड में लगाता हो ओकर से अलग लगा अलग ही जिन जुलाई अगस्त में जो थरा लगा हो उमा अगेती किस्म लगा अलग ही आप मन ला, तो ये विशेष ध्यान रखे लगी जब बाजार में जाऊँ तो जिन किस्म मिली तो बिल्कुल अच्छे से पूछ परख लूँ कि ये किस्म जिन है वो बरसात में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकन। और अगर आप मतलब फिर भी थोड़ा बहुत भी डाउट रही तो कृषि विज्ञान केंद्र है भाटापारा में, वहाँ आप मन संपर्क कर लो। और क्या है अभी तो बहुत सारा सब्जी आवे तो एक एक सब्जी की किस्म अभी नहीं बता पाऊँ, वहाँ आप मन हाँ पूरा पूछ लूँ तो बता दी कि एक किस्म लगा सकते कि नहीं लगा सकते। ठीक है भैया
3: जी, बिल्कुल भैया बिल्कुल।
2: डॉक्टर साहब अपन बतावत रहे हो कि जिमीकंद लगा के घलो अभी सही समय है, तो कौन से जिमीकंद ला कैसा ढंग ने लगाबो यहूल अपन बताते हो।
0: जिमीकंद की खेती तो सबो किसान भाई मन करते चे, खेती मतलब घर खाए बर, लेकिन व्यवसायिक खेती बहुत कम किसान भाई करते। तो किसान भाई मतलब मैं बताना चाहूँ कि एकर व्यवसायिक खेती करे से बहुत लाभ है, बस कुछ चीज ला आप ध्यान रखे लगी। पहला लगाए के समय, जून महीना एकर लगाए बर एकदम सही समय है, जितना जल्दी लगाहो ओकर जिन उत्पाद है वो सही समय में आई। सही समय कब होते? दिवाली के आसपास, वो समय एकर कीमत ज़्यादा अच्छा से मिलते। तो आप मन अभी लगा लो एकर कंदला, तो आप मन दिवाली में एकर खुदाई करो तो आप ला रेट अच्छा मिली। दूसरा एकर कंद की व्यवस्था, एकर बर गजेंद्रा किस्म जमा खुजली नहीं हुए वो किस्म हाँ सबसे उपयुक्त है। ये किस्म में एक ठो दिक्कत रहते कि एमा जिन एक ठो पिका थे है ना, जैसे अगर कंद है 2 किलो के 3 किलो कंद है तो जिन वो पीका है वो एक ठो रही, तो वो एक ठो पीका रहे से कहा है अब 3 किलो का कंद ला लगाहू तब वो एक ठो कंद बनी। तो एमा आप ला थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये कंद ला 4 भाग में काट लेना है, अगर 2 किलो के है तो 500-500 ग्राम के आसपास के 4 भाग में काट लेना है। काटे के बेरा ध्यान ये रखना है कि वो जो पीका है वो सबो भाग में रहा है, मतलब बीचों बीच काटना है, तो सबो में पीका रही। काटे के बाद ओला गोबर के घोल, ताज़ा गोबर घोल में

0: आधा घंटा डुबा के रख देना है। तो वो ताज़ा गोबर के घोल काय करही, एक तो वो जिन फंगस है काटे हवा तो वह फंगस की ग्रोथ हो सकत है त ओकर ग्रोथ ल रोकी हुआ, दूसरा ओमा हार्मोन रहते तो वो जिन अंकुरन है दोबारा अंकुरन आई ओमा त ओला वह बढ़ावा दी है। तो एमा 30 मिनट रखे के बाद एला आप मन ह निकाल के छाया में करीब करीब 15 से 20 दिन रख दो। 15 से 20 दिन रखू तो ओमा पीका आना चालू हो जाही, और जैसे ही पीका आही तब ओला आप मन ल खेत में लगाना है। तो एकर से काय हुई, काट के अगर तुरंत खेत में लगाहू, जुलाई के महीना रही, पानी गिरी, बरसात हुई, तो फिर वो सड़े के समस्या ज़्यादा रही। लेकिन अगर वो अंकुरित वाला लगाहू तो सड़े की जिन संभावना है वो कम हुई। काट के लगावा था बढ़िया, तो उमा का हुआ थे एक ठो कांदल चार भाग में काटे हो तो मतलब आपके चौथा भाग जिन है वो कम हो गए बीज के मात्रा के। तो ये तरीके से बीज के आप मन प्रबंधन कर सकत हो।
1: जी जी जी, डॉक्टर कमल नारायण वर्मा जी, आप हमारे बीच आए हो और हमारे संगवारी मन के शंका के तुरते समाधान करे, एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद भैया।
1: तो किसान भाई बहनी हो, आज हमन जानें कि नर्सरी में तैयार पौधा के उपयोग ले समय बीज और लागत के बचत होते, संगे संग उत्पादन के गुणवत्ता और मात्रा में बढ़ोतरी होते। एकरे सेती साग भाजी के अच्छा उपज बर वैज्ञानिक विधि ले नर्सरी प्रबंधन जरूरी है। आज के कार्यक्रम पर तकनीकी सहयोग रहिस SI खान और अंजू विजयन के, प्रस्तुत करते रहिन शशि प्रकाश पांडे। तवैया मंगलवार के फिर एक नवा विषय संग भेंट होही, तब तक बर देव विदा अपन संगवारी निर्मल साहूला, राम राम।

0: भूषण भाई,
1: हाँ भैया,
0: पिछले 12 साल में कृषि क्षेत्र में का का उपलब्धि हो है, आवा यहू ला जानथन और सुनथन ये वार्ता।
2: मैं डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र पांडा दुर्ग। पिछले 12 वर्षों में भारतीय कृषि ने तकनीकी, संरचनात्मक और नीतिगत स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। कृषि अब केवल जीविकोपार्जन का साधन न रहकर एक व्यावसायिक एवं तकनीक आधारित उद्यम बनती जा रही है। पिछले 12 वर्षों में सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर का तेजी से विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से खेत, तालाब, चेक डैम एवं वर्षा जल संचय को बढ़ावा मिला है, जिससे कि जल उपयोग दक्षता में वृद्धि हुई है। सोलर पंप सिस्टम का तेजी से विस्तार हुआ है। किसानों को डीजल एवं बिजली पर निर्भरता से राहत मिली है। दिन के समय जो लागत है वो सिंचाई का वो कम हो गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लाखों सौर पंप स्थापित किए गए हैं। सौर ऊर्जा आधारित कृषि से उत्पादन लागत में कमी आई, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ कृषि यंत्रिकीकरण अंतर्गत ट्रैक्टर, रोटावेटर, रिपर, सीड ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग बढ़ा है। छोटे किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर विकसित किए गए, जिससे कि समय पर फसल है उसका कटाई मिंजाई ये काम हुआ है, जिससे पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं वो रुका है। ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ा है, जिससे कि उर्वरक एवं कीटनाशक का समुचित उपयोग संभव हो पाया है। साथ ही साथ जो लेबर डिपेंडेंट था, मजदूर पर निर्भरता कम हुई है। उन्नत बीज एवं किस्मों का चलन वो बढ़ा है, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि आई है किसानों की। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन सहनशील किस्मों का भी प्रचार प्रसार हुआ है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर जो पोषक तत्व प्रबंधन किए हैं, जिससे कि उर्वरकों का संतुलित उपयोग हो पाया है। साथ ही साथ जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग बढ़ा, नैनो उर्वरकों का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिससे नैनो उर्वरकों का उपयोग करके खासकर नैनो यूरिया, जिससे नाइट्रोजन का दक्षता बढ़ी है। नैनो डीओपी से फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है। डिजिटल कृषि को बढ़ावा मिला है। मोबाइल आधारित कृषि सलाह, मोबाइल पूर्वानुमान एवं रोग किट का जो चेतावनी है वो हमें समय से पहले मिल जा रहा है, जिससे किसानों को उसके नियंत्रण में सहायता मिली है। ऑनलाइन विपणन एवं डिजिटल भुगतान का विस्तार हुआ है। इस दौरान किसान उत्पादक संस्था संगठन इसका दक्षता विकास हुआ है, साथ ही साथ इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि किसानों को सामूहिक खरीदी एवं बिक्री का एक साधन मिला हुआ है, जिससे उन्हें बेहतर बाजार संपर्क, मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण की सुविधाएं मिली है। बागवानी एवं उच्च मूल्य वाली फसलों का जो विस्तार हुआ है, जिसमें प्रमुख तौर पर फल, सब्जी, मसाला एवं फूल की खेती में वृद्धि हुई है। संरक्षित खेती, पॉलीहाउस, सेडनेट का विकास हुआ है। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने हेतु प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। जैविक उत्पादों की मांग में भी वृद्धि हुई है। सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रत्यक्ष आय सहायता मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोखिम प्रबंधन हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई का विस्तार हुआ है। पीएम कुसुम से सौर ऊर्जा आधारित कृषि को बढ़ावा मिला है। सूखा एवं बाढ़ सहनशील किस्मों का विकास हुआ है। मौसम आधारित कृषि प्रबंधन, संसाधन संरक्षण तकनीकों का उपयोग में बढ़ोतरी हुई है। इस तरीके से पिछले 12 वर्षों में जो भारतीय कृषि में बदलाव हुए हैं। धन्यवाद।
0: तो भूषण भाई,
1: हाँ,
0: अभी सुना तो है कि 12 साल में भारतीय कृषि में का का बदलाव हो है, और किसान भाई बन खलो अपन अनुभव करत हो ही है ना। तो अब देखो बेरा हो गई, संगवारी बन थर हो ही, पेन कॉपी और आज के प्रश्न लिखे पर, तब बता दे भाई आज के हमार का प्रश्न है।
1: संगवारी, आज को हमार प्रश्न है, तेन ला लिखो। प्रश्न है, बरसात में गोभी वर्गी सब्जी के नर्सरी लगाए के सही समय का होते? इनका जवाब हमार तीर भेजू आप मन, और बता देता हूँ संगवारी हो, पाछू हफ्ता जो पूछे रहे ते सवाल ला, उकर सही जवाब ला। पाछू हफ्ता हमन सवाल पूछे रहे, नैनो यूरिया की उपयोग फसल में कब करना चाहिए? अगर सही जवाब आए, अंकुरण के 30 से 35 दिन के भीतर में करना चाहिए। तो सही जवाब भेजिए। संगवारी मन के नाम बता दीजिए।
0: ये संगवारी मन है बठेना पाटन जिला दुरुगले, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा, बंटी बबली वर्मा, लोरमी ग्राम चचड़ील है कमल कान मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज ऋषभ मरावी, और कांकेर संबलपुर ले फागू राम यादव ज्योति ओजस्वी यादव। तो पता तो भाई संगवारी मतलब हावे है ना, तो वही पता में अपन हाँ आज के हमारे प्रश्न के जवाब ला भेजो ऐसे हम लोग उम्मीद करत हन। तो सही जवाब भैया जम्मू संगवारी मल्ला हमारे ढान ले कोरी कोरी बधाई है। तो ये आज के प्रश्न कृषक प्रश्न मंच यही मेर सिरावत है। और देखो होवा थे जाए के बेरा तो जाए के पहली
1: किसान वाणी एकर प्रायोजक रही से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: तो हो गए भाई जाके बेरा तो जाके पहले बता दे संगवारी मल्ला
1: काली
0: के कार्यक्रम
1: काली अपन ला चौपाल में सुने बर मिली आज के सलाह ये क्रम में सुने बर मिली आप मल्ला प्लेग रोग जोन हमारे भेड़ बकरी में जोन प्लेग रोग होते उकर कारण लक्षण और बचाव और विशेषज्ञ नहीं डॉक्टर संजीव राय अतिरिक्त उप संचालक जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला रायपुर ले और वही गीत संगीत। तो विदा लेबो भैया संगवारी में
0: बिल्कुल भाई तसर जो विदा संगवारी हो आप जमो संगवारी मल्ला निर्मल साहू
1: अभूषण के
0: राम राम, राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म जान तेरे नाम का गीत। गीतकार रानी मलिक, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन, ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमर बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

त्रिदेव फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की, आनंद बख्शी के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। फिल्म बेवफा सनम का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। गीतकार समूह हैं शादिक शाफिर, इशरत कतिल शिफई और योगेश। संगीतकार है निखिल विनय।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की।
1: श्रोताओं नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 से शुरू हुई इस यात्रा में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल परिवर्तन, सामाजिक कल्याण और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका के कई नए आयाम देखे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जानते हैं कि 12 वर्षों में देश ने किन प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए। सरकार का विशेष ध्यान गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर रहा। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में जनधन योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। आधार और मोबाइल के साथ जनधन खातों के एकीकरण ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली को मजबूत बनाया, जिससे सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंचने लगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना को देश की सबसे बड़ी पहलों में गिना जाता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2025 तक देश में 56 करोड़ 16 लाख से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके थे। इनमें लगभग 56% खाते महिलाओं के हैं और करीब 67% खाते ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। इन खातों में जमा राशि बढ़कर 2,67,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था को मजबूत बनाया है। सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न डीबीटी योजनाओं के तहत लगभग 6,90,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए। गरीब कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और जनधन जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोग तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ने भी उल्लेख किया है कि पिछले वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। औद्योगिक क्षेत्र भिलाई निवासी सोमेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है।
2: मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना, भातारी बंधन योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन्होंने जो शौचालय करोड़ों परिवारों को शौचालय का उपलब्ध कराया, सराहनीय कदम है। गरीब परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराई है, जिससे गरीब परिवारों को काफी लाभ मिला हुआ है।
1: सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाते हुए रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया। वहीं आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मिली। स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया और खुले में शौच से मुक्त भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। दुर्ग जिले के धमदा गांव के प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हर घर शौचालय का निर्माण किया गया। वहीं उज्ज्वला योजना भी महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है।
3: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इन 12 वर्षों में जो दौर रहा है उनका बहुत ही उपलब्धि भरा रहा है। मोदी जी ने शौचालय से लेकर एक आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए पूरे देश भर में शौचालय का निर्माण किया है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर जिनके भी कच्चे मकान थे उनके लिए प्रधानमंत्री आवास के रूप में आवास उपलब्ध कराया है। हमारी बहने माताओं को जो लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाना पड़ता था उनके लिए उन्होंने गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। जिस प्रकार से विभिन्न योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी ने इन 12 वर्षों में इस देश की आम जनता को उपलब्ध कराया।
1: श्रोताओं, कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सिंचाई, कृषि अवसंरचना और तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए। सहकारिता विशेषज्ञ प्रीतपाल बेलचंदन ने बताया कि सहकारिता पर आधारित केंद्र सरकार की नीतियों से किसानों को लाभ मिला है। विकसित भारत में सहकारिता की भूमिका बहुत बड़ी होगी।
4: मोदी जी ने सिर्फ पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया, 2047 तक विकसित भारत की दृश्य क्या होनी चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए, इसके लिए काम किए और उस परिप्रेक्ष्य में सहकार से समृद्धि एक ऐसा योजना लॉन्च किया जो अटल बिहारी जी वाजपेयी का कल्पना था। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जो उनकी मूल मंत्र थी, उसको अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता के लिए जो 2047 में विकसित भारत होगी उसमें सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका सुनिश्चित करने की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजना है। और सहकारिता का एक जीता जागता उदाहरण है अभी छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में, जो किसानों के लिए समितियों के माध्यम से ड्रोन से कीटनाशक सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराया गया, वो अपने आप में एक शुरुआत है।
1: मोटे अनाज यानी श्री अन्न को प्रोत्साहन देने में भी भारत ने वैश्विक स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। दुर्ग जिले के अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बीते 12 वर्षों में बढ़ गई है।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डिजिटल इंडिया और UPI ने देश को डिजिटल क्रांति का वैश्विक मॉडल बना दिया है। वंदे भारत ट्रेनें, आधुनिक हाईवे, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तेज रफ्तार का प्रतीक बन चुका है।
1: श्रोताओं, बुनियादी ढांचे के विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान मिला। राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विस्तार हुआ, रेलवे के आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों के संचालन, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। देश में हवाई अड्डों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा गया। वहीं भारतमाला परियोजना के तहत नए राजमार्गों का निर्माण और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कार्यपालन अभियंता अनंत दीक्षित ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 37 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में सड़कों का विस्तार हुआ है एवं GPM जिले के 3 वर्ष के कार्यकाल में 37 किलोमीटर सड़कें पूर्ण करा ली गई हैं एवं 32 किलोमीटर प्रगतिरत हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि समय सीमा में पूर्ण कराने का कार्य है, जिसमें गांवों को बारहमासी सड़क से जोड़ने का कार्य करते हैं एवं ब्रिज बनाते हैं। जो गांव बरसात में मुख्य धारा से कट जाते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के दूरदर्शी सोच को दर्शाता है कि आखिरी छोर भी किसी प्रकार से हीन न रहे। ऐसे वनांचल जहां सड़कों का विस्तार न होने के कारण प्रसव हेतु एम्बुलेंस का आना जाना नहीं हो पाता था, PDS वितरण प्रणाली ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती, स्कूल में बच्चों के आने जाने हेतु गंदी मिट्टी एवं कीचड़ भरी सड़कें उपलब्ध होती थी, बाजार जाना और वहां से वापस आना भी बहुत मुश्किल कार्य था। इन सभी सड़कों को बनाकर, इन सभी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हर गांव की तस्वीर को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2005 से करती आ रही है एवं निरंतर करती रहेगी।
1: बंदरगाहों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा, जिससे व्यापार और परिवहन को नई गति मिली। गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी पहलों ने समन्वित विकास की नई दिशा प्रदान की। श्रोताओं, डिजिटल इंडिया अभियान इन 12 वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार गांव तक पहुंचा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण होने से पारदर्शिता और सुगमता बढ़ी है। दुर्ग के पाटन निवासी उत्तम कुमार सिन्हा ने डिजिटल इंडिया अभियान की सराहना की।
7: हमारे देश में आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि इस टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड वाइड डिमांड पे है और कई देशों को हमने सप्लाई किया है। आज UPI पेमेंट एक चाय वाले से लेकर के बड़े बड़े मॉल में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में एक बहुत बड़े उपलब्धि के तौर पर मैं इसको लेता हूँ। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पे देखें तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हमारे देश का लोगों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही आले दर्जे का है और आज वर्ल्ड वाइड हमारे देश के लोगों की इज्जत, इंडिया की इज्जत, भारत देश की इज्जत पूरे विश्व में बहुत ही अच्छे नाम से लिया जाता है।
1: श्रोताओं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अनेक कदम उठाए गए। मातृत्व लाभ, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए। दुर्ग जिले के मतवारी गांव की रहने वाली नमो ड्रोन दीदी जागृति साहू ने बताया कि इस योजना से महिलाएं सशक्त हुई हैं।
8: आज हमारे भारत देश की महिलाएं जो कि समूह से जुड़कर सशक्त होते जा रही हैं, जो नमो ड्रोन दीदी के द्वारा सशक्त हो रही हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं जिनके द्वारा आज भारत में हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और अगर वो अपने इस महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च नहीं किए रहते तो हमारे PM के द्वारा हमारा सिलेक्शन नमो ड्रोन दीदी के रूप में हुआ, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
1: युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलें शुरू की गईं। भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत सुधार किए गए हैं। भिलाई स्थित सर्वोदय फाउंडेशन के प्रशांत मिश्रा ने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।
9: मोदी सरकार जी के द्वारा 12 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं वो अकल्पनीय है। दूसरी सरकारों में जितनी भी समस्याएं थी सारी समस्याओं का निवारण एक तरीके से मोदी सरकार ने कर दिया। सबसे बड़ी प्राथमिकता इन्होंने जो रोजगार के लिए जिस तरीके से युवाओं को प्रेरित किया है कि आप किसी भी रूप से रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देने का प्रयास किया गया। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजनाओं के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, रक्षा उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित किया गया। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिला और भारत रक्षा उपकरणों के निर्यात में भी आगे बढ़ा है। श्रोताओं, विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्रमुखता से उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका और प्रभाव में वृद्धि हुई है। आपदा राहत, वैक्सीन मैत्री और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत की सक्रिय भागीदारी को व्यापक सराहना मिली। ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, सौर ऊर्जा को बढ़ावा और हरित विकास की दिशा में अनेक पहलें की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल भारत के नेतृत्व की पहचान बनी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के 12 वर्षों में देश ने सामाजिक कल्याण, आधारभूत संरचना, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक सुधार, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और विकास, सुशासन तथा जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं।
10: 12 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुआ है। पहले शासन के कार्यकाल में हमको भी उनके साथ राज्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने पहले 5 साल गरीब कल्याण के काम इस देश में किए हैं। सबका उन्होंने पक्का का घर बनवाया है, सबके घर में शौचालय का निर्माण, सबके घर में नल द्वारा पानी, सबके घर में बिजली, सबके घर में बैंक का खाता, इस तरह से गरीब कल्याण के काम हुए हैं। कोरोना जैसे विपत्ति से निपटे हैं और उसके बाद से अब 80 करोड़ लोगों को अनाज भी फ्री मिल रहा है और तीसरे कालकाल में एक नए भारत के निर्माण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 वो हटा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ है। हमारी मुस्लिम बहनों के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ है। इस तरह से ऐतिहासिक काम इन 12 वर्षों में हुए।
1: सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इन वर्षों में योजनाओं के पहुंच बढ़ाने और सेवा वितरण को अधिक पारदर्शी तथा तकनीक आधारित बनाने पर विशेष बल दिया गया। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते देश की ये यात्रा आगे भी जारी है। श्रोताओं, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं स्पोर्ट्स कैन।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट और हर मैदान की पूरी खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। भारत ए ने एक दिवसीय क्रिकेट त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन 2026 आज से सिडनी में शुरू हुआ और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंडर 18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया।

0: तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं खेल के मैदान की खबरों के साथ, जहां श्रीलंका के दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में आज भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। सुनते हैं इस मैच पर हमारी ये रिपोर्ट।
1: भारत ए टीम ने श्रीलंका ए पर जीत के साथ त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत की है। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 114 गेंद पर 101 रन की पारी खेली। कप्तान तिलक वर्मा ने 60 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका को निरोशन डिकवेला और अविष्का फर्नांडो ने एक मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए दोनों ने 93 रन जोड़े। अविष्का 45 रन और निरोशन 99 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मेजबान टीम का विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। कप्तान अरागिचे ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, उन्होंने 74 रन की पारी खेली। कप्तान का विकेट गिरते ही श्रीलंकाई टीम 269 रन पर सिमट गई। आयुष बडोनी, अनुकूल रॉय, अर्शद खान और विपराज निगम ने दो दो विकेट लिए। ऋतुराज गायकवाड़ को शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जहां एक तरफ युवा खिलाड़ियों ने पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की, और आज कार्यक्रम में बात होगी ऐसे एक और युवा खिलाड़ी मानव सुथार की, जिन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू करते हुए एकमात्र टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया और 7 विकेट लेकर ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच बने बल्कि कई रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त किया। सुनिए 23 वर्षीय युवा मानव सुथार पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
2: Top edge and it's taken. A wicket in the first over. You can't ask for anything better. Fourth ball is all he needs.
3: अपने इंटरनेशनल करियर के पहले ही ओवर में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज अब्दुल मलिक का विकेट लेकर भारत के इस डेब्यूटेंट मानव सुथार ने अपने मैच को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इस विकेट के बाद मानव ने मानो विकेट की झड़ी ही लगा दी और मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की पहली पारी में 22 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट झटके। सुथार की फिरकी के आगे अफगानिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम अपनी पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई और भारत ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन दिया। मेहमान टीम की दूसरी पारी में भी सुथार ने एक विकेट झटका। मानव सुथार पिछले 35 सालों में भारत के लिए डेब्यू टेस्ट की एक पारी में 6 विकेट हॉल लेने वाले मात्र दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले ये कारनामा पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने किया था।
4: फर्स्ट ऑफ मेनी मानव सुथार 6 for 33 इन 22 ओवर्स। Second best figures by an Indian on debut.
3: मानव सुथार डेब्यू टेस्ट में भारत के लिए 5 विकेट हॉल लेने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने पर मानव सुथार ने स्वीकार किया कि टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है। भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने पर मानव ने कहा कि ये उनके लिए बेहद खास एहसास था। मानव की गेंदबाजी परफॉर्मेंस पर भारतीय स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
5: Very well bowled, मानव. I think fabulous effort. On debut, picking up 5 wickets is always something special. It's very well done. I think the effort you put in with all your hard work and practice.
3: सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, मानव ने बल्लेबाजी में बखूबी हाथ आजमाया और अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 41 गेंद का सामना करते हुए 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। मानव सुथार ने इस मैच से मिली सीख के बारे में कहा कि सबसे बड़ा सबक ये है कि निरंतरता ही सब कुछ है। प्रशांत कुमार।

0: की जोड़ी ने पहले दौर में जीत दर्ज कर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि अच्युता दत्त राव और अर्जुन रेड्डी पोषणा की जोड़ी को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स के क्वालिफायर मुकाबलों में सनीथ दयानंद ने पहले स्थानीय खिलाड़ी कारोनो को 21-17, 21-15 से आसानी से हराया और फिर मलेशिया के मिंग होंग लिम को 21-9, 21-16 से हराकर मुख्य ड्रॉ में जगह पक्की की। वहीं मनराज सिंह मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने में असफल रहे। प्रतियोगिता में सिंगल्स वर्ग के मुख्य मुकाबले कल से शुरू होंगे, जिसमें भारत को अपने स्टार खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु, युवा मालविका बंसोड, अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, इशरानी बरुआ, आकर्षी कश्यप और तान्या हिमनाथ के साथ भारत की चुनौती रखेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और एचएस प्रणय, किरण जॉर्ज से भारत को उम्मीदें होंगी। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को भारत से सबसे अधिक उम्मीदें होंगी। उनके साथ ही ध्रुव रावत और मनीषा कीर तथा मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी भी भारत की चुनौती रखेगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स केयर।
1: और अब बात हॉकी की, जहां अंडर 18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीमों को आज खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सम्मानित किया। श्री मांडविया ने पुरुष टीम को 61,50,000 रुपये और महिला टीम को 21,00,000 रुपये की पुरस्कार राशि सौंपी।
2: ककामिगाहरा में शुक्रवार को खेले गए फाइनल में कप्तान केतन कुशवाहा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-1 से मात देकर खिताब अपने नाम किया। दूसरी तरफ कप्तान स्वीटी कुजूर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में कोरिया पर 3-0 से शानदार जीत दर्ज की थी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष और महिला दोनों टीमों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि देश का नाम रोशन करने के लिए दोनों टीमों ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। श्री मांडविया ने बताया कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित भारत को एक खेल महाशक्ति में बदलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इससे पहले स्वदेश पहुंचने पर अंडर 18 पुरुष कप्तान केतन कुशवाहा ने टीम के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की।
3: यही कहना चाहूंगा अपनी टीम को कि अपने कोचेस को थैंक यू, कितना सपोर्ट, इतनी ट्रेनिंग हम लोग को मिली गई है और हम लोग वहाँ से आए जीत कर, तो बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि इतना एशिया कप जीतना और एक दूसरे को सपोर्ट करना।
2: टीम के कोच और पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह ने कहा कि इस प्रकार के अवसर भारतीय हॉकी टीम को और मजबूत बनाएंगे।
4: 18 जो ग्रास रूट लेवल पे और उसके बाद सब जूनियर बच्चों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस तरीके के कैंप्स अगर कंटिन्यू करेंगे सारी स्पोर्ट्स में, तो मैं कहूंगा कि सभी जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनका भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि अगर हमारे बेसिक स्ट्रांग है तो ऊपर लेवल की जो इंटरनेशनल हॉकी है उसको मैनेज करना इजी है।
2: श्री मांडविया ने पुरुष और महिला टीम के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर आशीष तानीपूर्ति और नौशीन नाज तथा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर आयुष राजक को भी सम्मानित किया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात विश्व योगासन चैंपियनशिप की, जिसका कल गुजरात के अहमदाबाद में समापन हो गया। सुनिए इस आयोजन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
5: भारतीय खिलाड़ियों ने गुजरात के अहमदाबाद में अपने प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है कि क्यों भारत को योग की महाशक्ति कहा जाता है। भारतीय खिलाड़ियों ने योगा मैट पर अपने लचीलेपन और शारीरिक दक्षता का ऐसा प्रदर्शन प्रस्तुत किया कि पदकों की कतार सी लग गई। भारत ने 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 114 पदक हासिल किए। जापान 3 स्वर्ण और 3 रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पहली बार आयोजित इस विश्व योगासन चैंपियनशिप में कुल 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिना ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत योग के क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है।
6: बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये जो सारे एथलीट्स हैं बहुत ही अच्छी खासी तैयारी करके आए हैं और बहुत सारे मेडल्स उनको भी गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले 5-10 साल में ये हमें बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाले हैं। बट वैसे अगर योग की लैंग्वेज में बोलूँ तो वसुदेव कुटुंबकम और जो इंडिया है, जो भारत है, वो एक विश्वगुरु बनकर सामने आ रहा है।
5: विश्व और भारत योगासन के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि योगासन ने बहुराष्ट्रीय स्तर के आयोजन में अपना शंखनाद कर दिया है और अब

0: खेल, ओलंपिक और राष्ट्रमंडल जैसे आयोजनों का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: आने वाला 2036 के लिए जो हमने बिड की है ओलंपिक में, और 2032 के लिए हमने कॉमनवेल्थ गेम के लिए बिड की है, वो भी गुजरात में होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में पहली बार विश्व पटल पर योगासन ने अपना शंखनाद अहमदाबाद से कर दिया है।
0: इस आयोजन से पहले खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी योगासन को राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।
2: भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी गेम्स या तो भारतीय स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
0: तो ये कहा जा सकता है कि योगासन अब खेल मैदान और पार्कों की योग मैट से निकलकर विश्व के खेल पटल पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
3: और अब अंत में बात करते हैं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
4: 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व विजेता बनने के बाद अब हरमनप्रीत कौर की विमेंस इन ब्लू है तैयार। इंग्लैंड और वेल्स में अपने पहले T20 विश्व कप खिताब के लिए जोश, जज्बे और अनुभव के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम है तैयार। खत्म करने को 17 साल का इंतजार, तो अब दुनिया देखेगी दम। हर मैदान जीतने को तैयार है हम।
3: और आज बात करते हैं इस कड़ी में उन 5 खिलाड़ियों की जिन पर इस टीम की पूरी नजरें रहने वाली हैं।
5: इस सूची में सबसे पहला नाम आता है भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का, जिनका बल्ला इस विश्व कप में काफी मायने रखेगा। मंधाना अगर टीम को अच्छी शुरुआत देने और बड़ी पारी खेलने में सफल रहती है तो भारत का काम काफी हद तक आसान हो सकता है। और अगर रिकॉर्ड की भी बात की जाए तो मंधाना को इंग्लैंड में खेलना बेहद रास आता है। इंग्लैंड में उन्होंने अब तक खेली 19 पारियों में 139 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में मंधाना इंग्लैंड में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगा चुकी हैं। तो रिकॉर्ड बखूबी बताते हैं कि इस स्टार बल्लेबाज के लिए इंग्लैंड की स्थितियां कितनी बेहतर होती है। रिकॉर्ड्स की बात हो और हरमनप्रीत कौर का नाम ना आए, ये संभव नहीं है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की सूची में भारतीय मेडल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर भी हैं। हरमनप्रीत का ये आखिरी विश्व कप भी माना जा रहा है, ऐसे में वे अपने प्रदर्शन से छाप जरूर छोड़ना चाहेंगी। हरमनप्रीत ने इंग्लैंड में खेली 24 पारियों में अब तक 526 रन बनाए हैं। वहीं अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखने वाली शेफाली वर्मा इस T20 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती हैं। शेफाली को इंग्लैंड में बल्लेबाजी करने में आनंद आता है, जिसकी कहानी खुद उनके रिकॉर्ड्स बयां करते हैं। उन्होंने यहां पर खेले 19 मुकाबलों में 139 के स्ट्राइक रेट से 431 रन बनाए हैं। सूची में चौथा नाम दीप्ति शर्मा का है। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा लंबे समय से अहम रोल अदा कर रही है। टीम को दीप्ति से एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद होगी। अगर मुख्य रूप से गेंदबाजी की बात की जाए तो रेणुका सिंह टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती हैं। स्टार तेज गेंदबाज का क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड की धरती पर दमदार प्रदर्शन रहा है। इंग्लैंड में रेणुका ने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 12 विकेट चटकाए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस दौरान उनका इकोनॉमी सिर्फ 6.12 का रहा है, यानी किफायती के साथ साथ विकेट निकाल कर देने वाली खिलाड़ी। तो इन मजबूत खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस विश्व कप में भारत के लिए बड़ा रोल निभाते हुए नजर आएंगी और इंग्लैंड की धरती पर युवा और अनुभव भी खिलाड़ियों का तालमेल लेकर उतर रही है, टीम की खिताब जीतने की उम्मीदों को और मजबूत करेगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
3: तो अब समय हो रहा है श्रोताओं आपसे अनुमति लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमारे ईमेल sportscan@aiir.gmail पर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति

0: देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसे स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की।

0: जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
0: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
0: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों के मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its

लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म लव स्टोरी का गीत, आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत था। अब सुनिए अवतार फिल्म का गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इसी गीत के संग चित्रपट संगीत यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
2: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ, क्या कुछ रही कहानी, आगे क्या कुछ हो सकता है, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार
2: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
3: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया। कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें UK से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
2: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है, उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं?
3: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6000-7000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, माने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया, कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
2: सर हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
3: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
2: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
3: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया, जनरली पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर, इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से, तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
2: सर चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
3: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे, ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया, टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स, ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
2: तो अब अगले अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
3: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस चिप्स हमारी ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को

0: हुई। और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
1: जी,
0: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पे रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पे अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते।
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था, हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण, वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे

0: बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो।
1: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
2: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
1: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
2: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
4: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके, तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
5: धन्यवाद।
4: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
5: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्युपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है, नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सच

0: उसमें भारत को फिर से एक महान देश और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब एक रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
0: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फक्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है, गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है।
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी, खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं रिजोर्ट में, छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो।

0: या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए। ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां हैं तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराय पाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके साथी दुर्गेश कुमार का नमस्कार। कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश आप सबकी है। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव। भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत ब्रिगू, विनय ठाकुर। सोनाडीह से सुब्रत चौधरी। पहारा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति छाया बंछोर। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा, दामनी वर्मा। गोला भिया बक्सर से विजय केशरी, गौरी शंकर, शंभू केशरी। नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज और रोहन केशरी। नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र और योगेश यादव। भिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल, कुमारी भाव्या, प्रियांश देवांगन। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। जनवाड़ी रेडियो

मानवता परिवार। सिमगा से आप हैं श्रीमती सविता जैन, मोनिका जैन। शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। महामायापारा दरचूरा से फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। रुआबांधा सनीचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, सिया जैन, कल्पना, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। आप सबने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म कभी कभी का गीत, साहिर लुधियानवी के बोल और खय्याम का संगीत।

अगले गीत के लिए फरमाइश भेजी है नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र दुष्यंत राघवेंद्र साहू, मोहनपारा अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक साहू, उमा देवी साहू, गौतमनगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकल अंबादे, पूजा अंबादे, बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार, पावर हाउस भिलाई से विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान, पूजा प्रधान, अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारणी, खुमेंद्र मसिया, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और आसमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और कुलफराज भागलपुरी, जय माँ कर्मा रेडियो श्रोता संघ गातापार से श्रीमती धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, श्रीमती बिंदेश्वरी नागेश्वरी, श्रीमती चमेली साहू, भूमिका साहू, कुमारी मोनिका और कुमारी पूनम साहू, धमनी किरवई से समयलाल धीवर, युवांश कुणाल गोविंद, ममता और मुन्नी धीवर, हरदेवलाल पारा सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, भाटापारा से चुवाराम वर्मा, मुकेश दुलारी और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा, मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप जाजूरिया, बेबी आरजू जाजूरिया, बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, अरमरी जिला दुर्ग से चुरामन लाल वाडे, जैनी वाडे, विवेक कुमार और नेहा वाडे। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार की आवाज़ में नीरज की शब्द रचना। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी, संगीत एस डी बर्मन का।

अगले गीत की फरमाइश भेजी है सिहावा पर्वत अंचल बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी, इशिका तेजल यादव, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश राशि और श्रीमती शीतल राजेश, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, धामणी मनोरा से तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश आदेश, किरण प्रज्वल, दादुल्य डेरे, कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल ईश्वर वर्मा और दिनेश सेन, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता।

कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, कोरदा से कलीराम यादव, छतराम यादव, शेष राम यादव, शांतिनगर भाटापारा से रमज़ान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयास अलफैज खान, सादिया खान, धुर्रा बांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार नेत्राम, भूपेंद्र साहू, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू रविंद्र और खुशी रौनक सेन। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं प्रेम बंधन इस फिल्म का गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना।

अगले गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सबने। शिव मंदिर रोड खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, झरना, प्रेरणा, शिक्षा और दीक्षा। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। धवलपुर गरियाबंद से गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांति मिश्रा, अर्चना प्रतीक्षा, धनंजय मिश्रा। बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी। दरचूरा से ददवा साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू। बनियापारा धमतरी से रामचंद मखीजा, श्रीमती सविता और बेबी स्वाति मखीजा। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, रीचा गायत्री वैष्णव और विषम दास मानिकपुरी। भाटापारा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा। भाटापारा से नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश यदु, आरती यदु। जयमाकर्मा रेडियो श्रोता संघ गातापार से कुमारी लावण्या साहू, कुमारी उपासना, देवराज ओम कुमार, पुष्पराज साहू, प्रभुराम साहू। वर्धमान टॉकीज सिमगा से प्रदीप जैन और साथी। भाटापारा से राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश कार्तिक, युवराज राउत। धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म शहंशाह का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी है मोहम्मद अजीज़ और लता मंगेशकर ने, एच डी बर्मन की धुन और आनंद बख्शी की शब्द रचना।

दोस्तों अब इस कार्यक्रम से हमें भी जाना है, तो इसी गीत के संग अपने साथी दुर्गेश कुमार को कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 होने को हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद अलाउद्दीन खां साहिब का सरोद वादन। राग है जय जय वंती।

0: शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का सरोद पर बजाया राग जय जयवंती। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल

0: सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priority.

आर्टिस्ट बूथ माइक नंबर 1, टाइम हुए अभी 5:20, 33, 34, 35, 36, 37 सेकेंड्स। आर्टिस्ट बूथ माइक नंबर 2, टाइम हुए अभी 5:20, 43, 44, 45, 46, 47 सेकेंड्स।